अस पौड़ी सो ऐसा हर नाम त्याईए मन मेरे जो सबना उपर हुक्म चलाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो अंति अवसर ले छाए सो ऐसा हर नाम जपिए मन मेरे जो मन की तृष्णा सब भुख गवाए सो गुरमुख नाम जपिया वडभागी तिन निंदक दुष्टो सब पैरी पाए नानक नाम आराध सबना ते वड्डा सब नामै अगै आण निवाए श्लोक महला तीजा वेस करे क्रूप को लखनी मन खोटे कूड़ियार पिर कै पाणे ना चले हुक्म करे गावार गुर कै पाणे जो चले सब दुख निवारण हार लिखिया मेट न सकी जो तुर लिखिया करतार मन तन सौपे कंत कहो सब दे तरे प्यार बिन नामे कने ना पाया देखो हृदय विचार नानक सा सुआल्यो सुलखणी जे रावी सृजनहार महला तीजा माया मोह गुबार है तिसदा ना दिसै उरवार ना पार मनमुख ज्ञानी महा दुख पाए दे डुबे हर नाम विसार पाल के उठ बहु कर्म कमावै दूजे पाए प्यार सतगुर सेवै अपना पौजल उतरे पार नानक गुरमुख सच समावै सच नाम उरतार पौड़ी हर जल थल महियल भरपूर दूजा नाहे कोय हर आवै करे न्याओ कूड़िया और सब मार कढोए सचियारा दे वड्याई हर धर्म न्याओ की ओए सब हर की करो उसत जिन गरीब अनाथ राख ली ओए जयकार कियो धर्मिया का पापी को दंड दियो ए श्लोक महला तीजा मनमुख मैली कामणी कुलखणी कुनार।

मिल मेरे रमैया मैले छड़ाए रहाओ। अनक अनक भोग राज बिसरे प्राणी, संसार सागर पै अमर भया। माया मूठा चेतस नाही, जन्म गवायो आलसिया। बिखम कोर पंथ चालना प्राणी, रव सस्त है न परवेसं। माया मोह ता बिसर गया, जा तजी अले संसारं। आज मेरा मन प्रगट भया है, पेखी अले धर्म राओ। तिन कर दलो करन महाबली, तिन आगर लै मैं रहन न जाए। जे को मुंह उपदेश करत है, ता वन त्रिण रतड़ा नारायणा। ऐ जी तू आपे सबके जानदा, बदत त्रिलोचन रामैया। श्री राग भगत कबीर जियो का, अचरज एक सन ओरे पंडिया। अब किश कहन न जाई, सुर नर गण गंधर्व जन मोहे। त्रिभुवन मेख ली लाई, राजा राम अनहद किंगरी बाजै। जाकी दृष्टनाद लिव लागै रहाओ। पाठी गगन सिंगिया अर चुंगिया, कालक कनक कल सिख पाया। तिसमै तार चुवैत निर्मलो, रसमै रसन चुवाया। एक जो बात अनुबनी है, पवन प्याला साजिया। तीन पवन मैं एको योगी, कहो कवन है राजा। ऐसे ज्ञान प्रगटिया पुरखोत्तम, कहो कबीर रंग राता। और दुनी सौ परम पुलानी, मन राम रसायन माता। श्री राग बाणी भगत बेणी जियो की, पहरियां कै घर गावना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, रे नर गर्भ कुंडर जब आशत। उर्द ध्यान लिव लागा, मृतक पिंड पद मदना अहनस। एक अज्ञान सो नागा, ते दिन संभलो कष्ट महा दुख। अब चित अधिक पसारिया, गर्भ छोड़ मृत मंडल आया। तव नर हर मनो बिसारिया, फिर पछतावेंगा मूड़िया। तू कमर कुमत प्रम लागा, चेत राम नाही जमपुर जाहेगा। जन बिचरे अनरादा रहाओ। बाल बिनोद चिंद रस लागा, खिन खिन मोहे ब्यापै। रस में समेद अमृत बिख चाखी, तो पंच प्रगट संतापै। जप तप संजम छोड़ सुकृत मत, राम नाम ना आराध्या। उछलिया काम काल मतया, लागी तो वान सकत गल बांधया। तरन तेज पर त्रे मुख जो है, सारे अवसर ना पछाणिया। उनमत काम महाबिख भूलै, पाप ना पछाणिया। सुत संपत देख एहो मन गर्बिया, राम हृदय ते खोया। अवर मरत माया मन तोले, तो भाग मुख जन्म विगोया। पुंडर केस कुसमते तौले, सबत पाताल की बाणी। लोचन सरमै बुद्ध बल नाठी, ता काम पव समाधानी। ता ते बिखै पई मत पावस, काया कमल कुमलाना। अवगत बाण छोड़ मृत मंडल, तो पाछै पछताना। निकुटी देह देख तुनि उपजै, मान करत नहीं बूजै। लालच करै जीवन पद कारण, लोचन कछु ना सूजै। थाका ते जुड़िया मन पंखी, कर अंगन ना सुखाई। बेणी कहै सुनो रे भगतो।

ता जौ पै हम ना पाप करंता अहे अनंता पतत पावनो नाम कैसे हुंता रहाओ तुम जो नायक अच्छो अंतर जामी प्रभ ते जन जा नीजे जनते स्वामी शरीर अराधे मोको विचार देहू रामदास समदालो समझावै को राग माज चौबदे कर पहला महला चौथा एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद हर हर नाम मैं हर मन पाया वडभागी हर नाम ते आया गुरपूरै हर नाम सिद्ध पाई को विरला गुरमत चलै जियो मैं हर हर खर चलया बन पलै मेरा प्राण सखाई सदा नाल चलै गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया हर निश्चल हर तन पलै जियो हर हर सज्जन मेरा प्रीतम राया कोई आन मिलावै मेरे प्राण जीवाया हव रह ना सका बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चलै जियो सतगुर मित्र मेरा बाल सखाई हव रह ना सका बिन देखे मेरी माई हर जियो कृपा करो गुर मेला जन नानक हर तन पलै जियो माझ महला चौथा मद सूदन मेरे मंत्र प्राणा हों हर बिन दूजा अवर ना जाना कोई सज्जन संत मिलै वडभागी मैं हर प्रभ प्यारा दसै जियो हों मंतन खोजी पाल पाल आई क्यों प्यारा प्रीतम मिलै मेरी माई मिल सत संगत खोज दसाई वे संगत हर प्रभ वसै जियो मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला हम बारक दीन करो प्रतपाला मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा गुर जलमिल कमल वसै जियो मैं बिन गुर देखे नींद ना आवै मेरे मन तन वेदन गुर बिरव लगावै हर हर दया करो गुर मिलो जन नानक गुर मिल रहसै जियो माझ महला चौथा हर गुण पढ़िय हर गुण गुणिय हर हर नाम कथा नित सुनिय मिल सत संगत हर गुण गाए जग पौजल दुत्तर तरिय जियो आओ सखी हर मेल करेहा मेरे प्रीतम का मैं दे सनेहा मेरा मित्र सखा सो प्रीतम भाई मैं दसे हर नर हरिय जियो मेरी बेदन हर गुर पूरा जाने हौ रह ना सका बिन नाम वखाने मैं औखद मंत्र दी जय गुरपूरे मैं हर हर नाम उधरी है जियो हम चात्रक दीन सदगुर शरणाई हर हर नाम बूंद मुख पाई हर जल निद हम जल के मीने जन नानक जल बिन मरिय जियो माझ महला चौथा हर जन संत मिलो मेरे भाई मेरा हर प्रभ दसो मैं भूख लगाई मेरी श्रद्धा पूर जग जीवन दाते मिल हर दर्शन मन पी जय जियो मिल सत संग बोली हर बाणी हर हर कथा मेरे मन पाणी हर हर अमृत हर मन भावै मिल सतगुर अमृत पी जय जियो वड भागी हर संगत पावै भागहीन परम चोटा खावै बिन भागा सत संग ना लब्बै बिन संगत मैल भरी जय जियो मैं आए मिलो जग जीवन प्यारे हर हर नाम दया मन तारे गुरमत नाम मीठा मन पाया जन नानक नाम मन भीजै जियो माझ महला चौथा हर गुर ज्ञान हर रस हर पाया मन हर रंग राता हर रस पी आया हर हर नाम मुख हर हर बोली मन हर रस टुल टुल पौंदा जियो आवो संत मैं गल मिलाइयै मेरे प्रीतम की मैं कथा सुनाइयै हर के संत मिलो मन देवा जो गुरबाणी मुख चौंदा जियो वड भागी हर संत मिलाया गुरपूरै हर रस मुख पाया भागहीन सतगुर नहीं पाया मन मुख गर्भ जूनी नित पौंदा जियो आप दयाल दया प्रभ धारी मलहमै बिखिया सब निवारी नानक हट पटन विच लकाया हर लैंदे गुरमुख सौदा जियो माझ महला चौथा हौ गुण गोविंद हर नाम ते आई मिल संगत मन नाम वसाई हर प्रभ अगमा गोचर स्वामी मिल सतगुर हर रस कीचै जियो
तन तन हर जानो जन हर प्रभ जाता, जाए पुछा जन हर की बाता। पा मलोवा मल मल तोमा, मिल हर जन हर रस पीचै जियो। सतगुर दाता नाम दड़ाया, वडभागी गुर दर्शन पाया। अमृत रस सच अमृत बोली, गुर पूरे अमृत लीचै जियो। हर सत संगत सतपुरख मिलाई है, मिल सत संगत हर नाम ते आई है। नानक हर कथा सुनी मुख बोली, गुरमत हर नाम परिचै जियो। माज महला चौथा, आवो भैणे तुसी मिलो प्यारिया। जो मेरा प्रीतम दसे तिसके हों वारिया। मिल सत संगत लद्दा हर सज्जन, हों सतगुर विटों घुमाइया जियो। जै जै देखा तैं तैं स्वामी, तू घट घट रव्या अंतर जामी। गुरपुरे हर नाल दिखा लिया, हाँ सतगुर विटों सदवारिया जियो। एको पवन माटी सब एका, सब एका जोत सबाइया। सब एका जोत वरतै भिन भिन, ना रलई किसे दई रलाइया। गुरप्रसादी एक नदरी आया, हाँ सतगुर विटों बताया जियो। जन नानक बोलै अमृत बाणी, गुरसिखा कै मन प्यारी पाणी। उपदेश करे गुर सतगुर पूरा, गुर सतगुर पर उपकारिया जियो। सत चौपदे महल्ले चौथे के, माज महल्ला पंजवा चौपदे कर पहला। मेरा मन लोचै गुरदर्शन ताई, बिरप करे चा तिर की न्याई। त्रिखा न उतरै सांत न आवै, बिन दर्शन संत प्यारे जियो। हाँ कोली जियो कोल कुमाई, गुरदर्शन संत प्यारे जियो। रहाओ तेरा मुख सुहावा जियो, सहि तुन बाणी। चिर होवा देखे सारिंग पाणी, तन सो देस जहां तू वसिया। मेरे सज्जन मीत मुरारे जियो। हाँ कोली हाँ कोल कुमाई, गुर सज्जन मीत मुरारे जियो। रहाओ एक कड़ी ना मिल।

वन त्रिण त्रिपवन की तोन हरिया करण हार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तसै अरादे मन की आस पुजाए जियो। माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा प्राता तू मेरा राखा सबनी थाई ता पौ केहा काड़ा जियो। तुमरी कृपा ते तुद पछाणा तू मेरी ओट तू है मेरा माणा तुझ बिन दूजा और ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा जियो। जी जंत सब तो दियो पाए जिजत पाणा तित तलाए सब किश कीता तेरा होवै नाही किछ असाड़ा जियो। नाम ते आए महा सुख पाया हर गुण गाए मेरा मन सीतलाया गुरपूरे वजी वाधाई नानक जिता बिखाड़ा जियो। माज महला पंजवा जी प्राण ब्रह्म ने अधारा भगत जीवै गुण गाए अपारा गुण निदान अमृत हर नामा हर त्याए त्याए सुख पाया जियो। मनसा तार जो करते आवै साध संग जन मरण मिटावै आस मनोरथ पूर्ण होवै भेटत गुरदर साया जियो। आगम्या गोचर किशमित नहीं जानी साधक सिद्ध त्यावै ज्ञानी खुदी मिट्टी चूका पोलावा गुरमन ही मह प्रगटाया जियो। आनंद मंगल कल्याण निधाना सुख सहज हर नाम वखाना हुए कृपाल स्वामी अपना ना ओ नानक कर मैं आया जियो। माज महला पंजवा सुन सुन जीवा सोए तुम्हारी तू प्रीतम ठाकर अत भारी तुमरे करतब तुम ही जाना हो तुमरी ओट गोपाला जियो। गुण गावत मन हरिया होवै कथा सुनत मल सगली खोवै पेटत संग साध संतन कै सदा जपो दयाला जियो। प्रभ अपना सास सास सुमारो एह मत गुर प्रसाद मन धारो तुमरी कृपा ते होए परगासा सर्व मया प्रतपाला जियो। सत सत सत प्रभ सोई सदा सदा सद आपे होई चलत तुम्हारे प्रगट प्यारे देख नानक पय निहाला जियो। माज महला पंजवा हुक्मी वरसन लागे मेहा साजन संत मिल नाम जपेहा शीतल सांस सह सुख पाया ठांड पाई प्रभ आपे जियो। सब किश बहुतो बहुत उपाया कर कृपा प्रभ सगल रजाया दात करो मेरे दातारा जी जंत सब त्रापे जियो। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसाद तिस दाते आई जन्म मरण पै काटे मोहा बिनसे सोख संतापे जियो। सास सास नानक साला हे सिमरत नाम काटे सफा हे पूर्ण आस करी खिन पीतर हर हर हर गुण जापे जियो। माज महला पंजवा आओ साजन संत मीत प्यारे मिल गावै गुण अगम्या पारे गावत सुनत सबे ही मुक्ते सो त्याईये जिन हम किए जियो। जन्म जन्म के किल बिख जावै मन चिंदे से ही फल पावै सिमर साहेब सो सच स्वामी रिजक सब सकौ दिए जियो। नाम जपत सर्ब सुख पाईऐ सब पौ बिनसै हर हर त्याईऐ जिन सेव्या सो पार ग्रामी कार्ज सगले थिए जियो।

माज महला पंजवां सबे सुख पए प्रभु तुठे गुरपुरे के चरण मन मुठे सह समाध लगी लवे अंतर सोरा सोई जाने जियो आगमा गोचर साहिब मेरा कड़ कड़ अंतर वरत नेरा सदा लिप्त जिया का दाता को विरलाया पछाणे जियो प्रमृण की है निशानी मन को सच्चा हुक्म पछाणी सह संतोख सदा तृप्ता से अंध खसम कह पाण जियो हथी दित्ती प्रभ देवन हारे जन मरण रोग सब निवारे नानक दास किए प्रभ अपने हर कीर्तन रंग माने जियो माज महला पंजवा कीनी दया गोपाल गुसाई गुर के चरण वसे मन माही अंगीकार की आतन करता दुखा डेरा टाहया जियो मंतन वसिया सच्चा सोई बिखड़ा थान न दिसै कोई दूत दुश्मनों सब सज्जन होए एको स्वामी आया जियो जो किश करे सो आपे आपै बुद्ध सियाणप किशु ना जापै अपने संतान आप सहाई प्रभरम भुलावा लाया जियो चरण कमल जन काया धारो आठ पहर राम नाम वापारो सहज आनंद गावे गुण गोविंद प्रभ नानक सर्ब समाया जियो माज महला पंजवा सो सच मंदर जे सच धियाई है सोरदा सुहेला जित हर गुण गाई है सा धरत सुहावी जित वसै हर जन सच्चे नाम विटो कुर्बानो जियो सच वडाई कीम ना पाई कुदरत कर्म ना कहना जाई त्याए त्याए जी वैजन तेरे सच शब्द मन मानो जियो सासा लाहन वडपागी पाई है गुर प्रसादी हर गुण गाई है रंग रते तेरे तुद भावे सच नाम निशानो जियो सच्चे अंत ना जाने कोई थान थन अंतर सच्चा सोई नानक साहित्य आई है सद ही अंतर जामी जानो जियो माज महला पंजवा रैन सुहावड़ी दिन सुहेला जप अमृत नाम संत संग मेला कड़ी मूर्त सिमरत पल वन्या जीवन सफलत थाई।

ब्रह्म जो सदी से वह सो गुरमिल ने चल कहना। प्रेम भगत जिसके मन लागी गुण गावे अंधन जागी बहा पकड़ो ते स्वामी मिले जिसके मस्तक लेना। चरण कमल भगता मन मुठे विन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांछ नाम सचे का गहना। उठत बैठत हर हर गाईए जे सिमरत वार ने चल पाईए नानक ओ प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना। राग माज अष्टपदियां महला पहला कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। शब्द रंगाए हुक्म सबाए सच्ची दरगह महल बुलाए सच्चे दीन दयाल मेरे साहेबा सच्चे मन पति आवणिया। हाँ वारी जीओ वारी शब्द सुहावने आ अमृत नाम सदा सुखदाता गुरमती मन वसावने आ रहाओ। ना को मेरा हों किसकेरा साचा ठाकरो त्रिपवन मेरा हों मैं कर कर जाए कनेरी कर अवगण पछोतावने आ। हुक्म पछाण सो हर गुण वखाण गुर कै शब्द नाम निशाण सबना कादर लेखा सच्चै छूटस नाम सुहावने आ। मनमुख पूला ठौर ना पाए जमदर बद्दा चोटा खाए बिन नामे को संग ना साथी मुक्ते नाम ते आवने आ। सागत कूड़े सच ना पावे दुबदा बांदा आवे जावे लिखिया लेखना मेटे कोई गुरमुख मुक्त करावने आ। पे येड़े पर जातो नाही झूठ विछुन्नी रोवे ताही अवगण मुठी महल ना पाए अवगण गुण बख्सावने आ। पेयड़ जन जाता प्यारा गुरमुख बूझे तत विचारा आवन जाना ठाकर हाए सच्चे नाम समावने आ। गुरमुख बूझे कथ कहावे सच्चे ठाकर साचो पावे नानक सच कह बेनंती सच मिलै गुण गावने आ। माज महला तीजा कर पहला कर्म होवै सतगुरु मिलाए सेवा सुरत शब्द चित लाए। हाँ मैं मार सदा सुख पाया माया मोह चुकावने आ। हाँ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारने आ। गुरमती प्रगास होवा जी अंदर हर गुण गावने आ। रहाओ तन मन खोजे ता ना हो पाए तावत राखे ठाक रहाए। गुर की बाणी अंदर गावे सहजे पद करावने आ। इस काया अंदर वस्त असंखा गुरमुख साच मिलै ता वेखा नौ दरवाजे दसवें मुक्ता अनहद शब्द वजावने आ। सच्चा साहेब सच्ची नाई गुर प्रसादी मन वसाई आन दिन सदा रह रंगराता दर सच्चा सोजी पावने आ। पाप पुन की सार न जानी दूजे लागी परम पुलाणी अग्ञानी अंदा मग न जाने फिर आवन जावने आ। गुर सेवा ते सदा सुख पाया हाँ मैं मेरा ठाक रहाया गुरसाखी मिटिया अंधियारा बजरक पाड़ खुलावने आ। हाँ मैं मार मन वसाया गुर चरणी सदा चित लाया गुर कृपा ते मन तन निर्मल निर्मल नाम ते आवने आ। जीवन मरना सब तो दैताई जिस बख्शे तिस दे वड़ियाई नानक नाम ते आए सदा तू जम्मण मरण सवारने आ। माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवै सोई बूझै गुण कै गुणी समावणिया। हाँ वारी जियो वारी हर का नाम मन वसावणिया। जो सच लागे से अंदन जागे दर सच्चै सोभा पावणिया। रहाओ आप सुनै तै आपे वेखै जिसनु नदर करे सोई जन लेखै। आपे लाए लए सो लागै गुरमुख सच कमावणिया। जिस आप भुलाए सो किथे हथ पाए पूर्व लिखिया सो मिटना ना जाए। जिन सतगुर मिलिया से वडभागी पूरे करम मिलावणिया। पेयड़ तन अंदन सुती कंत विसारी अवगण मुत्ती
ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਬਿਲ ਲਾਂਦੀ ਬਿਨ ਪਿਰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਪਾਵਣਿਆ ਪੇਈਅੜ ਸੁਦਾਤਾ ਜਾਤਾ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਪਛਾਤਾ ਸੇ ਸੁਹਾਵੀ ਸਦਾ ਪਿਰ ਰਾਵੈ ਸਤ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵਣਿਆ ਲਖ ਚੌਰਾਸੀ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜਿਸਨੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰੂ ਮਿਲਾਏ ਕਿਲਬੇ ਕਾਠ ਸਦਾ ਜਨ ਨਿਰਮਲ ਦਰ ਸੱਚੈ ਨਾਮ ਸੁਹਾਵਣਿਆ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਤਾਂ ਗਿਣਦੀ ਐ ਸੁਖ ਨਾਹੀ ਫੁਨ ਦੂਐ ਤੀਐ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਆਪੇ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਆਪ ਕਰੇ ਤੈ ਆਪ ਕਰਾਏ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਆਪੇ ਮਿਲ ਮਿਲਾਵਣਿਆ ਮਾਜ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇੱਕੋ ਆਪ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਸੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਖਾ ਤਾਇਹੋ ਮਨ ਭਿੰਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤਾਜੋ ਸਹਿ ਸੁਖ ਪਾਇਆ ਏਕੋ ਮਨ ਵਸਾਵਣਿਆ ਹਉ ਵਾਰੀ ਜੀਉ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਵਣਿਆ ਗੁਰਮਤੀ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਇਆ ਸੱਚੈ ਰੰਗ ਰੰਗਾਵਣਿਆ ਰਹਾਓ ਇਹੋ ਜਗ ਭੂਲਾ ਤਾਂ ਆਪ ਭੁਲਾਇਆ ਇੱਕ ਵਿਸਾਰ ਦੂਜੈ ਲੋਭਾਇਆ ਆਂਦਨ ਸਦਾ ਫਿਰੈ ਪ੍ਰਮ ਭੂਲਾ ਬਿਨਾਂ ਵੈ ਦੁਖ ਪਾਵਣਿਆ ਜੋ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤੇ ਗੁਰਸੇਵਾ ਤੇ ਜੁਗਚਾਰੇ ਜਾਤੇ ਜਿਸਨੋ ਆਪ ਦੇ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਸਮਾਵਣਿਆ

माया मोहे जोहे जम काले, माया मोह इस मने निचाए अंतर कपट दुख पावने आ। गुरमुख भगत जा आप कराए तन मन राता सही सुभाए। बाणी वजाए शब्द वजाए।

दूजै पाए दुख पावणिया। जिस अंतर प्रीत लगै सो मुक्ता, इंद्री वस सच संजम जोगता। गुर कै शब्द सदा हर त्याए, एहा भगत हर पावणिया। गुरमुख भगत जुगचारे होई, होरत भगत ना पाए कोई। नानक नाम गुर भगती पाईऐ, गुर चरणी चित लावणिया। माज महला तीजा, सच्चा सेवी ससा लाही। सच्चै नाए दुख कभी नाही, सुखदाता सेवन सुख पायन। गुरमत मन वसावणिया, हाउ वारी जियो वारी। सुख सह समाध लगावणिया, जो हर सेवै से सदा सोहै। शोभा सुरत सुहावणिया, राओ सब को तेरा भगत कहाए। सही भगत तेरे मन पाए, सच बाणी तुदै सालाहन। रंग राते भगत करावणिया, सब को सच्चे हर जियो तेरा। गुरमुख मिलै तां चूकै फेरा, जां तुद पावै तां नाए रचावै। तू आपे नाउ जपावणिया, गुरमती हर मन वसाया। हरख सोख सा मोह गवाया, एक सस्यों लिव लागी सदही। हर नाम मन वसावणिया, भगत रंग राते सदा तेरे चाए। नवनिध नाम वस्या मन आए, पूरे भाग सतगुर पाया। सब दे मेल मिलावणिया, तू दयाल सदा सुखदाता। तू आपे मेलै गुरमुख जाता, तू आपे देवै नाम वडाई। नाम रते सुख पावणिया, सदा सदा साचे तुद सा लाही। गुरमुख जाता दूजा को नाही, एक सस्यों मन रहा समाए। मन मनै मनै मिलावणिया, गुरमुख होवै सो सा लाहे। साचे ठाकर वे परवाहे, नानक नाम वसै मन अंतर। गुर सबदी हर मिलावणिया, माज महला तीजा। तेरे भगत सो है साचे दरबारे, गुर कै शब्द नाम सवारे। सदा आनंद रह दिन राती, गुण कै गुणी समावणिया। हाउ वारी जियो वारी, नाम सुन मन वसावणिया। हर जियो सच्चा ऊचो ऊचा, हाउ मैं मार मिलावणिया। रहाओ हर जियो साचा साची नाई, गुर प्रसादी किसै मिलाई। गुर शब्द मिलै से विछड़ै नाही, सहजे सच समावणिया। तुझते बाहर कछु ना होए, तू कर कर वेख्या जाणै सोए। आपे करे कराए करता, गुरमत आप मिलावणिया। कामण गुणवंती हर पाए, पै पाए सिंगार बनाए। सतगुर सेव सदा सोहागण, सच उपदेश समावणिया। शब्द विसारण।

लिख दिया कागद मस खोई, दूजे पाए सुख पाए ना कोई। कूड लिखे तै कूड कमावे, जल जावे कूड चित लावणिया। गुरमुख सचो सच लिखे विचार, सेजन सच्चे पावे मोख द्वार। सच कागद कलम मसवाणी, सच लिख सच समावणिया। मेरा प्रभ अंतर बैठा वेखे, गुरप्रसादी मिले सोई जन लेखे। नानक नाम मिले वड्याई, पूरे गुरते पावणिया। माझ महला तीजा आत्म राम, प्रगास गुरते होवे। हम मैं लागी गुरसबदी खोवे। मन निर्मलो अंदन भगती राता, भगत करे हर पावणिया। हाँ वारी जियो वारी, आप भगत करन अवरा भगत करावणिया। तिना भगत जना कहो, सद नाम सकार की जय। जो अंदन हर गुण गावणिया, रहाओ आपे करता कारण कराए। जित पावे तत्कार लाए, पूरे भाग

आओ गुरमुख जीवै मरै प्रवाण आर जा ना शीजै शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाए गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर सोभा पाए गुरमुख विचों आप गवाए आप तरै को सगले तारे गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगे शरीर गुरमुख हो मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागे गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिले वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहे दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख अंदन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंदांदारा जमकाल गरठे करै पुकारा आंदन रोगी बिष्टा के कीड़े बिष्टा मैं दुख पावणिया गुरमुख आपे करे कराए गुरमुख हृदय उठा आपे आए नानक नाम मिलै वडियाई पूरे गुरते पावणिया माज महला तीजा एका जोत जोत है शरीरा सब दिखा।

तू आपे दुख सुख देवै करते गुरमुख हर दे खावणिया आपे करता करे कराए आपे शब्द गुर मन वसाए शब्दे उपजै अमृत बाणी गुरमुख आख सुनावणिया आपे करता आपे भुगता बंधन तोड़े सदा है मुक्ता सदा मुक्त आपे है सच्चा आपे लख लखावणिया।

आपे करे कराए आपे, आपे थापो थापे आपे, तो ते बाहर कछु ना होवे, तू आपे कर लावण्या। आपे मारे आप जीवाए, आपे मेले मेल मिलाए, सेवा ते सदा सुख पाया, गुरमुख सहज समावण्या। आपे उच्चा उच्चो होई, जिस्या विखाले सो वेखै कोई, नानक नाम वसै कटे अंतर, आपे वेख विखालण्या। माज महला तीजा, मेरा प्रभ भरपूर रहया सब थाई, गुर प्रसादी कर ही मह पाई, सदा सिरे वी एक मन त्याई, गुरमुख सच समावण्या। हाँ वारी जियो वारी, जग जीवन मन वसावण्या। हर जग जीवन निरपौ दाता, गुरमत सहज समावण्या। रहाओ करी मैं तरती तौल पाताला, कर ही मैं प्रीतम सदा है बाला, सदा आनंद रहै सुखदाता, गुरमत सहज समावण्या। काया अंदर हों मैं मेरा, जमण मरण ना चुकै फेरा, गुरमुख

अंदर महल रतनी परे भंडारा गुरमुख पाए नाम अपारा। गुरमुख वणजे सदा वापारी लाहा नाम सद पावणिया। आपे वथ राखै आपे दे गुरमुख वणजै केई के। नानक जिस नदर करे सो पाए कर कृपा मन वसावणिया। माज महला तीजा हरे आपे मेले सेव कराए गुर कै शब्द भाव दूजा जाए। हर निर्मल सदा गुण दाता हर गुण मैं आप समावणिया। हाँ वारी जियो वारी सच सच्चा हिरदय वसावणिया। सच्चा नाम सदा है निर्मल गुर शब्दी मन वसावणिया। रहाओ आपे गुरदाता कर्म विधाता सेवक सेवै गुरमुख हर जाता। अमृत नाम सदा जन सो है गुरमत हर रस पावणिया। इस गुफा मैं कथान सोहाया पूरे गुरह मैं भरम चुकाया। अंदर नाम सलाहन रंग राते गुर कृपा ते पावणिया। गुर कै शब्द एहो गुफा विचारे नाम निरंजन अंतर वसै मुरारे। हर गुण गावै शब्द सुहाए मिल प्रीतम सुख पावणिया। जम जा गाती दूजे पाए कर लाए नाम पूले देश जाए। कड़ी मोहत का लेखा लेवै रतियो मासा तोल कढ़ावणिया। पेयड़ै प्रचेते नाही दूजे मुठी रोवै ताही। खरी कुवाल्यो क्रूप कुलखणी सुपने पर नहीं पावणिया। पेयड़ै

तुद जेवड़ दाता है वर ना स्वामी लवै ना कोई लावण्या। जिस तू तुठा सो तुद त्याए साजना का मंत्र कमाए आप तरै सगले कुल तारे तिस दरगह ठाक ना पावण्या। तू वड्डा तू उचो उचा तू बेअंत वत मूचो मूचा हाँ कुर्बानी तेरे वन्या नानक दास दसावण्या। माज महला पंजवा कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता कौन सो ज्ञानी कौन सो भगता कौन सो गिरही कौन उदासी कौन सो कीमत पाए जियो किन बिद बाधा किन बिद छूटा किन बिद आवन जावन तूटा कौन कर्म कौन निहकर्मा कौन सो कह कहाए जियो कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया किन बिद मिलिए किन बिद बिछरे एह बिद कौन प्रगटाए जियो कौन सो अखर जे तावत रहता कौन उपदेश जित दुख सुख समसहता कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याए किन बिद कीर्तन गाए जियो गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता गुरमुख ज्ञानी गुरमुख भगता धन गिरही उदासी गुरमुख गुरमुख कीमत पाए जियो हम मैं बाधा गुरमुख छूटा गुरमुख आवन जावन तूटा गुरमुख कर्म गुरमुख निहकर्मा गुरमुख करे सो सुभाए जियो गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया गुरमुख मिलिए मनमुख बिछरे गुरमुख बिद प्रगटाए जियो गुरमुख अखर जे तावत रहता गुरमुख उपदेश दुख सुख समसहता गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याए गुरमुख कीर्तन गाए जियो सगली बणत बनाई आपे आपे करे कराए थापे एक स्ते होयो अनंता नानक एक समाए समाए जियो। माज महला पंजवा प्रभु बनासी ता क्या काड़ा हर भगवंता ता जन खरा सुखाला जी प्राण मान सुखदाता तू करै सोई सुख पावण्या। हां वारी जियो वारी गुरमुख मंतन पावण्या। तू मेरा पर्वत तू मेरा ओला तुम संग लवै ना लावण्या रहाओ तेरा कीता जिस लागै मीठा घट घट घट घट पार ब्रह्म तिन जन डीठा थान थनंतर तू है इको एक वरतावण्या। सगल मनोरथ तू देवनहारा भगती पाए भरे भंडारा दया तार राखे तुद से पूरे कर्म समावण्या। अंधकूप ते कंडे चाड़े कर कृपा दास नजर निहाले गुण गावे पूर्ण अबनासी कह संतोट न आवण्या।

क्या गुण तेरे आख संभाली, मन तन अंतर तुद नदर निहाली। तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी, तुद बने अवर न जाननिया। जिस कहो तू प्रभु पया सहाई, तिस तत्ती वाव न लगे काई। तू साहेब सरण सुखदाता, सतसंगत जब प्रगटा बनिया। तू ऊचा था हुआ पारा मोला, तू साचा साहेब दास तेरा गोला। तू मीरा साची ठकराई, नानक बल बल जावणिया। माज महला पंजवां घर दूजा, नित नित दै संभालीऐ, मूला मनो विसारीऐ। रहाओ संता संगत पाईऐ, जे जमकै पंथ ना जाईऐ। तोसा हर का नाम लै, तेरे कुलै न लागै गाल जियो। जो सवरंदे साई है, नरक ना सही पाई है। तत्ती वाव न लगई, जिन मन उठाया जियो। सही सुंदर सोहणे, साध संग जिन बहणे। हर तन जिनी संजया, सही गंभीरिया पार जियो। हर अमे और साइन पीवी है, मोह डिठै जन कै जीवी है। कार्ज सब सवार लै, नित पूजो गुर के पाव जियो। जो हर कीता अपना, तने गुसाई जापना। सो सूरा प्रधान सो, मस्तक जिसदै भाग जियो। मन मंदे प्रभ अवगाहिया, एह रस भोगण पातशाहिया। मंदा मूल ना उपजियो, तरे सच्ची कारै लाग जियो। करता मन वसाया, जन्मै का फल पाया। मन पावंदा कंत हर, तेरा थिर होवा सुहाग जियो। अटल पदार्थ पाया, पै भंजन की सरनाया। लाए अंचल नानक तारिया, जिता जन्मया पार जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, माज महला पंजवां घर तीजा। हर जप जपे मन धीरे, रहाओ सिमर सिमर गुर देओ। मिट गए पै दूरे, सरन आवै पार ब्रह्म की। ता फिर काहे झूरे, चरण सेव संत साध के। सगल मनोरथ पूरे, घट घट एक वर्तदा। जल थल महियल पूरे, पाप बिनासन सेविया। पवित्र संतन की धूरे, सब छड़ाई खसम आप। हर जप पई ठरूरे, करते कियत पाप सो। दुष्ट मोए होए मूरे, नानक रत्ता सच नाए। हर वेखै सदा हजूरे, बारह माहा माज महला पंजवां घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, किरत कर्म के विछड़े, कर कृपा मिलो राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थके आए प्रभ की साम। तेन दुदै ते बाहरी, किते ना आवै काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नहा ना मिलिए साजने, कत पाइये विश्राम। जित घर हर कंत ना प्रगटई, पठ नगर से ग्राम। सर्ब सिंगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूणिया, मीत सज्जन सब जाम। नानक की बेनंतिया, कर कृपा दीजै नाम। हर मेलो स्वामी संग प्रभ, जिसका निचल ताम। चेत गोविंद आराधिया, होवे आनंद कणा। संत जना मिल पाईऐ, रसना नाम भणा। जिन पाया प्रभ अपना, आए तिसै गणा। एक खेनु तिस बिन जीवना, बिरथा जन्म जना। जल थल महियल पूरिया, रव्या विच वणा। सो प्रभ चेतना आवई, कितड़ा दुख गणा। जिनी रावया सो प्रभु, तिन्ना पाग मना। हर दर्शन कौ मन लोचदा, नानक प्यास मना। चेत मिलाए सो प्रभु, तिसके पाए लगा। वैसाख तीर्ण क्यों वाडिया,
जिन्ना प्रेम बिशोहो हर साजन पुरख विसार कै लगी माया तोहो। पुत्र कलतर ना संग तना हर अवनासी ओहो परच परच सगली मुई झूठे तंदे मोहो। एक सहर के नाम बिनो अगे लइए खोहे दैव सार विगुचना प्रभ ने अवर ना कोए। प्रीतम चरणी जो

हर जेठ जोड़न दा लोड़िया जिस अगे सब निवान हर सज्जन दावन लग्या किसे ना देई बन मानक मोती नाम प्रभ उन लगे नाही सन रंग सबे नारायण जेते मन पावन जो हर लोड़े सो करे सोई जी करन जो प्रभ कीते अपने से ही कहिए तन अपन लिया जे मिले विछड़ क्यों रोवन साधु संग प्राप्ते नानक रंग माणन हर जेठ रंगीला तिस धनी जिसकै भाग मथन आषाढ़ तपंदा तिस लगे हर ना हो ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग कै मानस संदियास दुया पाए विगुची है गल पई सो जम की फास जिहा बीजै सो लुण मथे जो लिखे आस रैन विहानी पछताणी उठ चली गई निरास जिन कौ साधु भेटिए सो दरगह होए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन होए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास आसार सुहंदा तिस लगै जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा व्या दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वन तेन प्रभ संग मौलिया समर्थ पुरखिया पार हर मिलने नो मन लोचदा करम मिलावन हार जिनी सखिए प्रभ पाया हों तिनकै सबर हार नानक हर जी माया कर शब्द सवारन हार सावन तिना सुहागनी।

नानक मंगे दर्श दान कृपा करो हरे। माज महला पंजवां दिन रहन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रहन आप त्याग सरनी पवा मुख बोली मिठड़े वैन जन्म जन्म का विछड़िया हर मेलो सज्जन सैन जो जी हर ते विछड़े से सुख न वसन पैण हर पिर बिन चैन न पाईए खोज डिठे सब गैण आप कमाण विछड़ी दोस न काहू देण कर कृपा प्रभ राख लेहो होर नाही करन करेण हर तुद बिन खाकू रूलना कहिए किथे वैण नानक की बेनतिया हर सुरजन देखा नैण जी की बिरथा सो सुने हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना काया धार ससरे पई है तिसकंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम आप गाद बोध किशंत ना पारावार सेवा सा तिस पावसी संता की हो इशार दीना ना दयाल देव पत ते उदाहरण हार आज जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई न जाने को नाही तोलन हार मंत्र अंतर वस रहे नानक नहीं सुमार दिन रहन जे प्रभ को सेम दे तिन कै सत बलिहार संत आराधन सत सदा सबना का बख्शंद जियो पिंड जिन साजिया कर कृपा दिती निजिंद गुरसबदी आराधिय जपिए निर्मल मंत कीमत कहन न जाइए परमेसर बेअंत जिस मन वसै नारायण सो कहिए भगवंत जी की लोचा पूरी है मिले स्वामी कंत नानक जीवै जप हरी दोख सबे ही हंत दिन रहन जिस न विसरै सो हरिया होवै जंत सर्व कला प्रभ पूर्ण मन मानी थाओ हरे ओट गही मन अंदरे जब जब जीवान आओ कर कृपा प्रभ अपनी जंतूड़ी संग समाओ जो तू राख्या त्यो रहा तेरा दिता पैना खाओ उद्म सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए न सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बिनासन तम हरण ऊंचे अगमया माओ मन विछड़िया हर मेली है नानक हो सवाओ सर्व कल्याणा तित देनो हर परसी गुर के पाओ वार माज की तथा श्लोक महला पहला मलक मुरीद तथा चंद्रहड़ा सुहिया की तुनी गावनी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद श्लोक महला पहला गुरदाता गुर है वैकार गुरदीपक तेह लोए अमर पदार्थ नानका मन माने सुख होए महला पहला।

पुकारिता, उड़िया हंस दसायरा, आया गया मोया ना, पिछे पतल सद्यो का, नानक मनमुख अंध प्यार, वाजगुरु डुबा संसार, महला पहला। दस बाल तन बीस रवण, तीसा का सुंदर कहावे, चालीसी पर होए, पचासी पग

तू आपे खेल करे सब करते कै दूजा अख बखानी है। जिचर तेरी जोत तिचर ज्योति बिच तू बोलै विण ज्योति कोई किश करो दिखा सियाणी है। नानक गुरमुख नजरी आया हर इको सूट सुजाणी है पौड़ी।

संगे। एव कंत मिला वाह होए पौड़ी, सदा सदा तू एक है तो दूजा खिल रचाया। हम मैं गर्भ्यो पाए कै लोभ अंतर जनता पाया, ज्यो पावे त्यो रख तू सब करे तेरा कराया। इकना बक्सा मेल लै गुरमती तुदै लाया, एक खड़े करे तेरी चाकरी विणना मैं होर ना पाया। होर कार वेकार है एक सच्ची कार लाया, पुत कलत कुटंब है एक अलिप्त रहे जो तुद पाया। ओहे अंदरो बारो निर्मले सच्चे नय समाया, श्लोक महला पहला सोने कै पर्वत गुफा करी कै पानी पै आलो, कै विच धरती कै आकाशी उर्द्रहां सिर पार। पुर कर काया कपड़ पहरा तोवा सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला बेदा करी पुकार। होए कुचील रहा मलतारी दुर्मत मत विकार, ना हो ना मैं ना होवा नानक शब्द विचार। महला पहला वस्त्र पखाल पखाले काया आपे संयम होवै, अंतर मैल लगी नहीं जाने बारो मलमल तो वै। अंधा फूल पया जम जाले वस पराई अपनी कर जाने, हम विच दुख काले नानक गुरमुख हम मैं तुटै। ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपे नाम वारा दे नामे सुख समावै। पवड़ी काया हंस संजोग मेल मिलाया, तिन्ही किया विजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख उठे रोग पाप कमाया। हर खो सोग विजोगो पायख पाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सुहोग न चले चलाया। श्लोक महला पहला कूड़ बोल मुरदार खाए, अवरी नो समझावन जाए। मुठाया मुहाए साथ है नानक ऐसा गूजा पै। महला चौथा जिस दे अंदर सच है सो सच्चा नामुख सच्चा लाए। ओ हरे मार्ग आप चलदा होर नानो हर मार्ग पाए। जे अगे तीर्थ होए ता मल है, छपड़ ना तै सगवी मल लाए। तीर्थ पूरा सतगुरु जो अंदन हर हर नाम ते आए। ओ आप छुट्टा कुटंब स्यो दे हर हर नाम सब सिरिट छिड़ाए। जन नानक तिस बारे हारण है जो आप जपै अवरा नाम जपाए। पौड़ी एक कंद मूल चुन खाहे वण खंड वासा, एक भगवा वेस कर फिरै जोगी सन्यासा। अंदर तृष्णा बहुत शादर भोजन की आसा, वृथा जन्म गवाए ना गिरही ना उदासा। जम काल सिरो ना उतरै त्रिवद मनसा, गुरमती काल ना आवै नेड़ै जा होवै दासन दासा। सच्चा शब्द सच मन कर ही माहे उदासा, नानक सतगुर सेवन अपना से आसा ते निरासा। श्लोक महला पहला जे रत लगे कपड़े जमा होए पलीत, जो रत पीवे मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। नानक नाम खुदाए का दिल हच्छा मुख ले हो, अवर दिवा जे दुनी के झूठे अमल करे हो। महला पहला जा हो नाही ता क्या खा, क्यों नाही क्या होवा। कीता करना कहया कथना भरिया पर तोवा। आप ना बुझा लोक बुझाई ऐसा या गुहोवा, नानक अंदा होए कै दसे राह है सब समुहाए साथ है। अगे गया मोहे मोहे पाहे सो ऐसा या गुजा पै। पौड़ी महारुति सब तू कड़ी मूर्त विचारा, तू करता कने ना पायो सच्चे लख्या पारा। पढ़िया मूर्ख आखिया जिस लब लोग अहंकारा, ना पढ़िए ना बुझिए गुरमती विचारा। गुरमती नाम तन खटिया भक्ति परे भंडारा, निर्मल नाम मनिया दर सच्चे सचियारा। जिसदा जियो प्राण है अंतर ज्योतिया पारा, सच्चा साहो एक तू होर जगत वनजारा। श्लोक महला पहला मेहर मसीत सिद्क मुसल्ला हक हलाल कुरान, सरम सुन्नत सील रोजा हो मुसलमान। करनी का बासच पीर कलमा कर्म नमाज, तस्बी सात इस पावसी नारक रखे लाज। महला पहला हक प्राया नानका उस गाए, गुरपीर हमा ता परे जा मुरदार ना खाए। गली पिस ना जाइए छुट्टे सच कमाए।

क्या पैदा होए जा मन नाहीं सच्चा सोए। क्या मेवा क्या क्यों गुड़ मिठा क्या मैदा क्या मास। क्या कपड़ क्या से सुखाली कीजे भोग बिलास। क्या लश्कर क्या नेवखवासी आवे महली वास। नानक सच्चे नाम विण सबे टोल विनाश पवड़ी। जाति रह क्या हाथ सच परखी है मवरा होवे हाथ मरिया चखी है। सच्चे की सरकार जुग जुग जानी है हुक्म ने सरदार दर दीवानी है। फुरमानी है कार खसम पठाया तबल बाज बिचार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती एक नी बदे पार एक ना ताकती। श्लोक महला पहला। जा पक्का ता कटिया रही सो पलरवाड़ सन की सारा चिथिया कल लया तन झाड़। दोए पुड़ चक्की जोड़ कै पीसने आए बैठ जो दर रहे सो बरे। नानक अजब डेठ महला पहला वेख जे मिठा कटिया कट कुट बद्दा पाए। खुंडा अंदर रख कै दिन सो मल सजाए। रस कस टटर पाईए तपै तैवल लाए पीसो फूक समालिए दिचै विजा लाए। नानक मिठै पतरिए वेखो लोका आए। पवड़ी एक ना मरना चेत आस कणे रिया मर मर जमै नित किसै ना केरिया। आपन रह मन चेत कहन चंगे रिया जबरा जै नित नित मन मुख हेरिया। मन मुख लून हराम क्या ना जानिया बदे करन सलाम खसम ना पाणिया। सच मिलै मुख नाम साहिब पावसी करसन तख्त सलाम लिखिया पावसी। महला पहला श्लोक। मच्छी तारू क्या करे पंखी क्या आकाश। पत्थर पाला क्या करे खुसरे क्या करवास। कुत्ते चंदन लाई है पीसो कुत्ती तात। बोला जे समझाई है पढ़िया स्मृत पाठ। अंधा चानन रखिए दीवे बले पचास। चौने सोय ना पाई है चुन चुन खावे कास। लोहा मारन पाई है टह ना होए कपास। नानक मूर्ख एह गुण बोले सदा विनाश। महला पहला। तैहा कंचन तुटे सार अग्नि गंड पाए लोहार। गोरी सेती तुटे पतार पुत्ती गंड पवे संसार। राजा मंगे दिते गंड पाए भुखिया गंड पवे जा खाए। काला गंड नदियां मीह चोल गंड प्रीति मिठे बोल। बेदा गंड बोले सच कोए मोया गंड नेकी सत होए। एत गंड वरतै संसार मूर्ख गंड पवे मोह मार। नानक आखे हो बिचार सिफती गंड पवे दरबार। पौड़ी आपे कुदरत साज कै आपे करे बिचार। एक खोटे एक खरे आपे परखणहार। खरे खजाने पाईए खोटे सटिए बार वार। खोटे सच्ची दरगह सुटी है किसे आगे करे पुकार। सतगुर पिछे भज पवै एहा करनी सार। सतगुर खोट्यो खरे करे शब्द सवारन हार। सच्ची दरगह मनियन गुर कै प्रेम प्यार। गणत तिना दी को क्या करे जो आप बख्शे करतार। श्लोक महला पहला। हम जेर जिमी दुनिया पीरा मसाए कराया। मेर वद बाद सहा अफजू खुदाए। एक तू ही एक तू ही महला पहला। ना देव दानवा नरा ना सिद्ध साध का तरा। अस्त एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला। ना दादे देहांदे आदमी ना सबत जेर जिमी। अस्त एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला। ना सूर सस मंडलो ना सपत दीप नह जलो। अन पौन थिर ना कोई एक तू ही महला पहला। ना रिजक दस्त आकसे हमारा एक आस वसे। अस्त एक दिगर कोई एक तू ही महला पहला। परंदे ना ग्रह जर दरख्त आव्यास कर। देहंद सुई एक तुई महला पहला। नानक ललार लिखिया सोए मेटना सकै कोए।
कला तरह हिरै सुई एक तुई पौड़ी सच्चा तेरा हुक्म गुरमुख जानिया गुरमती आप गवाए सच पछाणिया सच तेरा दरबार शब्द निसाणिया सच्चा शब्द विचार सच समाणिया मनमुख सदा कूड़ियार परम पुलाणिया विष्टा अंदर वास साधना जानिया मिण नावें दुख पाए आवन जानिया नानक पारख आप जिन खोटा खरा पछाणिया सलोक महला पहला सिंह बाजा चरगा कुहियां इना

असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे सुवा जेते जी जीवे लै साहा जीवा ले तां के असा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे गिरा। महला पहला एक मांसाहारी एक तृण खाए एक नाशक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मैं मिटिया खाहे एक पौन सुमारी पौन सुमार एक निरंकारी नाम आधार। जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए। पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम ते आई है। दूजी कार लग जन्म गवाई है विणना में सब विस पैजै खाई है। सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है विण सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है। दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा साला है पत स्यों जाइए। सलोक महला पहला तुद पावे ता वावे गावे तुद पावे जल नावे जा तुद पावे ता करे बेपूता सिंगी नाद वजावे जा तुद पावे ता पड़े कतेबा मुला सेह कहावे जा तुद पावे ता होवे राजे रस कस बहुत कमावे जा तुद पावे तेग बगावे सिर मुंडी कट जावे जा तुद पावे जाए दसंतर सुन गल्ला कर आवे जा तुद पावे ना इरचावे तुद पाने तू पावे नानके कह बेनंती होर सगले कूड़ कमावे। महला पहला जा तू वड्डा सब वड्याईया चंगे चंगा होई जा तू सच्चा ता सब को सच्चा कूड़ा कोई ना कोई। आखण वेखण बोलण चलण जीवन मरना तात हुक्म साज हुक्म विच रखै नानक सच्चा आप। पौड़ी सतगुर सेवन संग भरम चुकाई है सतगुर आखै कार सो कार कमाई है सतगुर होए दयाल ता नाम ते आई है। लाहा भगत सो सार गुरमुख पाई है मनमुख कूड़ गुबार कूड़ कमाई है सच्चे दह दर जाए सच चमाई है। सच्चा अंदर महल सच बुलाई है नानक सच सदा सच्यार सच समाई है। श्लोक महला पहला कलकाती राजे का साई धर्म पंख कर उडरिया कूड़िया मावस सच चंद्रमा दिसै नाही कह चढ़िया। हाँ पाल विकुन्नी होई अंधेरे राहो ना कोई विच हम मैं कर दुख रोई कहो नानक किन बेदगत होई। महला तीजा कल कीरत प्रगट चानन संसार गुरम कोई उतरे पार जिसनो नदर करे तिस देवै नानक गुरमुख रतन सो लेवै। पौड़ी भगता तै सह सारियां जोड़ कदे ना आया करता आपा भुल है ना भुलै किसै दा भुलाया। भगत आपे मेलियान जिन्नी सचो सच कमाया संसारी आप खोआयान जिन्नी कूड़ बोल बोल बिख खाया। चलन सार ना जाननी काम क्रोध विस वधाया भगत करन हर चाकरी जिन्नी अंदर नाम ते आया। दासन दास होए कै जिनी विचों आप गवाया उना खसमै कै दर मुख उजले सच्चे शब्द सुहाया। सलोक महला पहला साबाही सालाहा जिनी त्याया एक मानो से ही पूरे साहा वक्ते उपर लड़ मोए। दूजे बहुते राह मन किया मती खिंडिया बहुत पै असगाहा गोते खाहे ना निकले। तीजे मुई गिराहा पुख दिखा
दुए भौकिया खादा हुए सुहा पी खाने स्यों दोस्ती चौथे आई ऊंग अखी मीट पवार गया पी उठ रचियोन वाद सैवरिया की पिड़ बदी सबे वेला वक्त सब जे अठी पोए नानक साहिब मन वसै सच्चा नावन होए महला दूजा से पूरे साहा जिनी पूरा पाया अठी वे परवाह रहन एक तैरंग दर्शन रूपया था विरले पाई है कर्म पूरा पूरा गुरु पूरा जाका बोल नानक पूरा जे करे कटे नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इना चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाए सो भन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तुलाई है कोई ना आखे घट हों मैं जाई है लियन खरे परख दर भी नाई है सौदा एक तहट पूरे गुर पाई है श्लोक महला दूजा अठी पहरी अठ खंड नावा खंड शरीर तिस विच नौ निध नाम एक पाले गुणी गहीर कर्मवंती साला हया नानक कर गुरपीर चौथे पैर सबाह कै सुरत्या उपजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाओ ओथे अमृत वंडी है करमी होए पसाओ कंचन काया कसी है वन्नी चढ़ै चढ़ाओ जे होवै नदर सराफ की बहुना पाई ताओ सत्ती पहरी सत भलिया सत्ती पहरी सत भला बहिया पढ़िया पास ओथे पापुन बिचारी है कूड़े कट्टे रास ओथे खोटे सट्टी है खरे कीचे सा बास बोलन फादल नानका दुख सुख खसमै पास महला दूजा पौन गुरु पानी पिता माता तरत महत दिन सरात दोए दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचे तरम हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले होर केती छुट्टी नाल पौड़ी सच्चा भोजन पाओ सतगुर दस्या सच्चे ही पति आए सच विगस्या

गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर एहो विशेख कहना है किश कहन ना जाए तो कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ सरम सुरत दुए ससर पहे करनी कामण कर मन लए साह संयोग वियह वियोग सच संतत।

जय कारण तट तीर्थ जाही रतन पदार्थ कट ही माही पड़ पट पंडित बाद वखाण है भीतर होंदी वस्त न जाण है हाओ ना मुआ मेरी मुई बलाए ओहो ना मुआ जो रया सुमाए कहो नानक गुर।

दाता गौड़ी चेती महला पहला मुंदरा ते कट पीतर मुंदरा काया की जय खिंचता ता पंच चेले वस की जय रावल एह मन की जय डंडा ता जोग जुगते पावस्ता एक शब्द दूजा होर नास्त कंद मूल मन लावस्ता रहाओ मुंड मुडाया जे गुर पाईया हम गुर कीनी गंगा ता त्रिपवन तारण हर स्वामी एक ना चेतस अंधाता कर पटंब गली मन लावस संसा मूल न जावस्ता एक चरणी जे चित लावै लब लोभ की तावस्ता जपस निरंजन रचस मना काहे बोले जोगी कपट कना रहाओ काया कमली हंस याना मेरी मेरी करत बिहानी ता प्रणवत नानक नांगी दाजै फिर पाछा पिछतानी ता गौड़ी चेती महला पहला औखद मंत्र मूल मन एक जे कर दृढ़ चित की जय रे जन्म जन्म के पाप कर्म के काटन हारा ली जय रे मन एको साहिब पाई रे तेरे तीन गुणा संसार समावे लखना लखना जाई रे रहाओ सकर खंड माया तन मीठी हम तो पंडो चाई रे रात अनेरी सूज सनाही लज टूक समूसा पाई रे मन मुख करे तेता दुख लागे गुरमुख मिले वडाई रे जोतन किया सोई होवा कीर्तना मेटिया जाई रे सुबर परे ना होवे ऊने जोरा ते रंग लाई रे तिन की पंख होवे जे नानक तौ मूड़ा किश पाई रे गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थामो हम आए अगन बिंब जल पीते।

केते रुख बिरखा मचीने केते पशु उपाए केते नाग कुली में आए केते पंख उड़ाए हाट पटन बिज मंदर पन्ने कर चोरी कर आवे अगो देखे पिछों देखे तू ते कहां छुपावे तट तीर्थाम नवखंड देखे हट पटन बाजारा लैके तकड़ी तोलन लागा कठी मैं मन जारा जेता समो

बिन बूझे तन मन फीका होए, बिन ना मैं दुखिया चलिया रोए। रसना हरस चाखिया सहज सुभाए, गुर कृपा ते सच समाए। साचे राती

ना कोई गुर शब्दी मन नाम निवास नानक सच भांडा जे शब्द प्यास गौड़ी गुआरे री महला तीजा एक गावत रहे मन साध ना पाए हम मैं विच गावे बिरथा जाए गावन गावे जे नाम प्यार साची बाणी शब्द विचार गावत रहे जे सतगुर भावे मंतन राता नाम सुभावे रहाओ एक गावे एक भगत करे नाम ना पावे बिन असनेह सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पर राखिया सदा और तार भगत करे मूर्ख आप जनावे नच नच टपे बहुत दुख पावे नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वच्छल भगत कराए सोए सच्ची भगत विचों आप खोए मेरा प्रभ साचा सब जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरे री महला तीजा मन मारे तात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोए मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनों बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसै मन आई रहाओ गुरम करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन मैं मत मैंगल मिकदारा गुर अंकश मार जीवालन हारा मन या साध साध जन को

आप भुला के प्रभ आप भुलाया, एहो जियो वडाणी चाकरी लाया, महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया, किरपा कर सतगुरु मिलाए, को नाम चेते विचों भरम चुकाए, नानक नाम जपे नाव नव निध पाए, गौड़ी गुआरे री महला तीजा, जिन्ना गुरमुख ते आया तिन पूछो जाए, गुर सेवा ते मन पति आए, से तनवंत हर नाम कमाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, हर हर नाम जपो मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाए पाई रहाओ आप।

सहजे सही समावै सोए, दूजे पाए ना सेव्या जाए। हमें माया महा बिख खाए, पुत कुटंब गृह मोया माए, मन खयंदा आवै जाए। हर हर नाम देवै जन सोए, अंदर भगत गुरसबदी होए, गुरमत विरला बूझै कोए, नानक नाम समावै सोए। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, गुर सेवा जुग चारे होई, पूरा जनकार कमावै कोई, अखुट नाम तन हर तोट ना होई, ऐथे सदा सुख दर सोभा होई, ए मन मेरे भरम ना कीजै। गुरमुख सेवा अमृत रस पीजै रहाओ, सतगुर सेवै ऐसे महापुरख संसारे, आप उदरे कुर सगल निस्तारे। हर का नाम रखे और तारे, नाम रते भौजन उतरे पारे, सतगुर सेवै सदा मन दासा, हमै मार कमल प्रगासा, अनहद वाजै निकर वासा, नाम रते कर माहे उदासा। सतगुर सेवै तिन की सच्ची बाणी, जुग जुग भक्ति आख वखाणी, आन दिन जपै हर सारंग पाणी, नानक नाम रते नेह केवल निर्बाणी। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा, सतगुर मिले वडभाग संजोग, हृदय नाम नित हर रस भोग, गुरमुख प्राणी नाम हर त्याए, जन्म जीत लाहा नाम पाए रहाओ। ज्ञान ध्यान गुर शब्द है मीठा, गुर कृपा ते किने विरलै चख डीठा, कर्म कांड बहु करे आचार, बिना मैं त्रिग त्रिग हंकार, बंधन बांधे हो माया फास, जन नानक छूटै गुर प्रगास। महला तीजा, गौड़ी बैरागण, जैसी धरती उपर मेघला बरसत है, क्या धरती मध्ये पानी नाही, जैसे धरती मध्ये पानी परगासिया, बिन पग्गा वरसत फिराही। बाबा तू ऐसे परम चुकाही, जो किश करत है सोई कोई है रे, तैसे जाय समाही रहाओ। स्त्री पुरख होए कै क्या वे कर्म कमाही, नाना रूप सदा है तेरे, तुझी मैं समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही, जा का कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही, तेरा शब्द तू है आपे परम कहाही। नानक तत् तत् सो मिलिया, पुनरप जन्म ना आही। गौड़ी बैरागण महला तीजा,

लख चौरासी भरम दे मन अठिया वह जाए, गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए। गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसया मन आए, अंदर भगती रतिया हर नामे सुख समाए। मन शब्द मरे प्रतीत होए, हो मैं तजे विकार, जन नान करमी पाईया नु हर नामा भगत भंडार। गौड़ी बैरागण महला तीजा, पेई अड़ै दिन चार है, हर हर लिख पाया सोभावंती नार है। गुरमुख गुण गाया पेवकड़ै गुण समलै, साहुरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया। ससरै पेई पिर वसै, कहो किद बिद पाईऐ, आप निरंजन अलख है आपे मिलाईऐ रहाओ। आपे ही प्रभ देह मातु हर नाम ते आई है, वडभागी सतगुर मिलै मुखी अमृत पाई है। हो मैं दुबदा बिनस जाए, सहजे सुख समाई है, सब आपे आवरदा आपे नाए लाई है। मनमुख गर्भ ना पायो, अज्ञान अयाने सतगुर सेवा ना करे फिर पछताने। गर्भ जोनी वास पाए दे गर्भे गर जाने, मेरे करते एवै भामदा मनमुख प्रमाणे। मेरा हर प्रभ लेख लिखाया तुरमस्तक पूरा, हर हर नाम ते आया भेटिया गुरसूरा। मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधु बीरा, हर हर बख्श मिलाए प्रभ जन नानक कीरा। गौड़ी बैरागण महला तीजा, सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बिचारा, मत मलीन प्रगट भई जपना मुरारा। सेव सकत मिटाइया चूका दियारा, तुरमस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा। हर कित बिद पाईऐ संत जना, जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती, गुर मिल्यो हर रस पीवा रहाओ। हाँ हर गुण गावा नित हर सुनी, हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी। तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी, जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी। गुण दाता हर राय है,

हम पापी शरण परे हर द्वार मत निर्गुण हम मेले कबहू अपनी कृपा तार रहाओ। हमरे अवगुण बहुत बहुत है बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल हर आपे बख्श लह हर भावे। हम अपराधी राखे गुरसंगति उपदेश दियो हर नाम छड़ावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब बिस्म हो जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है जैसे हम सतगुर राख लिए छड़ाए। तू गुर पिता तू है गुर माता तू गुर बंधु मेरा सखा सखाए। जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले चुके सब सोग संतापे।

सगल कड़ा के अंतर्यामी सर्व सुखा सुख साचा ए हो गुर उपदेश मन में ले हो जा कहो राम नाम लिव लागी कहो नानक सो धन वड भागी गौड़ी गुआरेरी महला पंजवा सुन।

हर हर नाम जपत जंतारियो, अग्न सागर गुर पार उतारियो रहाओ। कर कीर्तन मन शीतल भय, जन्म जन्म के किल विख गए। सर्व निदान पेखे मन माहे, अब ढूंढन काहे कौ जाए। प्रभ अपने जपै दयाल, पूर्ण होई सेव काल। बंधन काट किए अपने दास, सिमर सिमर सिमर गुणतास। एको मन एको सब ठाए, पूर्ण पूरे ओ सब जाए। गुर पूरे सब भ्रम चुकाया, हर सिमरत नानक सुख पाया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, अगले मोए से पाछे परे। जो उबरे से बंद लक खरे, जे धंधे मैं ओए लपटाए। उनते दुगड़ दिड़ी उन माए, ओह बेला का चीत न आवे। बिन सजाए ताहूं लपटावे रहाओ। आशा बंदी मूर्ख देहे, काम क्रोध लपटे वसने हे। सिर ऊपर ठंडो धर्म राए, मीठी कर कर बिख्या खाए। हाँ बंदा हाँ साधो बैर, हमरी भूम कौन काले पैर। हाँ पंडित हाँ चतर सियाणा, करने हरना बुझै बिगाना। अपनी गत में ते आपे जाने, क्या को कह क्या आख बखान। जित जित लावे तित तित लगना, अपना भला सब काहू मंगना। सब किश तेरा तू करना हार, अंत नाही किश पारावार। दास अपने कौ दी जैदान, कबू ना विसरे नानक नाम। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आनक जतन नहीं होत छुटारा। बहु से आन पे अगल पारा, हर की सेवा निर्मल हेत। प्रभ की दरगह शोभा सेत, मन मेरे गहो हर नाम का उल्ला। तुझे ना लागे ताता चोला रहाओ। जो बोहित पै सागर माहे, अंधकार दीपक दीपाहे। अगन सीत का लास दुख, नाम जपत मन होव सुख। उतर जाए तेरे मन की प्यास, पूर्ण होवे सगली आस। डोले नाही तुमरा चीत, अमृत नाम जप गुरमुख मीत। नाम औखद सोई जन पावे, कर कृपा जिसे आप देवावे। हर हर नाम जाके हृदय वसै, दुख दर्द तेह नानक नसै। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, बहुत दर्ब कर माना या गाना। अनक रूप देखने पतियाना, पुत्र कलत्र उर जो जान मेरी। ओ बिनसै ओ पसमै टेहरी, बिन हर भजन देखो बिल्लाते। त्रिगतन त्रिगतन माया संग्राते रहाओ। जो बिगारी कैसर दी जय दाम, ओए खसमै कै ग्रह उन दुख सहाम। ज्यो सुपने होए बैस्त राजा, नेत्र पसारे तन निरार्थ काजा। ज्यो राखा खेत ऊपर पराए, खेत खसम का राखा उठ जाए। उस खेत कारण राखा कड़ै, तिसके पाले कछु ना पड़ै। जिसका राज तिसे का सुपना, जिन माया दीनी तिन लाई तृष्णा। आप बिना है

तुम लावाओ तौ लागे सेवो, हम ते कछु ना होवे देव रहाओ। तुद भावै ता गावा बाणी, तुद भावै ता सच बखाणी, तुद भावै ता सतगुर मया, सर्व सुखा प्रभ तेरी दया। जो तुद भावै सो निर्मल करमा, जो तुद भावै सो सत धर्मा, सर्व निदान गुण।

नाम तेरा रहे मन राता, यो कल्याण नान कर जाता। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, आन रसा जेते तै चाखे, निमखना तृष्णा तेरी लाथे। हर रस का तू चाखे साधो, चाखत होए रहे बिस्मादो। अमृत रसना पियो प्यारी, एह रस राती होए तृप्तारी रहाओ। हे जेहवे तू राम गुण गाओ, निमख निमख हर हर हर ते आओ। आन न सुनिए कत हूं जाइए, साध संगत वडभागी पाइए। आठ पहर जेहवे आराध, पार ब्रह्मो ठाकरे आगाद। इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनिया मोली। बनस्पत मौली फल फुल पेडे, एह रस राती बहोर ना छोड़े। आन ना रस कस लवे ना लाई, कहो नानक गुर पै है सहाई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवा, मन मंदर तन साजी बार। इस ही मदे बस्त्या पार, इस ही पीतर सुनियत साहो। कौन बापारी जां कहुआ विसाहो। नाम रतन को ब्योहारी, अमृत भोजन करे आहारी रहाओ। मन तन अर्पी सेव करी जय, कवन सो जुगत जित कर पी जय।

संचारे खोजत खोजत नहीं कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया। कर कृपा जा मिले साहे, कहो नानक गुर कै वे साहे। गौड़ी महला पंजवा ग्वारेरी, रैन दिनस रह करंगा। प्रभ को जाने सधी संगा, ठाकर नाम कियो उन वर्तन। तृप्ता गावन हर कै दर्शन, हर संग्राते मन तन हरे। गुर पूरे की सरनी परे रहाओ, चरण कमल आत्म आधार। एक निहार आज्ञाकार, एको बनजो एको व्यवहारी। अवर न जाने बिन रंकारी, हरख सोग दहू ते मुक्ते। सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस सब मैं सब ते रहते। पार ब्रह्म का हो ध्यान तरते, संतर की महिमा कमन बखानो। आगाध बोध किस्मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय। तूर संतन की नानक दी जय। गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत। तू मेरा प्रीतम तुम संगहीत, तू मेरी पात।

जो तुम कहो सोई मोहे करना, जह पेखो तहां तुम बसना, निरपो नाम जपो तेरा रसना। तू मेरी नवनिध तू पंडार, रंग रसा तू मन आधार, तू मेरी शोभा तुम संगरचिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया। मन तन अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़ केक, नानक दास हर हर हर टेक, गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा। व्यापत हरक सोग विस्तार, व्यापत स्वर्ग नरक अवतार, व्यापत धन निरतन पेक शोभा, मूल व्याधि व्याप सलोभा। माया व्याप्त बहु प्रकारी, संत जीव प्रभु उठ तुम्हारी रहाओ, व्यापत अहम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्र संग्राता। व्यापत हस्त घोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मद मस्ता, व्यापत भूम रंग कर रंगा, व्याप्त गीत ना सुन संगा, व्याप्त सेज में

व्याप्त कर्म करे हो फासा, व्याप्त ग्रस्त, व्याप्त उदासा, आचार व्यवहार व्याप्त है जात, सब किश व्याप्त बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापे माए, कहो नानक जन तूर संत पाई, ताका निकटना आवे माई, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लो मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, इस ग्रे में कोई जागत रह, सावत वस्तु अपनी लह रहाओ, सगल सहेली अपने रस माती, ग्रह अपने की खबर ना जाती, मुसनहार पंच बटवारे, सुने नगर परे ठगहारे, उनते राखे बाप ना माई, उनते राखे मीत ना पाई, दर्ब से अणप ना होए रहते, सा संग दुष्ट वस होते, कर कृपा मोहे सारिंग पाण, संतन तूर सर्व निधान, सबत पूंजी सतगुर संग, नानक जागे पार ब्रह्म कै रंग, सो जागे जिस प्रभ कृपाल, एह पूंजी सब धन माल, रहाओ दूजा गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, जा कै वस खान सुल्तान, जा कै वस है सगल जहान, जा का किया सब किश होए, तिस्ते बाहर नाही कोए, कहो बेनंती अपने सतगुर पाहे, काज तुम्हारे दे निवाहे रहाओ, सब ते ऊच जा का दरबार, सगल भगत जा का नाम आधार, सर्व व्यापत पूर्ण धनी, जा की शोभा कड़कड़ बनी, जिस सिमरत दुखडे राट है, जिस सिमरत जम किशु ना कह, जिस सिमरत होत सूके हरे, जिस सिमरत डूबत पाहन तरे, संत सभा कहो सदा जयकार, हर हर नाम जन प्राण आधार, कहो नानक मेरी सुनी अरदास, संत प्रसाद मोको नाम निवास, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, सतगुर दर्शन यज्ञ निवारी, सतगुर पेड़त हो मैं मारी, सतगुर संग नाही मंडोले, अमृत बाणी गुरमुख बोले, सब जग साचा जा सच मैं राते, शीतल सांत गुरते प्रभ जाते रहाओ, संत प्रसाद जपै हर नाओ, संत प्रसाद हर कीर्तन गाओ, संत प्रसाद सगल दुख मिटे, संत प्रसाद बंधन ते छुटे, संत कृपा ते मिटे मोह भरम, साध रेण मजन सब धर्म, साध कृपाल दयाल गोबिंद, साधा मैं अमरी जिंद, कृपा निध कृपाल त्यावो, साध संगता बैठन पावो, मोहे निर्गुण कहो प्रभ की नी दया, साध संग नानक नाम लया, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, साध संग जप्यो भगवंत, केवल नाम दियो गुरमंत, ताजा मान पै निर्वैर, आठ पैर पूजो गुर पैर, अब मत बिनसी दुष्ट बेगानी, जब ते सुनिया हर जसकानी रहाओ, सहज सूखिया नंद निदान, असहज सूखिया नंद निदान, राखण हार रख ले निदान, दुख दर्द बिनसे पै परम, आवन जान रखे कर कर्म, पेखे बोले सुने सब आप, सदा संग ताको मन जाप, संत प्रसाद भयो प्रगास, पूर रहे कै गुणतास, कहत पवित्र सुनत पुनीत, गुण गोविंद गावे नित नीत, कहो नानक जा को हो कृपाल, ते जन कीसा पूर्ण काल, गौड़ी ग्वारे री महला पंजवा, बंधन तोड़ बोला वै राम, मन में लागे साहि ध्यान, मिटे क्ले सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुर कही है, सो सुखदाता जे नाम जपावै, कर कृपा ते संग मिलावै रहाओ, जिस होए दयाल ते स्याम मिलावै, सर्वनिदान गुरु ते पावै, आप त्याग मिटै आवण जाना, साध कै संग पार ब्रह्म पिछाणा, जानी ऊपर प्रभ दयाल, जन की टेके गोपाल, एका लेवे को मन पाओ, सर्वनिदान जन कै हर नाओ,
ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ, ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ ਸਾਚੀ ਰੀਤ, ਗੁਰਪੂਰੈ ਮੇਟਿਆ ਅੰਧਿਆਰਾ, ਨਾਨਕਾ ਪ੍ਰਭ ਅਪਰਿਆ ਪਾਰਾ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜਿਸ ਮਨ ਵਸੈ ਤੇਰਾ ਜਨ ਸੋਏ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਕਛ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਹਰਿ ਜਾਪੈ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਈਐ, ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੇ ਇਹ ਮਤ ਪਾਈਐ। ਰਹਾਓ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਰ ਦਿਆਲ, ਜੀ ਜੰਤ ਸਗਲੇ ਪ੍ਰਤਪਾਲ, ਅਗਮਾ ਗੋਚਰ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਸਿਮਰਮਨਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰਮੰਤਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਰਮਨਿਧਾਨ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਪੂਜਾ ਪਾਈਐ ਮਾਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਟਹਿਲ ਨਾ ਬਿਰਥੀ ਜਾਏ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਭ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸੁਖ ਨਿਧਾਨ ਹਰ ਲੱਖ ਸੁਆਮੀ, ਜੀ ਜਨ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ। ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਜੀ ਜੁਗਤ ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਾਥ, ਸੋ ਸਿਵਰੋ ਅਨਾਥ ਕੋ ਨਾਥ, ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਆਏ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਪੈਸਾ ਬਿਨ ਸਹਿ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਉ ਕਾਹੇ ਕਾ ਮਾਨੈ, ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਕਾਹੇ ਸੁਖ ਜਾਨੈ। ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਤਾਰੇ ਬਹੁ ਤਰਨਿਆ ਗਾਸ, ਜਾਂ ਕੀ ਜੋਤ ਜੀ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਜਾਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਣਾ ਮੇਟੈ ਕੋਏ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ। ਆਠ ਪਹਿਰ ਸਿਮਰੋ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ, ਅਨਕ ਤੀਰਥ ਮਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਸਰਣੀ ਪਾਹੇ, ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਖਿਰਮੈ।

उदरै अवतरै संसार, राम नाम जप एकंकार। आप कमाओ अवरा उपदेश, राम नाम हृदय प्रवेश। जाकै माथै एहो निधान, सोई पुरख जपै भगवान। आठ पहर हर हर गुण गाओ, कहो नानक हौ तिस बल जाओ। राग गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, चौपदे दुपदे एको अंकार। सतगुर प्रसाद जो प्रायो सोई अपना, जो ता छोड़न तिस्यो मन रचना। कहो गुसाई मिली है के है, जो बिबर्जित तिस्यो ने है। रहाओ झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती। बावे मार्ग टेढ़ा चलना, सीधा छोड़ा पूठा बुनना। दुहां सिरिया का खसम प्रभ सोई, जिस मेले नानक सो मुक्ता होई। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, कल युग में मिले आए संजोग। जिचर आ गया तिचर पोगै भोग, जलै ना पाईऐ राम स्नेही। किरत संजोग सती उठ होई। रहाओ देखा देखी मन हट जल जाइय, प्रे संग ना पावै बहु जोन पवाइय। सील संजम प्रयाया गया मन, तिस नारी कहो दुख ना जमानै। कहो नानक जिन प्रयो परमेसर कर जानिया, तन सती दरगै परवानिया। गौड़ी गुआरे री महला पंजवां, हाव तन मन तो पालक सचनाए। हर गुण गावै सही सुभाए, रहाओ पियू दादे का खोल डिठा खजाना। ता मेरा मन पया निधाना, अर्तन लाल जाका कछु ना मोल। परे पंडारा खूटा तोल, खावै खर्चै रल मिल पाई। तोट ना आवै वध दो जाई, कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए। सो एत खजाना लिया रलाए, गौड़ी महला पंजवां। डर डर

गुणगाम। बुरा भला कोई ना कही जय, छोड़ मन हर चरण कही जय। कहो नानक गुरमंत्र चितार, सुख पावै साचा दरबार। गौड़ी महला पंजवा, जा का मीत सजन है समिया। तिस जन कहो कहो का की कमिया, जा की प्रीत गोबिंद स्यों लागी। दुख दर्द प्रमता का भागी रहाओ, जा कहो रस हर रस है आयो। सो अनरस नाही लपटायो, जा का कहया दरगह चले। सो किसको नजर लाया वै तले, जा का सब हिता का होए। नानक ता कहो सदा सुख होए। गौड़ी महला पंजवा, जा कै दुख सुख सम कर जापै। ताको काड़ा कहां ब्यापै, सहजर अंदर साधु माहे। आज्ञाकारी हर हर राय, रहाओ जा कै चिंत वसै मन आए। ताको चिंता कतहु नाहे, जा कै बिरस्यो मन ते भरमा। ता कै कछु नाही डर जमा, जा कै हृदय दियो गुरनामा। कहो नानक ता कै सगल निदाना। गौड़ी महला पंजवा, अगम रूप का मन मैं थाना। गुरप्रसाद किने वर लै जाना, सहज कथा के अमृत कुंटा। जिसे प्राप्त तिसलै पुंचा, रहाओ अनहत बाणी थान निराला। ताकि तुन मोहे गोपाला, तै सहजा खारे अनेक अनंता। पार ब्रह्म के संगी संता, हर ख्यानंत सोग नहीं बिया। सो घर गुर नानक कौ दिया। गौड़ी महला पंजवा, कवन रूप तेरा आरा दो। कवन जो काया ले सा दो, कवन गुण जो तुझ लै गावो। कवन बोल पार ब्रह्म रिझावो, रहाओ कवन सो पूजा तेरी करो। कवन सो बेद जित भव जलता रहो। कवन तापो जित तपिया होए, कवन सो नाम हम मैं मल खोए। गुण पूजा ज्ञान ध्यान, नानक सगल काल। जिस कर कृपा सदगुर मिले दयाल, तिस ही गुण तिन ही प्रभ जाता। जिसकी मान ले सुखदाता, रहाओ दूजा। गौड़ी महला पंजवा, आपन तन नहीं जा को गरबा। राज मिलख नहीं आपन दरबा, आपन नहीं का को लपटायो। आपन नाम सदगुर ते पायो, रहाओ सुत बनता आपन नहीं पाई। इष्ट मीत आ बाप ना माई, सोयना रूपा फुन नहीं दाम। हैवर गैवर आपन नहीं काम, कहो नानक जो गुर बख्श मिलाया। तिसका सब किश जिसका हर राया, गौड़ी महला पंजवा। गुर के चरण उपर मेरे माथे, ताते दुख मेरे सगले लाथे। सतगुर अपने कहो कुर्बानी, आत्म चीन परवर।

प्रभ के चरण मन माहे ध्यान, सगल तीर्थ मजन इशनान, हर दिन हर सिमरन मेरे भाई, कोट जन्म की मन ले जाई रहाओ, हर की कथा रिद माहे बसाई, मन बाहित सगले फल पाई, जीवन मरण जन्म परवान, जा कर दे वसै भगवान, कहो नानक सही जन पूरे जिन्ना

साधु संग करो सबको ए सदा कल्याण फिर दुख ना होए। प्रेम भगत पज गुणी निधान नानक दरगह पाईए मान। गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रम बिन से गाए गुणनीत। ऊठत सोवत हर संग पहरुआ जाकै सिमरन जमने डरुआ रहाओ। चरण कमल प्रवरदय निवास सगल दुख का होया नास। आसा मान तान तन एक साचे साह की मन में टेक। महा गरीब जन साध्या नाथ नानक प्रव राखे दे हाथ। गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मजन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मुचे रहाओ। हर के चरण हृदय में बसे जन्म जन्म के किलबख नसे। साध संग कीर्तन फल पाया जमका मार्ग दृष्ट न आया। मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार। कर किरपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना। गौड़ी महला पंजवा पौ सरण आई जिन हर जाते मन तन शीतल चरण हर राते। पै पंजन प्रभ माना बसाही डरपत डरपत जन बहुत जाही रहाओ। जा कर दे बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम। जन्म जरा मृत जसवास सो समरथ सिमर सास गिरास। मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक। गौड़ी महला पंजवा बाहर राख्यो हृदय समाल घर आए गोविंद लै नाल। हर हर नाम संतन कै संग मंत्र राता राम कै रंग रहाओ। गुर प्रसादी सागर तरिया जन्म जन्म के किलबख सब हिरिया। सोभा सुरत नाम भगवंत पूरे गुर का निर्मल मंत। चरण कमल हृदय में जाप नानक पेख जी वै प्रताप। गौड़ी महला पंजवा तन एहो थान गोविंद गुण गाए। कुशल खेम प्रभ आप बसाए रहाओ। विपत तहा जहां हर सिमरन नाही कोट आनंद जय हर गुण गाही। हर बिसरे दुख रोग कनेरे प्रभ सेवा जम लगे नानेरे। सो वड़पागी निश्चल थान जह जपिया प्रभ केवल नाम। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी नानक कौ मिलिया अंतर जामी। गौड़ी महला पंजवा जो प्राणी गोविंद त्यावै पढ़िया अनपढ़िया परम गत पावै। साधु संग सिमर गोपाल बिना मैं झूठा तन माल रहाओ। रूपवंत सो चतर सियाणा जिन जन मान्या प्रभ का पाणा। जग मैं आया सो प्रवाण घट घट अपना स्वामी जान। कहो नानक जाके पूर्ण भाग हर चरणी ता का मन लाग। गौड़ी महला पंजवा हर के दास स्यों सागत नहीं संग। ओह बिखई ओस राम को रंग रहाओ। मन असवार जैसे तुरी सिंगारी ज्यों का पुरख पचार नारी। बैल कौ नेत्रा पाए दुहावै गऊ चर सिंह पाछे पावै। गाडर ले काम तेन कर पूंजी सौदे कौतावै बिन पूंजी। नानक राम नाम जपचीत सिमर स्वामी हर सामीत। गौड़ी महला पंजवा सामत निर्मल कहियत धीर राम रसायन पीवत बीर। हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरण ते होवत छोट रहाओ।
सो तन निर्मल जित उपजय ना पाप, राम रंग निर्मल प्रताप, साध संग मिट जात बेकार, सब ते ऊच एहो उपकार, प्रेम भगत राते गोपाल, नानक जाचै सादरवाल, गौड़ी महला पंजवा, ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी, मेल लय पू

पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाओ, अहम बुद्ध मन पूर्थ दाई, साध तूर कर सुध मंजाई, अनक जला जे तो वह देही, मैल ना उतरै सुध ना देही, सतगुर भेटियो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पहु काल, मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ, गौड़ी महला पंजवा, जीवन पदवी हर के दास, जिन मिलिया तुम परगास, हर का सिमरन सुन मन कानी, सुख पावे हर द्वार पुरानी, रहाओ आठ पहर त्याई है गोपाल, नानक दर्शन देख निहाल, गौड़ी महला पंजवा, साध पई गुरु गोविंद पाई, ता पाप बिन से मेरे पाई, रहाओ राम नाम।

गई ब्याद उबरे जनमीत मन बच कर्म प्रव अपना त्याई नानक दास तेरी सरनाई। गौड़ी महला पंजवा नेत्र प्रगास किया गुरुदेव परम गए पूर्ण भई सेव रहाओ शीतला ते रखिया बिहारी पार ब्रह्म प्रभ कृपा तारी नानक नाम जपै सो जीवै साध संग हर अमृत पीवै। गौड़ी महला पंजवा तन ओ मस्तक तन तेरे नेत तन ओए भगत जिन तुम संग हेत नाम बिना कैसे सुख लईए रसना राम नाम जस कहिए रहाओ तेनी उपर जाइए कुर्बान नानक जिन जपया निर्वाण। गौड़ी महला पंजवा तू है मसलत तू है नाल तू है राखै सार समाल ऐसा राम दीन दुनी सहाई दास की पैज रखे मेरे भाई रहाओ आगे आप एहो थान वस जाके आठ पैर मन हर को जापै पत प्रवान सच निशान जा को आप करे फुरमान आपे दाता या प्रतपाल नित नित नानक राम नाम समाल। गौड़ी महला पंजवा सतगुर पूरा पया कृपाल हृदय वसिया सदा गोपाल राम रवत सदी सुख पाया मया करी पूर्ण हर राया रहाओ। कहो नानक जाके पूरे भाग हर हर नाम अस्तर सोहाग। गौड़ी महला पंजवा धोती खोल विछाए हेठ गर्द पवांगू लाहे पेट बिन कर तूती मुक्त ना पाई है

की ओटा साध संग मिट जाही, कर कृपा संत मिले मोहे, तिनते तीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो, गुर का शब्द कमाया जीत लै ओए महा बेखादी, सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया परगासा, पाया पद निर्वाणी। गौड़ी महला पंजवा, ओ अवनासी राया, निरपो संग तुम्हारे बसते, एहो डरन कहां ते आया रहाओ। एक महल तू हुए हफारो, एक महल निमानो, एक महल तू आपे आपे, एक महल गरीबानो, एक महल तू पंडित भगता, एक महल खल होता, एक महल तू सब किश ग्राहज, एक महल कशु ना लेता। काठ की पुत्री कहां करे बपरी, खिलावन हारो जाने, जैसा पिख करावे बाजीगर, ओ तैसो ही साजियाने। अनक कोठरी बहुत पात करिया, आप हुआ रखवारा, जैसे महल राखे तैसे रहना, क्या हो करे विचारा। जिन किश किया सोई जाने, जिन ए सब बिसाजी, कहो नानक परंपर स्वामी, कीमत अपने काजी। गौड़ी महला पंजवा, छोड़ छोड़ रे बिख्या के रसुआ, उर्ज रहे ओरे बावर गावर, जो किरखे हरे आयो पसुआ। रहाओ जो जाने तू अपने का जय, सो संग ना चाले तेरे तसुआ, नांगो आयो नांग सिदासी, फेर फिरियो अर काल ग्रसुआ। पेख पेख रे कसुंब की लीला, राच माच तिनहू लव हसुआ, शीजत डोर दिन सर रैनी, जी को काज ना कीनो कछुआ। करत करत इवि बिरधानो, हार्यो उगते तनखी नसुआ, ज्यो मोयो उन मोनी बाला, उसते कटे नाही रुचसुआ। जग ऐसा मोय गुरै दिखायो, तव शरण पर्यो तज गर्भसुआ। मार्ग प्रभ को संत बतायो, दृढ़ी नानक दास भगत हर जसुआ। गौड़ी महला पंजवा, तुझ

बोले, वर्ण ना साकों तुमरे रंगा गुण निदान सुख दाते, अगमै गोचर प्रभ अविनाशी पूरे गुर ते जाते, प्रम पौ काट किए नह केवल जब ते हम मारी, जन्म मरण कौ चूको सहसा साध संगत दरसारी, चरण पखार करो गुर सेवा बार जाओ लख बरिया, जेह प्रसादे पौ जल तरिया जन नानक प्रिय संग मिरिया, गौड़ी महला पंजवा तुझ बिन कमनरी जावे तो ही, तेरो रूप सगल देख मोही रहाओ, सुर्ग पयाल मृत पू मंडल सर्व समानो एक ओही, शिव शिव कर तो सगल कर जोरै सर्व माया ठाकर तेरी दोही, पतित पावन ठाकर नाम तुमरा सुखदाई निर्मल सीत लोही, ज्ञान त्यान नानक वड्याई संत तेरे स्यों गाल गलोही, गौड़ी महला पंजवा मिलो प्यारे जिया प्रभ किया तुम्हारा थिया रहाओ, अनक जन्म बजोनी भ्रमया बहुर बहुर दुख पाया, तुमरी कृपा ते मान खुदेह पाई है देहो दर्स हर राया, सोई होवा जो तिस पाणा यवरना किन्हीं कीता, तुमरै पाणे परम मोहे मोहया जागत नाही सूता, बिनो सुनो तुम प्राण पत प्यारे कृपा निदयाला, राख लेहो पिता प्रभ मेरे अनाथै कर प्रतपाला, जिसनो तुम्हें दिखायो दर्शनो साध संगत कै पाछै, कर कृपा तूर देहो संतन की सुख नानक एहो बाछै,

शरण पर्यो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन तीरा। एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा। गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते हो मन हो रै रहाओ। अज्ञानी मानख पाया, जो नाही सोलो रै। रैन अंधारी कारिया, कवन जुगत जित पोरे। प्रमतो प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे। कहो नानक कृपा पई, साध संगत निध मोरे। गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मैं रहाओ। दीन दयाला पार ब्रह्मो, जाके सिमरन सुख पए। अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खए। कृपा नित प्रमया तार, नानक हर हर नाम ले। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन शरण प्रभु सुख पाए। जा दिन बिसरे प्राण सुखदाता, सो दिन जात आ जाए रहाओ। एक रैन के पाहुन तुम आए, बोजुग आस बधाए। गृह मंदिर संपै जो दिसे, जो तरवर की शाए। तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलक सब जाए। देवनहारा बिसरो ठाकरो, खिर मैं होत पर आए। पहरे बागा कर इशनाना, चोवा चंदन लाए। निरपो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यो हस्ती ना वाए। जो होए कृपाल ता सतगुर मिले, सब सुखार के नाए। मुक्त पाया बंधन गुर खोले, जन नानक हर गुण गाए। गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए। रतन जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बलिहारिए रहाओ। जेते सास ग्रास मान लेता, तेते ही गुण गाई है। जा होए दयाल सतगुर अपना, ताए मत बुद्ध पाई है। मेरे मानो नाम लय जम बनते छूटे, सर्व सुखा सुख पाई है। सेव स्वामी सतगुर दाता, मन वंचित फल आई है। नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले। कर सेवा सदगुर अपने की, गुरते पाइये पाले। गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिनसे सर्ब अंदेसा। नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिट्यो सगल कलेसा। राग गौड़ी महला पंजवा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। तृष्णा बिरले ही की बुझी है रहाओ। कोट जोरे लाख करोरे, मन ना हो रे। परे परे ही कौलुजी है। सुंदर नारी अनक प्रकारी, पर गृह बेकारी। बुरा पला नहीं सुजी है, अनक बंधन माया। परमत परमाया, गुण निध नहीं गाया। मन बिखै ही मैं लुजी है। जा कौरे कृपा करे, जीवत सोई मरे। साध संग माया तरे, नानक सो जन दर।

एक अस्थिर मन अचरज लख्यो ना जाई रहाओ। काम क्रोध मोह बस प्राणी हर मूर्त बिसराई, झूठा तन साचा कर मान्यो ज्यो सुपना रहनाई। जो दिसै सो सगल बिनासै ज्यो बादर की शाई, जन नानक जग जान्यो मिथ्या रहयो राम सरनाई। गौड़ी महला नावा प्राणी को हर जस मन नहीं आवै, अहनिस मगन रह माया मैं कहो कैसे गुण गावै। रहाओ पूत मीत माया ममता स्यों एह विद्या बंधावै, मृग तृष्णा ज्यो झूठो एहो जग देखता से उठतावै। भुगत मुक्त का कारण स्वामी मूढ़ ताहे बिसरावै, जन नानक कोटन मैं को भजन राम को पावै। गौड़ी महला नावा साधो एहो मन गहयो ना जाई, चंचल तृष्णा संग बस्त है या ते थिर ना रहाई। रहाओ कठन क्रोध कठी के पीतर जेह सुध सब बिसराई, रतन ज्ञान सबको हिरलीना तासों कछना बसाई। जोगी जतनो करत सब हारे गुनी रहे गुन गाई, जन नानक हर पय दयाला तो सब बिद बने।

पत तपुनीत दीन बंद हर शरण काहे तुम आवो, गज को त्रास मिट्यो जे सिमरत तुम काहे बिसरावो। तज अब महान मोह माया फुन भजन राम चित लावो, नानक कहत मुक्त पंथ एहो गुरमुख होए तुम पावो। गौड़ी महला नावा को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन करो निमख ना हर गुण गावै रहाओ। दुर्लभ देहे पाए मानस की वृथा जन्म सिरावै, माया मोह महासंकट बानो तासो रुच उपजावै। अंतर बाहर सदा संग प्रभु तासो नेहो ना लावै, नानक मुक्ता ही तुम मानो जेकट राम समावै। गौड़ी महला नावा साधो राम शरण बिसरामा, वेद पुराण पढ़े को एहो गुण सिमरे हर को नामा। रहाओ लोभ मोह माया ममता फोन औ बिखियन की सेवा, हरख सोग परसै जेह नहन सो मूर्त है देवा। स्वर्ग नरक अमृत बिख ए सब त्यों कंचन अर पैसा, उस्तत निंदा ए समझा कै लोभ मोह फुन तैसा। दुख सुख ए दे जे नाहन तेह तुम जानो ज्ञानी, नानक मुगता है तुम मानो ए बिद को जो प्राणी। गौड़ी महला नावा मन रे कहां पयो तै बौरा, अहन से औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग हौरा। रहाओ जो तन तय अपनो कर मान्यो अर सुंदर गृह नारी, इन मैं कछ तेरो रे नाहन देखो सोच बिचारी। रतन जन्म अपनो तै हारियो गोविंद गत नहीं जानी, निमख ना लीन पयो चरणन स्यों बिरथा औद सिरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै, और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै। गौड़ी महला नावा नर अचेत पाप ते डर रे, दीन दयाल सगल पै भंजन शरण ताहें तुम पर रे। रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत ताको नाम ही है मोह धर रे, पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे। मानस देह बहुर नह पावै कशु उपाओ मुक्त का कर रे, नानक कहत गाए करना मैं पाव सागर कै पार उतर रे। राग गौड़ी अष्टपदियां महला पहला गौड़ी गुआरेरी, एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। निद सद निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहा बिखमार, त्रिकुटी छूटी बिमल बजार गुर की मत जी आई कार। इन बेद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया। रहाओ एक सुख मानिया सहज मिलाया, निर्मल बाणी परम चुकाया लाल पय सूहा रंग माया। नदर पई बिगठाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया, शब्द रवै मन हास्यो लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया। पाए बसे जमका पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा, चित हर स्यों राता हुक्म अपारा जात रहे पथ के आचारा। दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोय ना देखो मीत, किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए, किस उपदेश रहा लिवलाए। गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी रचो हरनाए, सिख्या दीख्या पोजन पाओ हुक्म संजोगी निज कर जाओ। गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति महे समाना, लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना। नह पंडित नह चतर सियाना नह पूलो नह परम पुलाना, कथो न कथनी हुक्म पिछाना नानक गुरमत सहि समाना। गौड़ी गुआरेरी महला पहला मन कुंचर काया उद्यान, गुर अंकस सच शब्द निशान राज द्वारे शोभ सो मान। चतराई नह

नील अनिल अग्न इकठाई, जल निवरी गुर बुझ बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई। जैसा घर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आखो कैसा, सागर डूगर निरपो वैसा। मुवे कहो कहो मारे कौन, निडरे कहो कैसा डर कवन, शब्द पछाने तिन्ने पौन। जिन कहया तिन कहन वखानिया, जिन बुझया तिन सहज पछानिया, देख विचार मेरा मन मानिया। कीर्त सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रया समाई, निज कर व्याप रया निठाई। उस्त करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचे साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, ना मन मरे ना कार्ज होए, मन वस दूता दुरमत दोए, मन माने गुरते एक होए। निर्गुण राम गुणे वस होए, आप निवार बिचारे सोए रहाओ। मन भूलो बहुचित विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार। मन भूलो माया कर जाए, काम विरुद्ध रह ना ठाए, हर पज प्राणी रसन रसाए। गैवर हैवर कंचन सुतनारी, बहु चिंता पड़ चल हारी, जुए खेलन काची सारी, संपो संची पए विकार, हरक सोक उबे दरबार। सुख सहजे जपरदै मुरार, नदर करे ता मेल मिलाए, गुण संग्रह अवगुण शब्द जलाए, गुरमुख नाम पदार्थ पाए। बिन नामे सब दुख निवास, मनमुख मूड माया चितवास, गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखियास। मन चंचल तावत फुन तावै, साचे सूचे मैल न पावै, नानक हर गुण गावै। गौड़ी गुआरेरी महला पहला, हौ मैं करत्या नै सुख होए, मन मत झूठी सच्चा सोए, सगल बगूते पावै दोए, सो कमावै तुर लिखिया होए। ऐसा जग देखिया जुवारी, सब सुख मांगै नाम बिसारी रहाओ। अदिष्ट दिसै ता कहया जाए, बिन देखे कहने बिरथा जाए, गुरमुख दिसै सह सुभाए, सेवा सुरत एक लिवलाए। सुख मांगत

हरी चंद दान करे जस लेवे, बिन गुरे अंत ना पाए अपेवे, आप भुलाए आपे मत देवे। दुर्मत हर नाकस दुराचारी, प्रभ नारायण गर्व प्रहारी, प्रहलाद उधारे कृपा तारी।

हरनाग छले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारे दैत संघार संत निस्तारे आपे सतगुर शब्द विचारे दूजे पाए दै संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जान्या करता सोई जन को दुख पचै दुख होई जन में जय गुर शब्द ना जान्या क्यों सुख पावै परम भुलान्या एक तिल भूले बहुर पछतान्या कंस केस चांडूर ना कोई राम ना चीन्या अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखै कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमुख गुरमत धर्म तीर जहर नाए नानक नाम मिलै गुण गाए गौड़ी महला पहला चोवा चंदन अंक चढ़ावो पाठ पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरा।

लाल निहाली फूल गुलाला, बिन जगदीश कहां सुख पाला, नैन सलोनी सुंदर नारी, खोड़ सिंगार करे अत प्यारी, बिन जगदीश भजे नित खुआरी।

सिद्ध कहावाओ रिद सिद्ध बुलावाओ ताज कुलै सिर छतर बनावाओ बिन जगदीश कहां सच पावाओ खान मलूक कहावाओ राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सबर सकाजा हों मैं ममता गुर शब्द विसारी गुरमत जान्या हृदय मुरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक ना जान सियावरे परपंच ब्याह त्यागे कवरे भाई मिलाए सच सच ऐ सच रे ऐसा राम पग जन होई हर गुण गाय मिले मल धोई रहा ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत यगन जगत पर जा रै सो उबरे गुर शब्द विचार है प्रेंग पतंग कुंचर्यार मीना मिर्ग मरे सह अपना कीना तृष्णा राच तत नहीं बीना काम चित कामण हितकारी क्रोध विनाशे सगल विकारी पत मत खोवे नाम विसारी पर कर चीत मन मुख डोलाए गल जेवरी तंदे लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर कौ देई काम दाम चित पर वसेई बिन पर तृप्त ना कबहू होई पढ़ पढ़ पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़े सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चात्रक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी तृपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरे ना लेखे पावे वेश करे बहु पसम लगावे नाम बिसार बहुर पछतावे तू मन हर जियो तू मन सुख नाम बिसार सह जम दुख रहाओ चोवा चंदन अगर कपूर माया मगन परम पदूर नाम बिसारे

हम मैं बंधन बंद पवावे, नानक राम भगत सुख पावे। गौड़ी महला पहला, प्रथमे ब्रह्मा काल कर आया, ब्रह्म कमल पयाल न पाया, आज्ञा नहीं लीनी परम पुलाया, जो उपजय सो काल संघारिया, हम हर राखे।

आवै सदहि निर्मल सही सुमावै हर कथा सुनै से तनवंत दिसै जुग माही तिनको सब निवै अंदर पूज कराही सहजे गुण रवै साचे मन माही पूरे सतगुर शब्द सुनाया त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया नानक होमै मार ब्रह्म मिलाया गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा वेद पढ़े वाद बखाण अंतर तामस आप ना पछाण ता प्रभ पाए गुर शब्द बखाण गुर सेवा करो फिर काल ना खाए मन मुख खादे दूजे पाए रहाओ गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे गुर कै शब्द अंतर सहजरी दे मेरा प्रभ पाया।

सहित उपजय हर लिव लाए रहाओ। त्रै गुण कालै की सिरकारा, नाम नाचे तय उपावन हारा। मर जमै फिर वारो वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई। मूल छोड़ लागे दूजै भाई, बिखका माता बिख महे समाई। माया कर मूल जंतर परमाए, हर जियो विसरिया दूजै पाए। जिस नदर करे सो परम गत पाए, अंतर साच बाहर साच वरताए। साच ना छपै जे को रखै छपाए, ज्ञानी बूजै सह सुभाए। गुरमुख सांत रहया लिव लाए, हों मैं माया शब्द जलाए। मेरा प्रभ साचा मेल मिलाए, सतगुर दाता शब्द सुनाए। तावत राखै ठाक रहाए, पूरे गुर ते सोजी पाए। आपे करता सिरिट सिर जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई। नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा। नाम अमोलक गुरमुख पावै, नामो सेवे नाम सही समावै। अमृत नाम रसना नित गावै, जिसनो कृपा करे सो हर रस पावै। आनदन हृदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सुखा रहाओ। हृदय सुख भया प्रगास, गुरमुख गावै सच गुणतास। दासन दास नित होवै दास, गृह कुटामै सदा उदास। जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावै सोई। त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिलै प्रभ सोई। मोह कुटम स्यों प्रीत ना होए, जा हृदय वस्या सच सोए। गुरमुख मन बेदया स्थिर होए, हुक्म पछाणे बूझै सच सोए। तू करता मैं अवर ना कोए, तुझ सेवी तुझ ते पत होए। कृपा करै गावां प्रभ सोए, नाम रतन सब जग मै लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसै अंदर लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरै वडभागी। हम मैं ममता दुरमत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रव्या चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए, नानक सहजे साज समाए। गौड़ी महला तीजा, मन ही मन सवारिया पैसे सुभाए। शब्द मन रंगिया लिवला।

मेरा प्रभ निर्मला सब तैरया सुमाए। गुर कृपा ते मिलै मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्रभ इन विद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन जित हर नाम न लगै प्यार, त्रिग से सुखाली कामन मोह गुवार। तिन सफल जन्म जिन नाम आधार, त्रिग त्रिग गृह कुटुंब जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर ना कोए, सतगुर ते हम गत पत पाई। हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिवलाई। गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई, हम मैं तृष्णा सब अग्न बुझई। बिन से क्रोध खिमा गै लई, हर आपे कृपा करे नाम देवै। गुरमुख रतन

मन करहला तू चंचला, चतराई छड विकराल, हर हर नाम समाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मन करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन समाल, गुर ज्ञान खड़ग हथ धारिया, जम मारियाड़ा जमकाल। अंतर निदान मन करहले, भ्रम पवै बाहर पाल, गुरपुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल। रंग रतड़े मन कर हले, हर रंग सदा समाल, हर रंग कदे न उतरै गुर सेवा शब्द समाल। हम पंखी मन कर हले, हर तरवर पुरख अकाल, वडभागी गुरमुख पाया जन नानक नाम समाल। राग गौड़ी ग्वारेरी महला पंजवा, अष्टपदिया एको अंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद। जब एहो मन मैं करत गुमाना, तब यो बावर फिरत बेगाना, जब एहो हुआ सगल कीरीना, ता तेर मैया कड़कड़ जीना। सहज सुहेला फल मस्कीनी, सतगुर अपने मोहे दान दीनी। रहाओ जब किस को एहो जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ता ते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल भारी। जब इन करने हर पिछाता, तब इसनो नाही किश्ताता। जब इन अपनो बांध्यो मोहा, आवे जाए सदा जम जोहा। जब इसते सब बिन से परमा, भेद नाही है पार ब्रह्मा। जब इन किश कर्मा ने पेदा, तब ते दुख डंड अरखेदा। जब इन एको एकी बुझिया, तब ते इसनो सबके सूझिया। जब एहो तावे माया अर्थी, न तृप्तावे न तसलाथी। जब इसते एहो यो जौला, पीछे लाग चली उठ कौला। कर कृपा जो सदगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी। करन करावन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार बबेक है। दूर ना नेरे सब कै संगा, ससा लाहनो नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा, गुरसेवा ते नामे लागा। तिसको मिलिया जिस मस्तक पागा, तिसके हृदय रव्या सोए। मन तन सीतन निचल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरा रहाओ। जास जपत पौ अपदा जाए, तावत मनुआ आवे ठाए। जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत हम पागे। जास जपत वसिया वै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत एह तृष्णा बुझै, जास जपत हर दरगह सजै। जास जपत कोट मिटै अपराध, जास जपत हर होवै साध। जास जपत मन शीतल होवै, जास जपत मल सगली खोवै। जास जपत रतन हर मिलै, भवन न छोड़ै हर संग हिलै। जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जप सो सहज निवास। जास जपते अग्न न पोहत, जास जपते काल न जोहत। जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जप सगला दुखलाता। जास जपत मुश्किल कछु ना बने, जास जप सुन अनहत तुने। जास जपते निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए। गुर सुख दृष्ट सब ऊपर करी, जिसके हृदय मंत्र दे हरी। अखंड कीर्तन तन पूजन चूरा, कहो नानक जे सतगुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारै। पंच जना स्यो संग निवारै, दस इंद्री कर रखै वास। ताके आत्मै होए परगास, ऐसी दृढ़ता ताके होए। जां को दया मया प्रभ सोए रहाओ। साजन दुष्ट जाके एक समान है, जेता बोलन तेता ज्ञान है। जेता सुनना तेता नाम, जेता पेखन तेता ध्यान।

जपना सहजे भोजन सहजे भाओ सहजे मिट्यो सगल दोराओ सहजे होवा साधु संग सहज मिलियो पार ब्रह्म संग सहजे गृह में सहजो दासी सहजे दुबदा तन की नासी जां कै सहज मन भया आनंद तां कौ भेटिया परमानंद सहजे अमृत पियो नाम सहजे कीनो जी को दान सहज कथा मैं आत्म रसिया तां कै संग अबनासी बसिया सहजे आसन आसर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रोण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयो कर्मा सहजे गुर पेट्यो सही धर्मा जा कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवा प्रथमे गर्भ वास्ते टरिया पुत्र कलात्र कुटुंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करेंगे बपरे कवन स्थान जो कबो न टरे कवन शब्द जे दुर्मत हरै रहाओ इंद्रपुरी में सर पर मरना ब्रह्मपुरी नीचल नहीं रहना शिवपुरी गा होएगा काला त्रै गुण माया बिरस बिताला गिर तर

तीर्थ देव देहोरा पोथी, माला तिलक सोच पाक होती, धोती डंडौत प्रसादन भोगा, गमन करै गो सगलो लोगा, जात वर्ण तुर कर हिंदू, पस पंखी अनक जोन जिंदू, सगल पसार दिसै पासारा, बिनस जाए गो सगल आकारा, सहज सिफत भगत तत् ज्ञाना, सदा आनंद निहचर सजथाना, तहां संगत साध गुण रसै, अनपौ नगर तहां सदवसै, तह पौ भरमा सोग न चिंता, आवण जावण मृत न होता, तै सदा आनंद अनहत आखारे, भगत वसै कीर्तन आधारे, पार ब्रह्म का अंत ना पार, कौन करै ता का विचार, कहो नानक जिस कृपा करै, निहचल थान साध संगत रै, गौड़ी महला पंजवां, जो इस मारे सोई सूरा, जो इस मारे सोई पूरा, जो इस मारे तसै वड्याई, जो इस मारे तिसका दुख जाई, ऐसा कोई जो दुबदा मार गवावै, इसे मार राजो कमावै, रहाओ जो इस मारे तिसको पौ नाहे, जो इस मारे सो नाम समाहे, जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै, जो इस मारे सो दरगै सजै, जो इस मारे सो तनवंता, जो इस मारे सो पतवंता, जो इस मारे सोई जदी, जो इस मारे तिस होवै गति, जो इस मारे तिसका आया गनी, जो इस मारे सो निहचल तनी, जो इस मारे सो वडभागा, जो इस मारे सो वंदन जागा, जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ही सुगयानी, जो इस मारे सो सही ध्यानी, इस मारी बिन थाए ना परै, कोट कर्म जाप तप करै, इस मारी बिन जन्म ना मिटै, इस मारी बिन जमते नहीं छुटै, इस मारी बिन ज्ञान ना होई, इस मारी बिन जूठन धोई, इस मारी बिन सब किश मैला, इस मारी बिन सब किश जौला, जां कौ पए किरपाल किरपा निध, तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध, गुर दुबदा जां की है मारी, कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी, गौड़ी महला पंजवां, हर स्यों जुरै ता सब को मीत, हर स्यों जुरै ता निहचल चीत, हर स्यों जुरै ना व्यापै काड़ा, हर स्यों जुरै ता होए निस्तारा, रे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाही होर, रहाओ वड़े वड़े जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार, हर का दास नीच कुल सुनै, तिसकै संखिन मैं उदरै, कोट मज्जन जा कह सुन नाम, कोट पूजा जा कह ध्यान, कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी, मन अपने मैं फिर चेत, बिनस जाए माया के हेत, हर अबनासी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कह रंग, जा कह काम उतरे सब भूख, जा कह कामना जो है दूत, जा कह काम तेरा वड़ गमर, जा कह काम होवै तू अमर, जा के चाकर कौ नहीं डान, जा के चाकर कौ नहीं बान, जा कह दफ्तर पुछे ना लेखा, ताकि चाकरी करो बसेखा, जा कै उन नाही काहू बात, एक आपा ने कै पात, जा कि दृढ़ होए सदा निहाल, मन मेरे करता की काल, ना को चतर नाही को मूड़ा, ना को हीण नाही को सूरा, जित को लाया तित ही लागा, सो सेवक नानक जिस भागा, गौड़ी महला पंजवा, बिन सिमरन जैसे सर प्यार जारी, त्यों जीवै साक्त नाम बिसारी, एक निमख जो सिमरन मैं जिया, कोट दिन सलाख सदा थिरथिया, रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास, बिन सिमरन पय कूकर काम, सागत बेसवा पूतन नाम, बिन सिमरन जैसे सींग शतारा, बोले कूर सागत मुखकारा,
ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਗਰਦ ਬਕੀ ਨਿਆਈ ਸਾਕਤ ਥਾਨ ਪ੍ਰਹਿਟ ਫਿਰਾਹੀ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਕੂਕਰ ਹਰ ਕਾਇਆ ਸਾਕਤ ਲੋਭੀ ਬੰਧ ਨਾ ਪਾਇਆ ਬਿਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ ਆਤਮ ਘਾਤੀ ਸਾਕਤ ਨੀਚ ਤਿਸ ਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜਾਤੀ ਜਿਸ ਭਇਆ ਕਿਰਪਾਲ ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲਾਇਆ ਕਉ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੋਹਿ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ ਗੁਰਮੂ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਮੇਰੀ ਪੈਜ ਰਖਾਈ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਧਿਆਇਓ ਮੋਹਿ ਨਾਉ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੋਹਿ ਮਿਲਿਆ ਥਾਉ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਸਨ ਵਖਾਣੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਆਪ ਗੁਰ ਕੀ ਦਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਪ੍ਰਤਾਪ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮਿਟਿਆ ਮੇਰਾ ਭਰਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪੇਖਿਓ ਸਭ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਕੀਨੋ ਰਾਜ ਜੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰਿਆ ਸਭ ਲੋਗ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਮੇਰੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਾਇਆ ਨਾਉ ਨਿਧ ਜਿਨ ਜਿਨ ਕੀਨੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਕੀ ਆਸਾ ਤਿਸ ਕੀ ਕਟੀਐ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸਾ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਸਿਮਰਉ ਸਾਸ ਸਾਸ ਗੁਰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੀ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਗੁਰ ਕਾ ਦਰਸਨ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੇ ਚਰਨ ਤੋਏ ਤੋਏ ਪੀਵਾਂ ਗੁਰ ਕੀ ਰੇਣ ਨਿਤ ਮੱਜਨ ਕਰੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਹਉਮੈ ਮਲਹਰਾਓ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕਉ ਚੂਲਾ ਵੋ ਪਾਖਾ ਮਹਾਂਯਗਨ ਤੇ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖਾ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ ਢੋਵੋ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਗੁਰ ਤੇ ਅਕਲ ਗਤ ਜਾਣੀ ਤਿਸ ਗੁਰ ਕੈ ਗ੍ਰਹਿ

आपे लायो अपना प्यार, सदा सदा तिस गुर का करी नमस्कार। कल कलेश पै भ्रम दुख लाथा, कहो नानक मेरा गुर समराथा।

नाम बिना जो पहरै खाए, जो कुकर जूठन में पाए। नाम बिना जेता व्यवहार, जो मृतक मिथ्या सिंगार। नाम विसार करे रस भोग, सुख सुपने नहीं तन में रोग। नाम त्याग करे अनकाज, बिरस जाए झूठे सब पाज। नाम संग

पानी अन्न ना पावे मरिए हावे, बिन पिर क्यों सुख पाई है। गुरु आगे करो बिनंती जे गुर पावे, जो मिले तवें मिलाई है। आपे मिल ले सुखदाता आया मिलिया कर आए, नानक कामन सदा सुहागण ना फिर मरे न जाए। गौड़ी महला तीजा कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सह सुभाए मन मोहन मोहे लिया जियो। दुबदा सह समाए दुबदा सह समाए, कामन वर पाए गुरमती रंग लाए। एह शरीर कुड़ एह शरीर कूड़क सत भरिया, गलत आई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहित उपजै, बिन भगति मैल न जाए। नानक कामन प्रै प्यारी विचों आप गवाए, कामन पिर पाया जियो। गुर कै पाए प्यारे, रहन सुख सुती जियो। अंतर उर तारे अंतर उर तारे, मिलिए प्यारे आन दिन दुख निवारे। अंतर महल प्रदावे कामन गुरमती विचारे, अमृत नाम पिया दिन राती दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सोहागण गुर कहे त्या पारे।

राम नाम वा पाराग म्या पारा गुरमति तन पाई है, सेवा सुरत भगते साची विचो आप गवाई है। हम मतहीन मूर्ख मुग्ध अंधे सतगुर मार्ग पाए, नानक गुरमुख शब्द सुहावे अंधन हर गुण गाए। आप कराए करे आप जियो आपे शब्द सवारे, आपे सतगुर आप शब्द जियो जो जुग भगत प्यारे, जो जुग भगत प्यारे हरे आप सवारे। आपे भक्ति लाए आपे दाना आपे बिना आपे सेव कराए, आपे गुणदाता गुण काटे हृदय नाम वसाए। नानक सतबलिहारी सच्चे विटों आपे करे कराए।

फिर दोस नाही सुख दाते हां विछड़ी बुरे आरे बिनवंत नानक दया धारो कर आवो ना प्यारे। हाँ मन अर्पी सब तन अर्पी अर्पी सब देसा हाँ सिर अर्पी तस्मीत प्यारे जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता शीस सुथान गुर पै संग प्रभु देखाया खिन माहे सगला दुख मिटया मनो चिंदया पाया दिन रैन रलियां करे कामनु मिटे सगलियां देसा बिनवंत नानक कंत मिलया लोड़ ते हम जैसा। मेरा मन आनंद भया जियो वजी वधाई कर ला लिया आया प्यारा सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकरो सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहर को उपजया दूत था गुवाया अनहत वाजे वजह घर मैं पिर संग सिज विछाई बिनवंत नानक सहज रह हर मिलिया कंत सुखदाई।

परमेश्वरा गुरदेव सखा ज्ञान भंजन गुरदेव बंद सहोदरा गुरदेव दाता हर नाम उपदेश गुरदेव मंत निरोदरा गुरदेव सांत सतबुद गुरदेव सांत सतबुद्ध मूर्त गुरदेव पारस परस्परा गुरदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुर ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरदेव करता सब पाप हरता गुरदेव पतत पवित करा गुरदेव आद जुगा जो जुग गुरदेव मंत हर जप उदरा गुरदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लग तरा गुरदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरदेव नानक हर नमस्करा। सलोक आपै किया कराया आपै करने जोग नानक एको रवरया दूसर होवा ना होग। पौड़ी ओवं साध सतगुर नमस्कारं आदमद अंत निरंकारं आपै सुनो आपै सुख आसनो आपै सुनतो आप ही जासनो आपने आप आपै उपायो आपै बाप आप ही मायो आपै सूखमो आपै असूला लखी ना जाई नानक लीला।

नाम बिहुने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तदा तूर पुनी तेरे जनुआ तंते ऊजह रुच या मनुआ तन नहीं बांछै सुरग ना आछै अत प्रे प्रीत साध रज राचै तंदे कहां ब्यापै ताहूं जो एक छाड़ियन कतै न जाहूं जा कह ही है दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक पेख यार ज्ञान ध्यान मन अठ मिलो ना कोए कहो नानक कृपा पही भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातो अनक जुगत शास्त्र कर पातो ज्ञानी सोए जा कह दृढ़ सो कहत सुन तो कह जोग ना हो ज्ञानी रह तो आज्ञा दृढ़ जा कह उसन सीत समसर सब ता कह ज्ञानी तत् गुरमुख बिचारी नानक जाको कृपा धारी सलोक आवन आए सृष्ट मैं बिन बूजे फस टोर नानक गुरमुख सो बुझे जाके पाग मथोर पौड़ी या जुग मैं एक को आया जन्मत मोयो मोनी माया गर्भ कुंट में उर तब करते सास सास स्मृत प्रभ रहते उर्ज परे जो छोड़ छडाना देवन हार मन बिसराना तारो कृपा जसै गुसाई एक उत नानक तिस बिसरो नाही सलोक आवत हुक्म बिनास हुक्म आज्ञा पिन ना कोए आवन जाना तेह मिटै नानक जेहे मन सोए पौड़ी एव जी बहुत गर्व वासे मोह मगन मीठ जोन फासे इन माया त्रैगुण बसकीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कश कहो उपाया जाते तरो बिखम ए माया कर कृपा सत्संग मिलाए नानक ताके निकट नाम आए सलोक किरत कमावन सोभ्या सोभ कीने तिन प्रभ आप पास अपन हाँ हाँ करै नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी एक आप करावन हारा आपै पापुन बिस्थारा या जुग जिजत आपै लायो सो सो पायो जो आप दिवायो उवा का अंतना जाने को जो जो करै सूफन हो एक ते सगला बिस्थारा नानक आप सवार नहारा सलोक राज रहे बनता बिनोद कुसम रंग बिख सोर नानक तेह सरनी परो बिनस जाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जय रचा तह तह बंधन पाए जेह बिद कतू न छूटी है सकते उकमाहे हाँ हाँ करते कर मरत ताको पारिया फार प्रीत नहीं जो नाम सेओ तऊ एव कर्म बेकार बादे जम की जेवरी मीठी माया रंग भ्रम के मोहे ने बुझे सो प्रभ सधू संग लेखे

होवा साधु संग जो राते रंग एक कै नानक गूड़ा रंग पौड़ी हरारा रंगो या मन अपना हर हर नाम जपो जप रसना अरे रे दरगह कह ना को आओ बैठे आदर सुब देऊ ओआ महली पावे तू बासा जन्म मरने होए बिनासा मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके हर संपै नानक करता कै सलोक लालच झूठ बेकार मोह व्यापत मूड़े अंध लाग परे दुर्गंध स्यों नानक माया बंद पौड़ी लल्ला लपट बिखैर असराते अहम बुद्ध माया मदमाते या माया।

होवनहार हो सद आया, हो अकंत न काहू पाया। कीट हस्त में पुरुष माने, प्रगट पुरख सब डाऊ सब ठाऊ जाने। जा कौ दीनो हर रस अपना, नान गुरमुख हर हरते जपना। श्लोक आत्म रस जे जानिया, हर रंग सहजे मान। नानक तन तन तन जानो, आए ते प्रवान। पौड़ी आया सफल ताहू को गनिए, जास रसनो हर हर जस भनिए। आए बसै साधु कै संगे, अंदर नाम ते आवे रंगे। आवत सोजन ना मैं राता, जा को दया मैं बेदाता। एक कै आवन फिर जो न आया, नानक हर कै दर सुमाया। सलोक यास जपत मन होए आनंद, बिनसै दूजा भाओ। दुख दर्द तृष्णा बुझै, नानक नाम समाओ। पौड़ी यैया जारो धर्म दो, तिसै त्याग सुख सहजे सो। यैया जाए परो संत सरना, जे आसरिया पव जल तरना। यैया जन्म ना आवै सो, एक नाम ले मनै प्रो। यैया जन्म न हारिया, गुरपूरे की टेक। नानक ते सुख पाया, जा कै ही अर एक। श्लोक अंतर मंतन बस रहे, ईत ऊत के मीत। गुर पूरे उपदेशया, नानक जपिए नीत। पौड़ी अंदन सिमरौ तास कहो, जो अंत सहाई होए। एह बिख्या दिन चार छे, छाड़ चलो सब कोए। का को मात पिता सोतिया, गृह बंता का संग न लिया। ऐसी संच जो बिनसत नाही, पसेती अपने कर जाही। साध संग कर कीर्तन गाया, नानक ते बौर न आया। श्लोक अत सुंदर कुलीन चतर, मुख ज्ञानी धनवंत। मृतक कही है नानका, जे प्रीत नहीं भगवंत। पौड़ी गंगा खड़शास्त्र होए ज्ञाता, पूरक कुंभक रेच करमाता। ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी, सोम पाक अपरस उद्यानी। राम नाम संग मन नहीं हेता, जो कश कीनो सो अनेता। उवा ते उत्तम गनो चंडाला, नानक जे मन बसै गोपाला। श्लोक कुंट चार दै दिस प्रमे, कर्म किरत की रेख। सुख दुख मुक्त जोन।

जा कहो साध कृपाल साधु संगतो बसे जो अपन होहे दयाल। टोहे टाहे बहु पवनो बिन्ना मैं सुख नाहे टले जाम के दूत तेहे जो साधु संग समाहे बार बार जाओ संत सदके नानक पाप बिना से कदके। सलोक ठाक ना होती तिन उदार जे होवो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन। पौड़ी ठठा मनुआ ठाहै नाही जो सगल त्यागे कै लपटाही ठहक ठहक माया संग मुवे उवा कै कुशल न कथू हुए। ठांड परी संतै संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकर अपने जो जन पाया नानक वाका मन शीतलाया। श्लोक डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। पौड़ी डड्डा डेरायो नहीं जय डेरा तै जान ओवा डेरा का संजम गुर कै शब्द पिछान। ओवा डेरा या डेरा कौ सरम कर कालै जा का तसु नहीं संचालै ओवा डेरा की सोमत जान है जा को दृष्ट पूर्ण भगवान है। डेरा निचर सच साध संग पाया नारक तेजन नह डोलाया। श्लोक ताहन लागे धर्म राए कने न काल्यो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध। पौड़ी टड्डा टूंडत कै फिराओ टूंडन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसै बन बन का फिराए। तेरी टाहो साध संग अहं बुद्ध बिकराल सुख पावो सजे बसो दर्शन देखने हाल। तेरी जामे जा मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रहे हाहो आवे जाए। टहत टहत अब टह परे साजना सरनाए दुखे फाहे काटिया नानक लिए समाए। श्लोक जह साधु गोबिंद भजन कीर्तन नानक नीत ना होना तूने छुट निकट न जाइयो दूत। पौड़ी अनाना रण तेसी जिया आत्म जीतै कोए हम मैं अनस्यो लर मरे सो सो बादू होए। मणि मिटाई जीवत मरे गुरपूरे उपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेसु रतन वेस। अना को जाने अपनो एक टेक आधार रहन दिन सो सिमरत रह सो प्रभुरख्या पार। रेण सगल या मन करे एउ कर्म कमाए हुक्मै बुझे सदा सुख नानक लिखिया पाए। श्लोक तन मन तन अर्पौ तिसै प्रभु मिलावै मोहे नानक परम पौ काटियै चूकै जमकी जो हो। पौड़ी तत्ता तास्यो प्रीत कर गुणित गोविंद राय फल पावै मन बांझते तब तुहारी जाए। त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाओ गत पावै मत होए प्रगास मैली पावै ठाओ। ताहु संग न तह चलै ग्रेजो बने राज संत संग सिमरत रहो एह तुहारै काज। ताता कछु न होई है जो ताप निवारै आप प्रतपालै नानक हमै आपै माई बाप। श्लोक थाके बोबित कालते तृप्त ना तृष्णा लाथ संच संच सागत मुवे नानक माया ना साथ। पौड़ी थथा थिर को नहीं काय पसारो पाव अनक बंच बल छल करो माया एक यो पाव। थैली संचो श्रम करो थाक परो गावार मन कै कामना आवई अंते ओ सरवार। थित पावो गोबिंद भजाओ संतै की सिख ले हो प्रीत करो सद एक स्यो ऐसा चा स्नेहो। कारण करन करावनो सब दे कै हाथ जे जित लावो तित लगे नानक जंथया नाथ। श्लोक दस एक निहारिया सबके देवन हार सा सा सिमरत रह।

दिन दे तोट न आवई अगणत परे पंडार, दैन हार सद जीवन हारा मन मूर क्यों ताहे बिसारा, दोष नहीं काहू कहु मीता माया मोह बंद प्रभ गीता, दर्द निवारे जाके आपे नानक ते दे गुरमुख त्रापे, सलोक धर जिया रे इक टेक तू लाहे बिडानी आस, नानक नाम ते आई है कारज आवै रास पौड़ी, तद्दा तावत तौ मिटै संत संग होए बास, तुरते कृपा करो आप तौ होए मनै प्रगास, तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बिसाहा, तीरज जस सोभा तेह बनया हर हर नाम श्रवण जे सुनया, गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते जन मिली वडाई, सलोक नानक नाम नाम जप जपया यंत्र बाहर रंग, गुरपूरै उपदेसिया नरक नाहे साध संग पौड़ी, नन्ना नरक भरै ते नाही जाकै मंतन नाम बसाही, नाम निदान गुरमुख जो जपते बिख माया मैं ना होए खपते, नन्ना कारना होता ता कहो नाम मंत्र गुर दीनो जा कहो, निद निदान हर अमृत पूरे तैं बाजे नानक अनहतूरे, सलोक पत राखी गुर पार ब्रह्म तज प्रपंच मोह बेकार, नानक सो वारा दिए अंतना पारावार पौड़ी, पप्पा परमित पार ना पाया पतत पावन अगम हर राया, होत पुनीत कोट अपराधु अमृत नाम जपै मिल साधु, पर पच त्रोह मोह मिट नाई जा कहो राखो आप गुसाई, पात साहो छत्र सिर सोऊ नानक दूसरे अवर ना को, सलोक फाहे काटे मिटे गवन फतेह पई मन जीत, नानक गुरते थित पाई फिरन मिटे नित नीत पौड़ी, फफा फिरत फिर तू आया दुर्लभ देहे कल जुग मैं पाया, फिर या ओसर चरै न हाथा नाम जपो तो कटिया फासा, फिर आमन जान ना होई एक एक जपो जप सोई, करो किरपा प्रभ करने हारे मिल रहो नानक बेचारे, सलोक बिनो सुनो तुम पार ब्रह्म दीन दयाल गोपाल, सुख संपै बहु भोग रस नानक।

जाय उबरन तारै सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तरन समराथा राख ले हो निर्गुण नरनाथा मन बच करामो जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगट।

पौड़ी हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनाश हे पूर्ण हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक हे गोविंद हे गुण निदान जा कै सदा विवेक हे अपरंपर हर हरे है पी हो वनहार हे संतें कै सदा संग निधारा आधार हे ठाकर हौं दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजे नाम दान राखो ही है परोए सलोक गुरुदेव माता गुरुदेव पिता गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन गुरुदेव बंधप सहोदरा गुरुदेव दाता हर नाम उपदेश गुरुदेव मंत निरुदरा गुरुदेव सांत सत बुद्ध मूर्त गुरुदेव पारस परस्परा गुरुदेव तीर्थ अमृत सरोवर गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा गुरुदेव करता सब पाप हरता गुरुदेव पतत पवित्र करा गुरुदेव आद जुगाद जुग जुग गुरुदेव मंत हर जप उदरा गुरुदेव संगत प्रमेल कर कृपा हम मूड पापी जित लगतरा गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर गुरुदेव नानक हर नमस्कारा एहो श्लोक आद अंत पढ़ना गौड़ी सुखमनी महला पंजवां श्लोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो सिमरो जास विषम पर एकै नाम जपत अगणत अनेकै वेद पुराण सिमरत सुधाखर कीने राम नाम एक आखर किनका एक जिस जी बसावै ताकि महिमा गनी ना आवै कांखी एक दर्श तुहारो नानक उन संग मोहे उधारो सुखमनी सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ प्रभ कै सिमरन गर्भ ना बसै प्रभ कै सिमरन दुख जम नसै प्रभ कै सिमरन काल पर हरै प्रभ कै सिमरन दुश्मन तरै प्रभ सिमरत कछ बिघन ना लागै प्रभ कै सिमरन अंदर जागै प्रभ कै सिमरन भौ ना व्यापै प्रभ कै सिमरन दुख ना संतापै प्रभ का सिमरन साध कै संग सर्ब निदान नानक हर रंग प्रभ कै सिमरन रिद्ध सिद्ध नौ निद प्रभ कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभ कै सिमरन जपता पूजा प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा प्रभ कै सिमरन तीर्थ इशनानी प्रभ कै सिमरन दरगै मानी प्रभ कै सिमरन होए सो भला प्रभ कै सिमरन सफल फला
से सिमरै जने आप सिमराए, नानक ताँ कै लागौ पाए। प्रभ का सिमरन सा

प्रभु को सिमरै से जन परवान, प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान, प्रभु को सिमरै से बेमोहताजे, प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे, प्रभु को सिमरै से सुखवासी, प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी, सिमरन ते लागे जिने आप दयाला, नानक जन की मंगै रवाला, प्रभु को सिमरै से पर उपकारी, प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी, प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे, प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावे, प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता, प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता, प्रभु को सिमरै तिन आनंद कनेरे, प्रभु को सिमरै बसै हर नेरे, संत कृपा ते अंधन जाग, नानक सिमरन पूरे भाग, प्रभु कै सिमरन कार्य पूरे, प्रभु कै सिमरन कौ ना चूरे, प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी, प्रभु कै सिमरन सहि समानी, प्रभु कै सिमरन निःचल आसन, प्रभु कै सिमरन कमल बिगासन, प्रभु कै सिमरन अनह चुन कुआर, सुख प्रभु सिमरन का अंत ना पार, सिमरै से जन जिन कौ प्रभु मया, नानक तिन जन सरनी पया, हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, हर सिमरन लग बेद उपाए, हर सिमरन पय सिद्ध जति दाते, हर सिमरन नीच चहो कुंट जाते, हर सिमरन तारी सब धरना, सिमर सिमर हर कारण करना, हर सिमरन कियो सगले आकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा, कर कृपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। श्लोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ या नाथ, शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ, अष्टपदी जह मात पिता सुतमीत ना पाई, मन ऊहा नाम तेरे संग सहाई, जय महापयान दूत जमदल, तै केवल नाम संग तेरे चले, जय मुश्किल होवे अत भारी, हर को नाम खिन माहे उधारी, अनक पुनः चरण करत नहीं तरै, हर को नाम कोट पाप पर हरै, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे, सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया, हर का नाम जपत होए सुखिया, लाख करोरी बंद ना परै, हर का नाम जपत निस्तरै, अनक माया रंग तिख ना बुझावै, हर का नाम जपत अगावै, जे मार्ग हो जाता केला, तै हर नाम संग होत सुहेला, ऐसा नाम मन सदा धियाइऐ, नानक गुरमुख परम गत पाइऐ, छूटत नहीं कोट लख बाही, नाम जपतै पार पराही, अनक बिगन जाय आए संघारै, हर का नाम तत्काल उधारै, अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम, हौं मैला मल कबो न धोवै, हर का नाम कोट पाप होवै, ऐसा नाम जपो मन रंग, नानक पाइय साध कै संग, जे मार्ग के गने जाहे ना कोसा, हर का नाम उहां संग तोसा, जे पैंडे मह अंध गुबारा, हर का नाम संग उजियारा, जहां पंथ तेरा

हर का नाम दास की ओट, हर कै नाम उदरे जन कोट, हर जस करत संत दिन रात, हर हर औखद साधक मात, हर जन कै हर नाम निदान, पार ब्रह्म जन कीनो दान, मन तन रंग रत।

जहां त्रिखा मन तुझिया करख तै नानक हर हर अमृत बरख भक्त जना की बरतन नाम संत जना कै मन विश्राम।

हर का नाम जनकार उपरंग, हर नाम जपत कौ परै न भंग। हर का नाम जन की वडियाई, हर कै नाम जन शोभा पाई। हर का नाम जन कौ भोग जोग, हर नाम जपत कछ नाहे बेयोग। जन राता हर नाम की सेवा, नानक पूजै हर हर देवा। हर हर जन कै मालख जीना, हर तन जन कौ आ प्रभ दीना। हर हर जन कै ओट सतानी, हर प्रताप जन अवर न जानी। ओत पोत जन हर रस राते, सुन समाद नाम रस माते। आठ पहर जन हर हर जपै, हर का भगत प्रगट नहीं छपै। हर की भगत मुक्त बहु करे, नानक जन संग के ते तरे। पार जाते ओ हर को नाम, काम तेन हर हर गुण गाम। सब ते उत्तम हर की कथा, नाम सुनत दर्द दुख लथा। नाम की महिमा संत दिवसै, संत प्रताप दुर्त सब नसै। संत का संग वड भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है। नाम तोल कछ अवर ना होए, नानक गुरमुख नाम पावै जन कोए। सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति, पेखे सर्ब टंडोल। पूजस नाही हर हरे, नानक नाम अमोल। अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान, खड़ शास्त्र सिमृत वखियान। जोग अभ्यास कर्म धर्म किरिया, सगल त्याग बन मद्दे फिरिया। अनक प्रकार किए बहु जतना, पुन दान होमे बहु रतना। शरीर कटाए होमे कर राती, वर्त नेम करे बहु पाती। नहीं तोल राम नाम विचार, नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार। नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै, महा उदास्त पितर थीवै। अगन माहे होमत प्राण, कनक असव है वर पूम दान। न्यौली कर्म करै बोवासन, जैन मार्ग संयम अत साधन। निमख निमख कर शरीर कटावै, तौपी होमे मैल न जावै। हर के नाम समसर कछ नाहे, नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे। मन कामना तीर्थ देह छुटै, गर्भ गुमान न मन ते हुटै। सोच करै दिन सियर रात, मन की मैल न तन ते जात। इस देही को बहु साधना करै, मन ते कबहू ना बिखिया उटरै। जल धोवै बहु दे अनीत, शुद्ध कहां होए काची पीत। मन हर के नाम की महिमा ऊच, नानक नाम उदरे पतत बहु मूच। बहुत सियाणप जम का पौ व्यापै, अनक जतन कर तृष्णा त्रापै। भेख अनेक अगन नहीं बुझै, कोटो पाव दरगै नहीं सजै। छूट सनाही।

हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहे सुभाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम रे सदगावे। जे को अपनी शोभा लोरे साध संग ए मैं शोरे, जे को जन्म मरण ते डरे साजना की सरनी परे। जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक ताके बल बल जासा। सगल पुरख में पुरख प्रधान सा संग जाका मिटे अभमान, आपस कौ जो जाने नीचा सो गनिय सब ते ऊंचा। जाका मन होए सगल की रीना हर हर नाम तन कट कट चीना। मन अपने ते बुरा मिटाना पेखे सगल सृष्टि साजना। सुख दुख जन सम दृष्टेता नानक पाप पुन नहीं लेपा।

जो ठाकर ससदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जा की टहल पावे दरगे मान तिसे बिसारे मुगदिया जान। सदा सदा एहो पूल नहार नानक राखन हारिया पार रतन त्याग कौडी संग्रचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना सो अस्त्र कर मानै जो होवन सो दूर परानै छोड़ जाए तिसका श्रम करै संग सहाई तिस पर हरै चंदन ले प्यो तारै धोए गर्द प्रीत पसम संग होए। अंध कु मैं पतत बिकराल नानक काढ़ लेहो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करै दिन रात बाहर पेख अंतर मल माया शब्स नाहे कश करै।

बिनस जाए हमेव, नानक प्रभ शरणागति कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद शक्ति अमृत खाहे, तिस ठाकर कौ रख मन माहे। जेह प्रसाद सुगंधत तन लावै, तिस कौ सिमरत परम गत पावै। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै त्याय सदा मन अंदर। जे प्रसाद गृह संग सुख बसना, आठ पहर सिमरौ तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याइयै त्यावन जोग। जे प्रसाद पाठ पटंबर हंडावै, तिसै त्याग कत अवर लोबावै। जेह प्रसाद सुख से सुईजै, मन आठ पहर ताका जस गावीजै। जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै। जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याए केवल पाल ब्रह्म।

रखै। जे प्रसाद करै पुन बहु दान, मन आठ पहर कर तिसका ध्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को साह साह चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमर उसदा अनूप। जे प्रसाद तेरी निकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत्र है, गुर प्रसाद नानक जस कह है। जे प्रसाद सुने करन नाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना, जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चले, जे प्रसाद संपूर्ण फल है। जे प्रसाद परमगत पावे, जे प्रसाद सुख सहज समावे। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो, गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार, तिस प्रभ को मूल न मनो बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप, रे मन मूड तू ता कहो जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे, तिसै जान मन सदा हजूरे। जे प्रसाद तू पावै साच, रे मन मेरे तू ता स्यों राच। जे प्रसाद सब की गत होए, नानक जब जपै जब सोए। आप जपाए जपै सो नाओ, आप गावाए सो हर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास, प्रभु दया ते कमल विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसै मन सोए, प्रभ दया ते मति उत्तम होए। सर्व निधान प्रभ तेरी माया, आपो कछु ना किन्हु लया। जित जित लावो तित लगे हर नाथ, नानक इनके कछु ना हाथ। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुखी उज्जल होत, साध संग मर सगली खोत। साध कै संग मिटै अवमान, साध कै संग प्रगटै सुगयान। साध कै संग बुझै प्रभ नेरा, साध संग सब होतन बेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रमाहे सुमानी। साध कै संग गोचर मिलै, साध कै संग सदा प्रफुलै। साध कै संग आवै बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा। साध संग होए सब की रेन, साध कै संग मनोहर बैन। साध कै संग न कतहु तावै, साध संग अस्थित मन पावै। साध कै संग माया ते पिन, साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न। साध संग दुश्मन सब मीत, साधु कै संग महापुनीत। साध संग के सो नहीं बैर, साध कै संग न बींगा पैर। साध कै संग नाही को मंदा, साध संग जाने परमानंदा। साध कै संग नाही हवताप, साध कै संग तजै सब आप। आपे जाने साध बढ़ाई, नानक साध प्रभु बने आई। साध कै संग न कबहू तावै, साध कै संग सदा सुख पावै। साध संग बसता गोचर लहै, साधु कै संग अजर सहै। साध कै संग बसै थान उचै, साधु कै संग मैल पहुचै। साध कै संग दृढ़ सब धर्म, साध कै संग केवल पार ब्रह्म। साध कै संग पाए नाम निदान, नानक साधु कै कुर्बान। साध कै संग सब कुल उधारै, साध संग साजन मीत कुटम निस्तारै। साधु कै संग सो तन पावै, जिस तन ते सब को वरसावै। साध संग धर्म राय करे सेवा, साध कै संग शोभा सुर देवा। साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन। साध कै संग सर्वथान गम, नानक साध कै संग सफल जनम। साध कै संग नहीं कशकाल, दर्शन भेट होत निहाल। साध कै संग कलुख तहरै, साध कै संग नरक प्रहरै।
साध कै संग इहां उहां सुहेला, सा संग बिशरत हर मेला। जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग ना बिरथा जावै। पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै। साध कै संग सुनो हर नाओ, सा संग हर के गुण गाओ। साध कै संग ना मनते बिसरै, सा संग सर पर निस्तरै। साध कै संग लगै प्र मीठा, साधु कै संग कड़कड़ डीठा। सा संग पै आज्ञाकारी, साध संग गत पई हमारी। साध कै संग मिटे सब रोग, नानक साध पेटे संजोग। साध की महिमा

दूर, साध की शोभा का नाही अंत, साध की शोभा सदा बेअंत, साध की शोभा ऊंचते ऊंची, साध की शोभा मूचते मूची, साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक। मन साचा मुख साचा सोए, अवर ना पेख एक बिन कोए, नानक एह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। अष्टपदी। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप, जैसे जल में कमला लेप, ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख, जैसे सुर सर्ब कौ सोख, ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान, जैसे राज रंग कौ लागे तुल पवान, ब्रह्म ज्ञानी कै तीर्ज एक, ज्यो बसदा को खोदे को चंदन लेप, ब्रह्म ज्ञानी का है गुनाओ, नानक ज्यो पाव का सही स्वभाव, ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला, जैसे मैल न लागे जलाओ, ब्रह्म ज्ञानी कै मन होए प्रगास, जैसे तर ऊपर आकाश, ब्रह्म ज्ञानी कै मित्र सत्र समान, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही अभिमान, ब्रह्म ज्ञानी ऊंच ते ऊंचा, मन अपने है सब दे नीचा, ब्रह्म ज्ञानी से जन पए, नानक जिन प्रव्याप करे, ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना, आत्म रस ब्रह्म ज्ञानी चीना, ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर माया, ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया, ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी, ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी, ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता, ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल युगता, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान, ब्रह्म ज्ञानी एक ही उपरयास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी समाहा, ब्रह्म ज्ञानी परोपकारो महा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही तंदा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सगल संसार, ब्रह्म ज्ञानी कै एक रंग, ब्रह्म ज्ञानी कै बसै प्रभ संग, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम आधार, ब्रह्म ज्ञानी कै नाम परवार, ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत, ब्रह्म ज्ञानी अहबुद त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै कर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता, ब्रह्म ज्ञानी एक संगहेता, ब्रह्म ज्ञानी कै होया चिंत, ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत, ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप, ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप, ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है, ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है, ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है, ब्रह्म ज्ञानी कै सगल मन माहे, ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद, ब्रह्म ज्ञानी का उसका आदेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथिया ना जाए अदाखर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर, ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी का अंत ना पार, नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्ट का करता, ब्रह्म ज्ञानी सजीव है नहीं मरता, ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता, ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरख विधाता, ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ, ब्रह्म ज्ञानी का सगले आकार, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

चार अष्टपदी कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन प्रमय उदासी कई कोट वेद के स्रोते कई कोट तपीसर होते कई कोट आत्म ध्यान तार है कई कोट कब का विचार है कई कोट नवतन नाम ते आवे नानक करते का अंत ना पावे कई कोट पय अभिमानी कई कोट अंध अज्ञानी कई कोट कृपन कठोर कई कोट अपेग आत्म निकोर कई कोट पर दर्ब कौ हिरै कई कोट पर दुख ना करै कई कोट माया श्रम माहे कई कोट पर देश पर माहे जित जित लावो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना कई कोट सिद्ध जति जोगी कई कोट राजे रस भोगी कई कोट पंखी सर्प्यो पाए कई कोट पाथर बिरख निपजाए कई कोट पवन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल कई कोट ससियर सूर नखियतर कई कोट देवदानव इंद्र सिर शतर सगल समग्री अपने सूत तारै नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै कई कोट राजस तामस सातक कई कोट वेद पुराण सिमरत रसास्त्र कई कोट कीर्तन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत कई कोट किए चिर जीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थीवे कई कोट जख किन्नर प्रसाच कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच सब ते नेरै सब हूं ते दूर नानक आप अलिप्त रहया परपूर कई कोट पाताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीवै मरै कई कोट बौजोनी फिरै कई कोट बैठत ही खाहे कई कोट घाल थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जह जह पाणा तह तह राखे नानक सब किछ प्रभ कै हाथे कई कोट भय बैरागी राम नाम संगतिन लवलागी कई कोट प्रभ को खोजनते आत्म मैं पार ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्रप्यास तिनको मिल्यो प्रभ बनास कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनका होए आप सो प्रसन्न नानक तेजन सदा तन तन कई कोट खानी अर खंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड कई कोट होए अवतार कई जूत कीनो विस्तार कई बार पसरियो पासार सदा सदा एक एक अंकार कई कोट कीने बहुपात प्रभ ते होए प्रमहे समात ताका अंतना जाने कोए आपे आप नानक प्रभ सोए कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास कई कोट तत् के बेते सदा निहारा एको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवै अमर पय सद सद ही जीवै कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सुख सहि समावै अपने जन को सास सास समारे नानक होए परमेश्वर के प्यारे सलोक करण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहारण जल थल महियल सोए अष्टपदी करण करावन करना जोग ज्योत पावे सोई होग खिन मैं थापो थप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा हुक्मे तार अतर रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै हुक्मे ऊंच नीच व्यवहार।

प्रभ भावै बिन सास ते राखै, प्रभ भावै ता हर गुण पाखै, प्रभ भावै ता पत तो धारै, आप करै आपन विचारै, दुहां सिरिया का आप स्वामी, खेलै बिकसै अंतर जामी, जो भावै सो कार करावै, नानक दृष्टि अवर न आवै, कहो मानख ते क्या होए आवै, ज्योतिष पावै सोई करावै, इसके हाथ होए ता सब किछ ले, ज्योतिष पावै सोई करे, अनजानत बिखिया मैं रचै, जे जानत अपने आप बचै, परमे पूला दे दस्तावै, निमख माहे चार कुंट फिर आवै, कर कृपा जिस अपनी भगत दे, नानक ते जन्ना मिले, खिन मैं नीच कीट कौ राज, पार ब्रह्म गरीब निवाज, जाका दृष्ट कशु न आवै, तिस तत्काल देह दिस प्रगटावै, जाको अपनी करै बख्शीस, ताका लेखा ना गनै जगदीस, जियो पिंड सब तिसकी रास, घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास, अपनी बणत आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नाही।

कबहू ऊंच नीच में बसै, कबहू सोग हर खरखा, कबहू सोग हर खरंग हसै, कबहू निंद चिंद व्यवहार, कबहू ऊब आकाश पयाल, कबहू बेता ब्रह्म विचार, नानक्या मिलावनहार, कबहू नृत करै बहुपात, कबहू सोए रह दिन रात, कबहू महाक्रोध विकराल, कबहू सर्व की होत रवाल, कबहू होए बह बड़ राजा, कबहो पेखारी नीच का साजा, कबहू अपकीर्त मह आवे, कबहू पला पला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिवही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह, कबहू होए पंडित करे बखियान, कबहू मौन तारी लावे ध्यान, कबहू तट तीर्थ स्नान, कबहू से साधु मो ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग होए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप जो स्वांगी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिवे नचावे, ज्योतिष पावे सोई होए, नानक दूजा अवर ना कोए, कबहू साध संग ते हो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर होए ज्ञान प्रगास, उस स्थान का नहीं विनाश, मानता नाम रते करंग, सदा बसै पार ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मस्कीनिया, आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी, जिसका अंतर राजा मान, सो नरक पाती होवत समान, जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत, आपस कौ कर्मवंत कहावे, जन्म मरे बह जोन परमावे, तन भूम का जो करे गुमान, सो मूर्ख अंधा अज्ञान, कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे, नानक यहां मुक्त आगे सुख पावे, धनवंता होए कर गर्भावे, तृण समान का संग न जावे, बहु लश्कर मानख ऊपर करे आस, पल पीतर ताका होए विनाश, सब ते आप जाने बलवंत, खिन में होए जाए पसमंत, किसे ना बदै आप अहंकारी, धर्म राय तुस करे खुवारी, गुर प्रसाद जाका मिटे अभमान, सो जन नानक दरगे प्रमान, कोट कर्म करे हो तारे, श्रम पावे सगले बिरथारे, अनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुरग फिर फिरे अवतार, अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवै, हर दरगह कौ कैसे गवै, आपस कौ जो पला कहावै, तसै पलाई निकट न आवै, सर्व की रेण जा का मन होए, कहो नानक ताकि निर्मल सोए, जब लग जाने मुझते कश होए, तब इस कौ सुख नाही कोए, जब है जाने मैं किश करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता, जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत, जब लग मोह मगन संग माए, तब लग धर्म राय देश जाए, प्रभ कृपा ते बंधन टूटे, गुर प्रसाद नानक हो छूटे, सहस खटे लख को उठतावे, तृप्त न आवे माया पाछे पावे, अनक भोग बिखिया के करे, नह तृप्तावे खप खप मरे, बिना संतोख नहीं को राजे, सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे, नाम रंग सर्व सुख होए, वडभागी किसे प्राप्त होए, करण करावने आपे आप, सदा सदा नानक हर जाप, करण करावन करने हार, इसके हाथ कहां विचार, जैसी दृष्ट करे तैसा होए, आपे आप आप प्रभ सोए,
ਜੋ ਕਿਛ ਕੀਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ, ਸਭ ਤੇ ਦੂਰ ਸਭੂ ਕੈ ਸੰਗ। ਬੂਝੈ ਦੇਖੈ ਕਰੈ ਬਿਵੇਕ, ਆਪੇ ਏਕ ਆਪੇ ਅਨੇਕ। ਮਰੈ ਨਾ ਬਿਨਸੈ ਆਵੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਿਆ ਸਮਾਏ। ਆਪ ਉਪਦੇਸੈ ਸਮਝੈ ਆਪ, ਆਪੇ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕੈ ਸਾਥ। ਆਪ ਕੀਨੋ ਆਪਣ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਭ ਕਛ ਉਸਕਾ ਉਹ ਕਰਨੈ ਹਾਰ। ਉਸਤੇ ਪਿੰਨ ਕਹੋ।

संत के दोखी को उद्यान परमाई है, संत का दोखी उजड़ पाई है, संत का दोखी अंतर ते थोथा, जो सास बिना मृत की लोथा। संत के दोखी की जड़ किश ना है, अपन बीजा पे ही खाहे, संत के दोखी को अवर ना रखन हार, नानक संत पावे ता ले उबार। संत का दोखी ओ बिल लाए, ज्यो जल बिहून मछली तड़फड़ाए, संत का दोखी भूखा नहीं राजे, ज्यो पाप की ईंधन नहीं त्रापे, संत का दोखी छुटे अकेला, ज्यो बुआड़ तिल खे

धर्म के जन पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जन दास नाम ते आवै से ते गुण में जा को परमाए जन्म मरे फिर आवै जाए ऊच नीच उतिसके स्थान जैसा जनावै तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना पे करे करंग नाना बिदकीनो विस्तार प्रभु नासी एकंकार नाना चलत करे खिन माहे पूर रहो पूर्ण सब ठाए नाना बिदकर बंत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब कर तिसके सब तिसके ठाओ जब जब जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मंड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आगास पाताल नाम के तारे सगले आकार नाम के तारे पुरिया सब पवन नाम के संग उदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जन गत पाए रूप सत जाका सत अस्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख समाए समाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करणी निर्मल निर्मली जिसै बजाए तिसै सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नानक गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत तेजन जा कर दे प्रवेश सत निरत बूझै जे कोए नाम जपत ता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जानै अपनी मित गत जिसकी सृष्ट सो करना हार अवरना बुझ करत विचार करते की मितना जाने किया नानक ज्योत पावै सो वर्तिया बिस्मन बिस्म पय बिस्माद जिन बुझया तिस आया स्वाद प्रभ के रंग राजन रहे गुर के बचन पदार्थ लहे ओए दाते दुख कट नहार जा कै संग तरै संसार जन का सेवक सोवड भागी जन कै संग एक लिव लागी गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै गुर प्रसाद नानक फल पावै सलोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानक होसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत परसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत यावनहार आप सत सत सबधारी आपे गुण आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभक्ता सुरत सत सत जस सुनता बुझनहार कौ सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जनमान्या करन करावन तिन मूल पछान्या जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया भय ते निरपव होए बसाना जिस ते उपजया तिस माहे सुमाना बस्त माहे ले बस्त गडाई ताको पेना कहना जाई बूझे बूझन हर बबेक नारायण मिले नानक एक ठाकर का सेवक आज्ञाकारी ठाकर का सेवक सदा पुजारी ठाकर के सेवक है मन प्रतीत ठाकर के सेवक की निर्मल रीत ठाकर का सेवक जान है संग प्रभ का सेवक नाम कह रंग सेवक प्रभ पालनहारा सेवक की राख है निरंकारा सो सेवक जिस दया प्रभ धार है नानक सो सेवक सास सास सुमार है अपने जन का पर्दा ढके अपने सेवक की सर पर रखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक की आप्रतपा अपने सेवक की आपत रखे ताकि गतमित कोई न लख
प्रभु के सेवक को न पहुँचे, प्रभु के सेवक ऊँचे ऊँचे, जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल रख है, भस्म करे लश्कर कोट लख है, जिसका सासना काटते आप, ताको राख्त देकर हाथ, मानस जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जात, मारे ना राखे अवर ना कोए, सर्ब जिया का राखा सोए, काहे सोच कर रे प्राणी, जप नानक प्रभ लख विडानी, बारंबार बार प्रभ जपिए, पी अमृत मन तंत्र पिए, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिसके शवर ना ही दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग, नाम रस जो जंत्र बताने, मन तन नाम नाम समाने, उठत बैठत सोबत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जस जिह बादन रात, प्रभ अपने जन की नींदात, करै भगत आत्म कै चाए, प्रभ अपने स्यो रह सो आए, जो होवा होवत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पछानै, तिसकी महिमा कौन बखानौ, तिसका गुण कै एक न जानौ, आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक सेई जन पूरे, मन मेरे तिनकी ओट ले, मन तन अपना तिन जन दे, जिन जन अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता, तिसकी शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर्स सब पाप मिटावै, अवर से आणप सगली छाड़, तिस जन की तू सेवा लाग, आवन जान ना होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका ना, तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। अष्टपदी सतगुर से की करै प्रतपाल, सेव कौ गुर सदा दयाल, सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचनी हर नाम उचरै, सतगुर से के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै, सतगुर से कौ नाम धन दे, गुर का सिख वट पागी है, सतगुर से का हलत पलत सवार है, नानक सतगुर से कौ जी नाल सुमार है, गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह, आपस कौ कर कछ ना जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै, मन बेचै सतगुर कै पास, तिस सेवक के कार्य रास, सेवा करत होए नेकामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले, बीस बिसवे गुर का मन मानै, सो सेवक परमेश्वर की गत जानै, सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ, अनक बार गुर को बल जाओ, सर्ब निधान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जानो जन मैं पार ब्रह्म, एक आप नहीं कछ परम, सहस सियाण पो लया ना जाई है, नानक ऐसा गुर वडभागी पाई है, सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसव चरण गत निर्मल रीत, भेट संग राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दरगह गवे, सुनकर बचन करने आगाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अखियो जा का मंत्र, अमृत दृष्ट पेख हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पावै तिस लय मिलाए, जेबा एक उस्तत अनेक, सतपुरख पूर्ण बबेक, काहू बोलना पहुंचत प्राणी, अगवा गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकि कीमत कने ना पाई, अनक भगत बंधन नित करै, चरण कमल हृदय सिमरै, सतबलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, एहो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुरख का नाही कदे विनाश, जाके मन प्रगटे गुणतास, आठ पहर हर का नाम ले, सच उपदेश सेव कौ दे, मोह माया कै संग ना लेप, मन में राखै हर हर एक, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमो दुख तै ते नासे, तपत माए ठंड वरताई, अंध भया दुख नाटे पाई,
जन्म मरण के मिटे अंदेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पौ चूका निरपा होए बसे, सगल ब्याद मन देख नसे, जिसका साथ इन कृपा तारी, साध संग जप नाम मुरारी, थित पाई चूके भ्रम गमन, सुन नानक हर हर जस रवन, निर्गुण आप सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरत प्रव्या बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोए, सर्व निरंतर एको सोए, ओत पोत रव्या रूप रंग, पय प्रगास साध कै संग, रच रचना अपनी कल तारी, अनक बार नानक बलिहारी। सलोक साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली शार, हर हर नाम कमावना, नानक हो तनसार। अष्टपदी संत जना मिल करो विचार, एक सिमर नाम आधार, अवर्यो पाव सब मीत बिसारो, चरण कमल रिद मैं उर तारो, करण कारण सो प्रभ समरथ, दृढ़ कर गहो नाम हरवथ, एहो तन संचो हो वो भगवंत, संत जना का निर्मल मंत, एक आस राखो मन माहे, सर्व रोग नानक मिट जाए, जिस तन को चार कुंट उठतावै, सो तन हर सेवा ते पावै, जिस सुख को नित बाछै मीत, सो सुख साधु संग परीत, जिस सोभा को करह पली करनी, सा सोभा पज हर की सरनी, अन क्यों पावी रोग ना जाए, रोग मिटै हर अवखद लाए, सर्व निदान मैं हर नाम निदान, जप नानक दरगह परवान, मन पर बोधो हर कह नाए, दै दिस्तावत आवै ठाए, ता को बिघन ना लागे कोए, जा कर दे बसे हर सोए, कल ताती ठंडा हर नाओ, सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन से पूर्ण होए आस, भगत पाया तुम परगास, तित कर जाए बसे अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी, तत विचार कह जन साचा, जन्म मरे सो काचो काचा, आवा गमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग शरण गुरुदेव, एवं रतन जन्म का होए उदार, हर हर सिमर प्राण आधार, अन क्यों पाप ना छूटन हारे, सिमरत शास्त्र वेद विचारे, हर की भगत करो मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग ना चालस तेरे तना, तू क्या लपटावे मूर्ख मना, सोत मीत कुटंब अर बंता, इनते कहो तुम कमन सनाथा, राज रंग माया विस्थार, इनते कहो कमन छुटकार, अस हस्ती रथ असवारी, चूठा डंफ चूठ पासारी, जिन दिए तिस बुझे ना बिगाना, नाम बिसार नानक पछताना, गुर की मत तू लेह आने, भगत बिना बो डूबे स्याने, हर की भगत करो मन मी।

सुनत कहत रहत गत पावो सार भूत सत हर को नाओ सहे सुबाए नानक गुण गाओ गुण गावत तेरी उत्तर समैल बिन सजाए हम मैं बिख फैल होहे अचंत बस है सुख नाल सास ग्रह सार नाम समाल छाड़ सियानप सगली मना सा संग पावे सजतना हर पूंजी संच करो व्यवहार इहा सुख दर गै जयकार सर्व निरंतर एको देख कहो नानक जाके मस्तक लेख एको जाप एको सालाहे एक समर एको मन आहे एक सके गुण गाओ अनंत मन तन जाप एक भगवंत एको एक एक हरियाप पूर्ण पूर रहो प्रव्याप अनक विस्थार एक ते पे एक आराध प्राश्त गए मन तन अंतर एक प्रभराता गुर प्रसाद नानक एक जाता सलोक फिरत फिरत प्रभ आया परया तौ सरनाए नानक की प्रभ बेनती अपनी भगती लाए अष्टपदी जाचक जांजा चै प्रभदान कर कृपा देव हर नाम साजना की मंग तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें ते आवो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सुब्र परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरन आन सब त्याग अंतर प्रगास अनदिन लिवलाग वड भागी जपया प्रभ सोए नानक नावरते सुख होए सेव की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन कौ प्रभ होयो दयाल सेव की नो सदा निहाल बंधन काट मुक्त जन पया जन्म मरण दुख भ्रम गया इच पुन्नी सरदा सा पूरी रव रहया सा संग हजूरी जिसका साथ न लिया मिलाए नानक भक्ति नाम समाए सो क्यों बिसरे जे काल ना पाने सो क्यों बिसरे जे किया जाने सो क्यों बिसरे जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरे जे जीवन जिया सो क्यों बिसरे जे अग्न में राखै गुर प्रसाद को बिरला लाखै सो क्यों बिसरे जे बिखते काढ़ जन्म जन्म का टूटा गांड गुरपूरे तत है बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहो काम आन त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पावो आप जपो अवरह नाम जपावो भगत पाए तरिय संसार बिन भक्ति तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़ जात पाए विश्राम सगल दुख का होवत नास नानक नाम

दयालो भगत वचन सदा कृपालो अनाथ नाथ गोबिंद गोपालो सर्व कटा करत प्रतपालो आदि पुरख कारण करतार भगत जना के प्राण आधार जो जो जपै सो होए पुनीत भगत पाए लावे मनहीत हम निर्गुणी आर नीच अजान नानक तुमरी शरण पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निमख हर के गुण गाए अनक राज भोग वडियाई हर के नाम की कथा मन पाई बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपती हर हर नीत पली सुकरणी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ देहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास सलोक सर गुण निर्गुण निरंकार सुन समाधि आप आपन किया नानका आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हो कछ ना दृटेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संक मात जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत तब हरक शोक सह व्यापत जब अपने आप आपार ब्रह्म तब मोह कहाँ किस होवत परम आपन खेल आप वर्ती जा नान करने हार ना दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मोत कौ किस कौ गनी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुर कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहे सुभाए तब शिव सकत कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी जोत तर तब कवन निडर कवन कत डर आपन चलत आप करन हार नानक ठाकर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तै जन्म मरण कौ कहा विनाशन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब आप गत्या गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचरिया गादे तब कौन छुटे कौन बंधन बादे अपने आप ही चर जा नानक अपने रूप आप ही उपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्वाण तह कौन कौमान कौन अभमान जय स्वरूप केवल जगदीश तै शरशिदर लगत कौ कीस जय ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समाव तै किसे भूख कवन त्रिपतावै करण करावण करण हार नानक करते का नाह सुमार जब अपनी शोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत भाई जय सर्व कला आपे परवीन तै वेद तेब कहा कूचीन जब अपने आप उतार तब सगन अब सगन कहा विचार है जह अपन ऊचे अपने आप नेरा तै कौन ठाकर कौन कहिये चेरा बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद नानक अपनी का जानो आप जय अशाल अशेदा भेद समाया ऊहा किसै व्याप्त माया आपस कौ आपया देस तेह गुण का नाही प्रवेश जय कै एक एक भगवंता तै कौन अचिंत किस

जह आप रचियो पर पंच आकार त्यो गुण मैं कीनो विस्तार पाप उनत पई कहावत कौ नरक कौ सुर्ग बंछावत आल जाल माया जंजाल हो मैं मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार की हो बखियान आपन खेल आप कर देख खेल संकोच तो नानक एक जहां अब

पूर्ण पूर रहे दयालो, सब उपर होवत कृपालो। अपने कर्तव्य जानै आप, अंतर जामी रहो ब्याप। प्रतपालै जियन बहु पांत, जो जो रचियो सोत सहत आत। जिस पावै तिस लय मिलाए, भगत करै हर के गुण गाए। मन अंतर विश्वास कर मानिया, करन हार नानक एक जानिया। जन लागा हर एक नाए, तिसकी आसना बिरथी जाए। सेवक को सेवा बने आई, हुक्म बूझ परम पद पाई।

नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाओ। अष्टपदी पूरे गुर का सुन उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सा सा सिमर गोविंद मन अंतर की उतरै चिंद आसा नित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अग्न सागर तरो हर तन के पर लिहो भंडार नान गुरपुरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवारो उधारो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमुद दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का है आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत हो तो उधार आप तरह लोक निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्दा नाहद वाजय सुन सुन अंध करे प्रभ गाजय प्रगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरै तिन कै साथे सरन योग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मिलाए मिट गए बैर पए सबरेन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न पए गुरुदेव पूर्ण होई सेव की सेव आल जंजाल बिकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ तारी नानक निभि खेप हमारी प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावताने एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसै सो होत निदान सर्व इच्छा ताकी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बौर न होवै अमन जान हर तन खाड़ चले जन सोए नानक जिसै प्राप्त होए खेम सात रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ ऊतम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतर तत् का बेता समदर्शी एक दृष्टेता एह फल तिस जन कै मुख पने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोय सब जुग में ताकी गत होए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र वेद बखाणी सगल मतांत केवल हर नाम गोबिंद भगत कै मन विश्राम कोट अपराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्तक करम प्रभ पाए साध सरण नानक ते आए जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत तिस जन आवै हर प्रभ चीत जन्म मरण तां का दुख निवारै दुलभ देह तत्काल उदारै निर्मल शोभा अमृत तां की बानी एक नाम मन माहे समानी दुख रोग बिन से पै परम साध नाम निर्मल तां के कर्म सब ते ऊच तां की शोभा बनी नानक एह गुण नाम सुख मनी। थित्ती गौड़ी महला पंजवा सलोक एक ओवंकार सतगुर प्रसाद जल थल महियल पूरिया स्वामी सृजनहार नानक अनक पांत होए पसरिया नानक एक अंकार पौड़ी एक में एक अंकार प्रभ करो वंदना त्याए गुण गोबिंद गोपाल प्रभ शरण परो हर राय ताँ की आस कल्याण सुख जाते सब कछ होए चार कुंट दह दिस प्रमयो तिस बिन अवर ना कोए
वेद पुराण सिमरत सुने बहुविद करो विचार पत उदाहरण पै हरण सुख सागर निरंकार दाता भुगता देनहार तिस बिन रहन ना जाए दाता भुगता देनहार तिस बिन अवर ना जाए जो चाहे सोई मिले नानक हर गुण गाए गोविंद जस गाइए हर नीत मिल भजिए साध संग मेरे।

प्रम कटिया नानक साध संग दुतिया पाओ मिटाए पौड़ी। दुतिया दुर्मत दूर कर गुर सेवा करनीत, राम रतन मन तन बसै तज काम करो लो मीत। मरण मिटै जीवन मिलै बिनसा सगल कलेस, आप तजो गोविंद भजो पाओ भगत परवेश। लाभ मिलै तोटा हिरै हर दरगै पतवंत, राम नाम धन संचवै सातशाह भगवंत। उठत बैठत हर भजो साधु संग परीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसे चीत। सलोक तीन ब्यापै जगत को तुरिया पावै कोए, नानक संत निर्मल पए जिनमन वसिया सोए। पौड़ी तृतीया त्रैगुण बिखै फल कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग ब्रह्म तो कणो सदा संगार मीच। हरख सोग सहसा संसार हाहो करत विहाए, जिन किए तिसे न जाननी चितवै अन क्यों पाए। आद ब्याद उपाद रस कबो न टूटै ताप, पार ब्रह्म पूर्ण धनी न बूझै प्रताप। मोह परम बुढ़त कणो महा नरक मैं वास, कर कृपा प्रभ राख लिहो नानक तेरी आस। सलोक चतर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजिया अवमान, चार पदार्थ हिट सिद्ध भज नानक हर नाम। पौड़ी चतुर्थ चारे वेद सुन सो दियो तत विचार, सर्व खेम कल्याण निद राम नाम जप सार। नरक निवारै दुख हरै टूटै अनक कलेस, मीच हुटै जमते छुटै हर कीर्तन परवेश। पाओ बिनसै अमृत रसै रंग रते निरंकार, दुख दर्द अपवित्रता नासै नाम आधार। सुर नर मुन जन खोजते सुख सागर गोपाल, मन निर्मल मुख उजला होए नानक साधरवाल। सलोक पंच विकार मन में बसे राचे माया संग, साध संग होए निर्मला नानक प्रभ कै रंग। पौड़ी पंचम पंच प्रधानते जे जान्यो परपंच, कुसम बास बहु रंग कणो सब मिथ्या बलबंच। नह जापै न बूझियै न कछ करत विचार, स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार। जन्म मरण बहु जोन भ्रमण कीने कर्म अनेक, रचन हार न सिमरियो माना विचार विवेक। पाओ भगत भगवान संग माया लिप्त नारंच, नानक बिरले पाईऐ जो नारचै परपंच। सलोक खट शास्त्र उच्चो कह अंत ना पारा वार, भगत सोहै गुण गावते नानक प्रभ कै द्वार। पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथे अनेक, उत्तम उच्च पार ब्रह्म गुण अंत ना जाने सेख। नारद मुनजन सुख ब्यास जस गावत गोबिंद, रसगी दे हर स्यों भी दे भगत रचे भगवंत। मोह मान परम बिनसियो पाई सरन दयाल, चरण कमल मंतन बसे दर्शन देख निहाल। लाभ मिलै तोटा हिरै सा संग लिव लाए, खाट खजाना गुण निधारे नानक नाम ते आए। सलोक संत मंडल हर जस कथै बोलै सत सुभाए, नानक मन संतोखी है एक सिस्यों लिव लाए। पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार, संत संगत मैं पाई है अंत ना पारावार। आप तजो गोबिंद भजो शरण भरो हर राय, दुख हरै पव जल तरै मन चंदिया फल पाए। आठ पहर मन हर जपै सफल जन्म परवान, अंतर बाहर सदा संग करने हार पछाण।
सो साजन सो सखा मीत जो हर की मत दे नानक तिस बले हारण है हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाइए तजिए अवर जंजाल जम कंकर जो है न सकई नानक प्रभु दयाल पौड़ी अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल प्रगास सदा आनंद निर्मल रीत निरुद्र मंत सगल धर्म पवित्र इशनान समय उच्च बसेह ज्ञान हर हर भजन पूरे गुरसंग जप तरिय नानक नाम हर रंग सलोक नारायण ने सिमरियो मोहयो स्वाद बिकार नानक नाम बिसारे है नरक सुरग अवतार पौड़ी नौमी नवे शदर अपवीत हर नाम न जपै करत विपरीत पारत्रे रमै बकै साध निंद करन सुनही हर जस बिंद हिरै पर दर्ब उदर कहताई अग्न न निवरै तृष्णा न बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमै अभागे सलोक दह जस खोजित मैं फिरयो जत देखौं तत सोए मन बस आवै नानका जे पूरन कृपा होए पौड़ी दसवीं

मन में चितवै पूर्ण भगवंत, हस्त चरण संत टहल कमाई है, नानक हो संजम प्रभ कृपा पाई है। सलोक एको एक बखानी है, बिरला जाने स्वाद, गुण गोबिंद न जानिए, नानक सब विस्माद। पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम, इंद्री बस कर सुनो हर नाम, मन संतोख सर्ब जी दया, इन विद वर्त संपूर्ण भया, तावत मन राखे कठाए, मन तन शुद्ध जपत हर नाए, समय पूर्ण रहे पार ब्रह्म, नानक हर कीर्तन कर अटल एहो धर्म। सलोक दुर्मत हरि सेवा करी, पेटे साध कृपाल, नानक प्रभ सो मिल रहे बिनसे सगल जंजाल। पौड़ी द्वादशी दान नाम इशनान, हर की भगत करो तजमान, हर अमृत पान करो साध संग, मंत्र पतासै कीर्तन प्रभरंग, कोमल बाणी सबको संतोख है, पंच पू आत्मा हर नाम रस पुख है, गुर पूरे ते एह निहचा उपाई है, नानक राम रमत फिर जो न आई है। सलोक तीन गुणा मैं व्यापिया, पूर्ण होत ना काम, पतो धारण मन बसै, नानक छूटै नाम। पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार, आवत जात नरक अवतार, हर हर भजन ना मन मैं आयो, सुख सागर प्रभ निमख ना गायो, हर सो का दे कर बाध्यो, दीर्घ रोग माया आसा देओ, दिने बेकार करत श्रम पायो, नैनी नींद सुपन बरड़ायो, हर बिसरत होवत एह हाल, शरण नानक प्रभ पुरख दयाल। सलोक चार कुंट चौदह पवन, सगल व्याप्त राम, नानक ऊना देखिए पूर्णता के काम। पौड़ी चौदह चार कुंट प्रव्याप, सगल भवन पूर्ण प्रताप, दसे दिशा रव्या प्रभ एक, तरन आकाश समय प्रपेख, जल थल बन पर्वत पाताल, परमेश्वर तै बसें दयाल, सूखम अस्थूल सगल भगवान, नानक गुरमुख ब्रह्म पिशान। सलोक आत्म जीता गुरमति, गुण गाए गोबिंद, संत प्रसादी भै मिटे, नानक बिरसी चिंद। पौड़ी अमावसे आत्म सुखी पहे, संतोख दिया गुरुदेव, मन तन शीतल सांत सहज, लागा प्रभ की सेव, टूटे बंधन बहु बेकार, सफल पूर्णता के काम, दुर्मत मिटी हम मैं छुटी, सिमरत हर को नाम, शरण गही पार ब्रह्म की, मिटिया आवा गवन, आप तरिया कोटा बस्यों, गुण गोबिंद प्रभ रवन, हर की टहल कमावनी, जपिया प्रभ का नाम, गुरपूरे ते पाया नानक सुख विश्राम। सलोक पूरन कबो न डोलता, पूरा किया प्रभ आप, दिन दिन चढ़े सवाया, नानक होत ना घाट। पौड़ी पूर्ण मां पूर्ण प्रभ एक, करण कारण समरथ, जी जंत दयाल पुरख, सब ऊपर जाका हथ, गुण निदान गोबिंद गुर, किया जाका होए, अंतर जामी प्रभ सुजान, अलख निरंजन सोए, पार ब्रह्म परमेश्वरो, सब जन नहार, संत सहाई शरण योग, आठ पहर नमस्कार, अकथ कथा न बुझिए, सिमरो हर के चरण, पतो धरण नाथ नाथ, नानक प्रभ की शरण। सलोक दुख बिन से सहसा गयो, शरण गही हर राए, मन चिंदे फल पाया, नानक हर गुण गाए। पौड़ी कोई गावे को सुने, कोई करे विचार, को उपदेश है को दृढ़ है, तिसका होए उधार,
किलबे काटै हुए निर्मला, जन्म जन्म मल जाए। हलत पलत मुखी उजला, नै पो है तिसमाए। सो सुरता सो बैसनो, सो ज्ञानी तनवंत, सो सूरा कुलवंत सोए, जिन भजया भगवंत। खत्री ब्राह्मण सूद वैस, उदरै सिमर चंडाल, जिन जान्यो प्रभ अपना, नानक तसैरवाल। गौड़ी की वार महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला चौथा, सतगुर पुरख दयाल है, जिसनो समत सब कोए। एक दृष्ट कर देखदा, मन भावनी ते सिद्ध होए। सतगुर विच अमृत है, हर उत्तम हर पद सोए। नानक कृपा ते हर त्याई है, गुरमुख पावै कोए। महला चौथा, हम मैं माया सब बिख है, नित जग तोटा संसार। लहा हर तन खटिया, गुरमुख शब्द विचार। हम मैं मैल बिख उतरै, हर अमृत हर ओर धार। सब कार्य तिनके सिद्ध है, जिन गुरमुख कृपा तार। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मेले सृजनहार। पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है, सच सच्चा गोसाई। तुदनो सब त्याई दी, सब लगे तेरी पाई। तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है, जिन कीती तिस पार लंघाई। गुरमुखा नु फल पाईंदा, सच नाम समाई। वड्डे मेरे साहिबा, वड्डी तेरी वड्याई। सलोक महला चौथा, विण नावै होर सलाहना, सब बोलन फिका साध। मनमुख अहंकार सलाह दे, हौ मैं ममतावाद। जिन सलाहन से मरै, खप जावै सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम ते आई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिनी तू एक मन सच ते आया, तिनका सब दुख गवाया। तेरा श्री को नाही, जिसनो लवै लाए सुनाया। तू तो जेवड दाता, तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया। सच्चे मेरे साहेबा, सच्चे सच नाया। सलोक महला चौथा, मन अंतर हम मैं रोग है, प्रम पूले मन मुख दुर्जना। नानक रोग गवाए, मेरे सतगुर साधु सजना। महला चौथा, मंतन रत्ता रंग स्यों, गुरमुख हर गुण तास। जन नानक हर शरणांगति, हर मेले गुर साबास। पौड़ी तू करता पुरखिया गम है, किस नाल तू वड़ी है। तुद जेवड़ होए सो आखी है, तो जेहा तू है पड़ी है। तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख पर गड़ी है। तू सच्चा सब सदा खसम है, सबदू तू चढ़ी है। तू करै सो सच्चे होए सी, तां कायत कड़ी। सलोक महला चौथा, मैं मन तन प्रेम प्रम का, अठे पहर लगान। जन नानक कृपा धार प्रभ, सतगुर सुख वसन। महला चौथा, जिन अंदर प्रीत प्रम की, ज्यो बोलन तवै सुहान। नानक हरे आपे जानदा, जिन लाई प्रीत प्रन। पौड़ी तू करता आपा पुल है, पुलन विच नाही। तू करै सो सच्चे भला है, गुरशब्द बुझाही। तू करण कारण समर्थ है, दूजा को नाही। तू साहिब अगम दयाल है, सब तुद ते आही। सब जी तेरे तू सब सदा, तू सब छडाही। सलोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राय, अखी तार लगन। गुर तुठै सज्जन मिलिया, जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दा

देखो भाई यो अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, जिने अपने जोर सब आन निवाए, अपने भगतां की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मोह काले कराए, सतगुर की वड़ियाई ने चढ़े सवाई, हर कीर्त भगत नित आप कराए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता सतगुर करी वसाए, सतगुर की बाणी सत सत कर जानो गुर सिखो, हर करता आप मोह कढ़ाए, गुर सिखा के मोह जले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन नानक हर का दास है, हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी तू सच्चा साहब आप है ससा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभु वणजारे थारे, सच सेवा सच वणंजल है गुण कथे निरारे, सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है गुर शब्द लखारे, श्लोक महला चौथा, जिस अंदर तात पराई होवे तिसदा कदे ना होवी भला, उस दे आखे है कोई ना लगे नित उजाड़ी पुकारे खला, जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उसदा सब गया, नित चुगली करे अणहोंदी पराई मुकट ना सके उसदा काला भया, कर्म धरती शरीर कलयुग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए, गल्लां उपर तपावस ना होई विस खादी तत्काल मर जाए, भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए, जन नानक सब सो जी पाई हर दर कियां बातां आख सुनाए, महला चौथा, हुंदे प्रतख गुरु जो विछड़े तनको दर ढोई नाही, कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाई, जो सतगुर फिटके से सब जगत फिटके नित पंबल पूसे खाही, जिन गुर गोप्या अपना से लेंदे टहा फिराही, तिन की भुख कदे ना उतरै नित भुखा भुख कूकाही, ओना दा आख्या को ना सुनै नित हौले हौल मराही, सतगुर की वड्याई वेख ना सकनी ओना अगे पिछे था ओ नाही, जो सतगुर मारे तिन जाए मिलै रहंदी खोंदी सब पत गवाही, ओए अगे कुश्ती गुर के फिटके जे ओस मिलै तस कुष्ट उठाही, हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही, तुर करता आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही, जन नानक ना मारा तू तिस अपड़ को ना सकाही, नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही, महला चौथा, जे होंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई, तिसको जगत निव्या सब पैरी पया, जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मांड नमस्कार करे, जिसके मस्तक हथ धरिया गुर पूरे सो पूरा होई, गुर की वड्याई नित चढ़ै सवाई अपड़ को ना सकोई, जन नानक हर करता आ बैठ के आपे पैज रखे प्रभ सोई, पौड़ी काया कोटिया पार है अंदर हट नाले, गुरमुख सौदा जो करे हर वस्त माले, नाम निदान हर वणजी है हीरे परवाले, विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बिताले, से उजड़ परम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले, श्लोक महला चौथा, जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मैं होया, नरक कोर दुखू है ओथे पकड़ ओह टोया, कूक पुकार को ना सुने ओह औखा होए होए रोया, ओन हलत पलत सब गवाया लहा मूल सब खोया, ओह तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया, हर वेखे सुने नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया, जैसा जैसा बीजे सो लुणै
जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रभ अपनी तिस सतगुर के चरण धोया गुर सतगुर पिछे तर गया जो लोहा काट संगोया जन नानक नाम ते आए तू जप हर हर नाम सुख होया। महला चौथा वडभागिया सोहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया हर राय अंतर जोत प्रगासिया नानक नाम समाए। पौड़ी एहो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गोहज रतन विच लुक रहे कोई गुरमुख सेव कड़े खोत सब आत्म राम पछाणिया ता एक रविया इको ओत पोत एक देखिया एक मन्या इको सुनिया श्रवण सरोत जन नानक नाम सलाहे तू सच सच्चे सेवा तेरी होत। श्लोक महला चौथा सब रस दिन के हृदय है जिन हर वसिया मन माहे हर दरगह ते मुखी उजले तिन कौ सब देखन जाए जिन निरपो नाम ते आया तिन कौ पौ कोई नाहे हर उत्तम किनी सरेविया जिन कौ तुर लिखिया आहे ते हर दरगह पहनाई है जिन हर वुठा मन माहे ओए आप तरे सब कुटुंब सियो दिन तिन पिछे सब जगत छड़ाहे जन नानक कौ हर मेल जन तिन वेख वेख हम जीवाहे। महला चौथा सा धरती पई हरियावली जिथे मेरा सतगुर बैठा आए से जंत पए हरियावले जिन्नी मेरा सतगुर देखिया जाए। तन तन पिता तन तन कुल तन तन सोजननी जिन गुरु जनिया माए तन तन गुरु जिन ना मारा दिया आप तरिया जिनी डिठा तिना ले छाए हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक तो वह पाए। पौड़ी सच सच्चा सतगुर अगम है जिस अंदर हरि उर तारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बिख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुमवारिया गुरमुख जिता मन मुख हारिया। श्लोक महला चौथा कर कृपा सतगुर मेलेओन मुख गुरमुख नाम ते आए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुर पूरा करी वसाए सी जिन अंदर नाम निधान है तिनका पौ सब गवाए सी जिन रखण कौ हर आप होए होर केती चख चख जाए सी जन नानक नाम ते आए तू हर हालत पलत छोड़ाए सी। महला चौथा गुरसिखा कै मन भावदी गुर सतगुर की वडियाई हर रख पै सतगुरु की नित चढ़ै सवाई गुर सतगुर कै मन पार ब्रह्म है पार ब्रह्म छड़ाई गुर सतगुर तान दी बाण हार तिन सब आण निवाई जिन्नी डिठा मेरा सतगुर पाओ कर तिनके सब पाप गवाई हर दरगह ते मुखी उजले बहु सोभा पाई जन नानक मंगै धूड़ तिन जो गुर के सिख मेरे पाई। पौड़ी हाँ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वडियाई सा लाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया से तृप्त रहे आ गाई एहो हरा से ही जान दे जो गूंगे मिठाई खाई गुरपूरा हर प्रभ सेविया मन वजीवा दाई। श्लोक महला चौथा जिन्ना अंदर उम्र थल से जन सूलिया हर जाने से बिरो हाओ तिन विटो साध कुम कोलिया हर मेलो सज्जन पुरख मेरा सिर तिन विटो तल रोलिया जो सिख गुर कार कमावे हाओ गुलम तिना का गोलिया हर रंग चलू लै जोर ते तिन पिनी हर रंग चोलिया कर कृपा नानक मेल गुर पै सिर वेचिया मोलिया। महला चौथा औगणी भरिया शरीर है
क्यों संतों निर्मल होए। गुरमुख गुण में हाजी है मलहम में कंडे तो होए। सच वणजै रंग स्यों सच सौदा होए। तोटा मूल ना आवै लाहा हर पावै सोए। नानक तिन सच वणजिया जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए। पौड़ी सलाही सच सलाहना स सच्चा पुरख निराले। सच सेवी सच मन वसै स सच्चा हर रखवाले। सच सच्चा जिनी आराध्या से जाय रले सच नाले। स सच्चा जिनी ना सेव्या से मनमुख मूड बेताले। ओह आल पताल मोह बोल दे जो पीता है मद मतवाले। श्लोक महला तीजा गौड़ी राग सुलखणी जे खसमै चित करे। भाणे चले सतगुरु कै ऐसा सिंगार करे। सच्चा शब्द पतार है।

मंत्र बताय हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानिया दिन राती जिन बनाइया सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याईया सलाही सच सलाह सच सच कीमत कने ना पाईया जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आईया सच गुरमुख जिनी सलाहया तिना भुखा सब गवाईया श्लोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोज इंदिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया।

बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास, ओथे सच वर्तदा कूड़ियारा चित उदास। ओए वल छल कर चत कढ दे, फिर जाए बह कूड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ न गड़ई, मन वेखो को निरजास। कूड़ियार कूड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवां। रहंदे खोंदे निंदक मारिया नूं।

नाही। तन बहुतै डिठै तपै तरम हारिया, पाई एहो तपा ना होवी बगला है, बैसाध जना विचारिया। सत पुरख की तपा निंदा करै, संसार की उस्तति विच होवै, एत दोखै तपा दईए मारिया। महापुरखां की निंदा का वेख, जे तपे नो फल लगा, सब गया तपे का कालिया। बाहर बह पंचा विच तपा सदाए, अंदर बह तपा पाप कमाए। हर अंदर ला

हो पणी है। जन नानक का खसम वड्डा है, सबना दा धनी है। श्लोक महला चौथा। मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार, झगड़ा कर दिया अंदन गुदरै शब्द ना करे विचार। शुद्ध मत करते सब हिर लई बोलन सब विकार, दिते कते ना संतोखी है अंतर दिसना बहु अज्ञान अंधार। नानक मनमुखा नालों टुटी भली जिन माया मोह।

जो नहारा संत नानक पादर पदर हो पौड़ी सोई से वो जियड़े दाता बख्शेंद किलविक साब्य नास हो न सिमरत गोविंद। हर मार्ग साधु दसिया जपिए गुरमंत माया स्वाद सब फिकिया हर मन पावंद। त्याय नानक परमेसर जिन दित्ती जिंद सलोक महला पंजवा। वत लगी सच्चे नाम की जो बीजे सो खाए तिसै प्राप्त नानका जिसनो लिखिया आए। महला पंजवा मंगना ता सच एक जिस तुस देवै आप जित खादै मन तृप्तिऐ नानक साहिब दात पौड़ी। लाह जग मैं से खटै जिन हर तन रास दुतिया पाओ ना जाननी सच्चे दी आस। निहचल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास। कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास सलोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फुरमाया मीहो उठा सह सुभाए अन्न धन बहुत उपजया पृथ्वी रजी तिब त्यागाए। सदा सदा गुण उचरै दुख दालद गया बिलाए पूर्व लिखिया पाया मिलिया तसै रजाए। परमेसर जी वालिया नानक तसै ते आए। महला पंजवा जीवन पद निर्वाण इको सिमरी है दूजी नाही जाए किनबे तीरी है। डिठा सब संसार सुख नाना बिनो तन तन होसी शार जाने कोए जन। रंग रूप रस बाद के करे प्राणिया जिस भुलाए आप तिस कल नहीं जानिया। रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरण द्वार जे तुद पावही पौड़ी। जमण मरण ना तिन कहो जो हर लड़ लागे जीवत से प्रवान होए हर कीर्तन जागे। साध संग जिन पाया सही वड भागे नाए विसरै त्रिग जीवना टूटे कच धागे। नानक धूड़ पुनीत साध लख कोट पैरागे सलोक महला पंजवा। तरन सुवन्नी खड़ रतन जड़ावी हर प्रेम पुरख मन वुठा सबे काज सुहेलड़े थिए गुरु नानक सतगुर तुठा। महला पंजवा फिरदी फिरदी दह दिसा जल पर्वत बन राए जिथे डिठा मृत को इल बैठी आए। पौड़ी जे सर्व सुखा फल लोड़ी है सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म एक नाम ते आवो। होए सगल की रेणका हर संग समावो।

कहो कबीर एक ऐ काहे, साध संगत बैकुंठ आहे। गौड़ी कबीर जी उपजै निपजै निपज समाई, नैना देखत एहो जग जाई। लाज ना मरो कहो कर मेरा, अंत की बार नहीं कष्ट तेरा रहाओ। अनक जतन कर काया पाली, मरती बार अगन संग जाली। चोवा चंदन मर्दन अंगा, सोतन जलै काठ कै संगा। कहो कबीर सुनो रे गुनिया, बिनसै गो रूप देखै सब दुनिया। गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करी जै, तौ की जै जो अपन जी जै। मैं ना मरो मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जिया वनहारा रहाओ। आ देही परमल मैं कंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज पर है मथारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक

भेखारी साकत मरै संत सब जीवै राम रसायन रसना पीवै कहो कबीर प्रभ कृपा कीजै हार भरे अब पूरा दीजै। गौड़ी कबीर जी की नाल रलाए लिखिया महला पंजवा ऐसो अचरज देखियो कबीर दद कै भोलै बरोलै नीर रहाओ। हरी अंगूरी गदहा चरै नित उठ हासै हींगे मरै माता पैसा अमुहा जाए कुद कुद चरै रसातल पाए। कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूंगे नित भेड़ राम रमत मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई। गौड़ी कबीर जी पंच पद ज्यों जर छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ। सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप की आकाशी मरण पया मगहर की बासी काशी मगर संबिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी कहो गुर गाज शिव।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जाओ बिख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय विचार। प्रीत बिना कैसे बदा स्नेहो, जब लग रस तब लग नहीं ने हो रहाओ। साहन सत करे जी अपने, सोर मैये को मिले न सुपने। तन मन धन गृहो सौंप शरीर, सोई सुहागन कहे कबीर। गौड़ी कबीर जी बिखिया व्यापिया सगल संसार, बिखिया लै डूबी परिवार। रे नर नाम चौड़ कत बोड़ी, हर स्यो तोड़ बिखिया संग जोड़ी रहाओ। सुर नर दा दे लागी आग, निकट नीर पस पी वसना झाग। चेतत चेतत निकस्यो नीर, सो जल निर्मल कथत कबीर। गौड़ी कबीर जी जेह कुल पूतना ज्ञान बिचारी, विधवा कसना पई महतारी। जह नर राम भगत ने सादी, जन्मत कसना मोह अपराधी रहाओ। मुच मुच गर्भ गए कीन बचिया, बुढ़ पुज रूप जीवे जग मजिया। कहो कबीर जैसे सुंदर स्वरूप, नाम बिना कैसे कुबज करूप। गौड़ी कबीर जी जो जन लेहे खसम का नाओ, तिन कै सद बलिहारे जाओ। सो निर्मल निर्मल हर गुण गावै, सो पाई मेरे मन पावै रहाओ। जेह कट राम रया परपूर, तिनकी पग पंकज हम तूर। जात जुलाहा मत का तीर, सहज सहज गुण रवै कबीर। गौड़ी कबीर जी गगन रसाल चुवै मेरी पाठी, संच महारस तन भया काठी। ओवा को कहिए सहज मतवारा, पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाओ। सहज कलालन जव मिले आई, आनंद माते अंदर जाई। चीनत चीत निरंजन लाया, कहो कबीर तो अनपव पाया। गौड़ी कबीर जी मन का स्वभाव मने व्यापी, मने मार कवन से थापी। कवन सो मन जो मन मारे, मन को मार कहो किस तारे रहाओ। मन अंतर बोले सब कोई, मन मारे बिन भगत ना होई। कहो कबीर जो जाने पे ओ, मन मधुसूदन त्रिपवन दे ओ। गौड़ी कबीर जी ओए।

सूर्य चंद करै जियारा, समय पसरिया ब्रह्म पसारा, कहो कबीर जानेगा सोए, हृदय राम मुखरा मैं होए। गौड़ी कबीर जी वेद की पुत्री सिमरत पाई, सांकत सांकल जेवरी लह आई, आपन नगर

हम देखत जिन सब जग लूटिया, कहो कबीर मैं राम कै छूटिया, गौड़ी कबीर जी दे मुहा।

चल रे बैकुंठ तुझे ले तारों, हिचै ता प्रेम कै चाबक माराओ। कहत कबीर भले असवारा, बेदक देवते रह निरारा। गौड़ी कबीर जी जेह मुख पांचो अमृत खाए, तेह मुख देखत लूकट लाए। एक दुख राम राय।

गौड़ी कबीर जी आपे पावके आपे पवना, जारे खसम तारा खै कवना, राम जपत तन जर की ना जाए, राम नाम चितरया समाए रहाओ। काको जरे कहे हुए हान, नटवट खेले सारंग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दो पदे, ना मैं जोगते

कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो वान। गौड़ी कबीर जी जेह सिर रच रच बांध तपाग, सो सिर चुंच सवार काग। इस तन तन को क्या गरबैया, राम नाम काहे ना दृढ़िया। रहाओ कहत कबीर सुन।

दुचिते की दोए थून गिरानी, मोह बलेंडा टूटा, तिसना शान परी धारी उपर, दुरमत पांडा फूटा। आंधी पाछे जो जल बरखे, तह तेरा जन पीना। कह कबीर मन पया प्रगासा, उदय पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। हर जस सुने ना हर गुण गावै, बात नहीं असमान गिरावै। ऐसे लोगन स्यों क्या कहिए, जो प्रभ किए भगते बाहजो। तिनते सदा डराने रही है रहाओ। आप ना देहे चुरू पर पानी, तह निंदे जे गंगा यानी। बैठत उठत कुटलता चाले, आप गए और नहूं कहले। छाड़ को चर्चा यान न जाने, ब्रह्मा हूं को कयो न माने। आप गए और नहूं खोवे, आग लगाए मंदिर में सोवे। अवर्ण हस्त आप है काने, तिनको देख कबीर ले जाने। राग गौड़ी बैरागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीवत पितर ना माने को, मुए सराद कराही। पितर पी बपरे कहो क्यों पावे, कौआ कुकर खाही। मोको कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिनसै। कुशल पी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देवी देवा। तिस आगे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन कया ना लेही, सर जियो काटे निर्जियो पूजे। अंतकाल कौ भारी, राम नाम की गत नहीं जानी। पै डूबे संसारी, देवी देवा पूजे डोले। पार ब्रह्म नहीं जाना, कहत कबीरा कुल नहीं चेतिया। बिखिया सो लपटाना, गौड़ी जीवत मरे मरे फुन जीवे। ऐसे सुन समाया, अंजन माह निरंजन रही है। बौना पव जल पाया, मेरे राम ऐसा खीर बिलोई है। गुरमत मनुआ असर रखो, इन बिद अमृत पियोई है रहाओ। गुर कै बाण बजर कल शेदी, प्रगटिया पद प्रगासा। सकता देर जेवड़ी भ्रम चूकी, निचल सेव कर बासा। तिन बिन बाण तनख चढ़ाई है, एह जग बेदया भाई। दैद सिर बूंडी पवन चुलावै, डोर रही लिवलाई। ओन मन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुरमत भागी। कहो कबीर अनपव के देखिया, राम नाम लिवलागी। गौड़ी बैरागण ते पदे, उल्टत पवन चक्कर खट भेदे।

और प्रसाद अगल पही अवर है ना तरथा बेगाना रहाओ। निवरै दूर दूर फो निवरै जिन जैसा कर मान्या, अलौती का जैसे भया बरेडा जिन पिया तिन जान्या। तेरी निर्गुण कथा काए स्यो कही है ऐसा कोई बबेकी, कहो कबीर जिन दिया पलीता तिन तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सिंध तूप नहीं शैया, तै उत्पत पर लो नाही, जीवन मृत ना दुख सुख व्यापै सुन समाध दो तै नाही। सहज की अकथ कथा है न्यारी, तोल नहीं चढ़े जाए ना मुकाती, हल्की लगे ना भारी रहाओ। अर्ध उर्द दो तै नाही, रात दिन सतै नाही, जल नहीं पवन पावक फुन नाही, सतगुर तहां समाही। आगमा गोचर रह निरंतर, गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर बल जाओ गुरे अपने, सत्संगत मिल रही है। गौड़ी पाप उन्दोय बैल बिसाहे, पवन पूंजी परगासे हो, तृष्णा गुण परी कट पीतर इन बिद टांड बिसाहे हो। ऐसा नायक राम हमारा, सगल संसार की ओ बनजारा रहाओ। काम क्रोध दोए पहे जगाती, मन तरंग बटवारा, पंच तत् मिल दान निबेरै टांडा उतरियो पारा। कहत कबीर सनोरे संतो, अब ऐसी बन आई, घाटी चढ़त बैले कथा का चलो गुण छिटकाई। गौड़ी पंचपदा पेवकड़ै दिन चार है, साहुरड़ै जाना अंधा लोक न जाने, मूर्ख ए आना कहो।

ये कौन लाज बहारी, लाज घड़ी स्यो टूट पड़ी, उठ चली पनिहारी, साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, पांसो हागण जानिए, गुरशब्द विचारे, किरत की बांधी सफिर है, देखो बिचारी, एसनो क्यों आखी है, क्या करे विचारी, पई निराशी उठ चली, चित बंद ना धीरा, हर की चरनी लाग रहो, पाए सरन कबीरा, गौड़ी जोगी कह जोग पल मीठा, अवरना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक है सबदी, एक है सिद पाई, हर बिन परम पुलाने अंधा, जा पै जाओ आप छुटकावनो, ते बांधे बो फंदा रहाओ, जहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही, पंडित गुणी सूर हम दाते, एक है बढ़म ही, जिसे बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है, सतगुर मिले अंधेरा चूके, इन बिद मान

हरा गौड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद जह कछ आहा तहा किश नाही पाई तत् नाही एड़ा पिंगला सुखमन बंदे ए अवगन कत जाही।

मोको को ना कह समझाई रहाओ। जह बरपंड पिंड तै नाही रचनहार तै नाही, जोड़ नहारो सदा अतीता एक ही है किसमाही। जोड़ी जुड़े न तोड़ी टूटै, जब लग होए बिनासी। काको ठाकर काको सेवक को काहू कह जासी। कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती। ओआ का मरम ओही पर जाने ओ तो सदा अबनासी। गौड़ी सुरत सिमरत दोए कन्नी मुंदा, परमित बाहर खिंथा सुन गुफा मैं आसन बैसन। कल्प बिबरजित पंथा मेरे राजन, मैं बैरागी जोगी मर्तना सोग बेयोगी रहाओ। खंड ब्रह्मांड मैं सिंगी मेरा बटुआ, सब जग पसमा तारी। ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है छूटे हुए पसारी। मन पवन दोए तूबा करी है जुग जुग सारद साजी। थिर पई तंती टूट सनाही अनहद किंगरी बाजी। सुन मन मगन पए है पूरे माया डोलन लागी। कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं खेल गयो बैरागी। गौड़ी गज नाम गज दस गज इकीस, पुरिया एक तनाई साठ सूत नव खंड बहत्तर पाठ लगो अधकाई। गई बनावन माहो कर छोड़िया जाए जुलाहो रहाओ। गजी ना मिनिया तोल ना तुलिए पाचन से अडाई। जो कर पाचन बेग ना पावे चगर करे करहाई। दिन की बैठ खसम की बरकस एह बेला कत आई। छूटे कुंडे भीगे पुरिया चलो जुलाहो रिसाई। छोछी नली तंतन निकसै नतर रही उरजाई। छोड़ पसार इहां रो बपरी कौ कबीर समझाई। गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा होए महोए। जित कट नाम नाई उपजै फूट मरे जन सोए। सावल सुंदर रा मैया मेरा मन लागा तोहे रहाओ। साध मिलै सिद्ध पाई है के ओहो जोग के भोग। दोह मिल कारज उपजै राम नाम संयोग। लोग जाने

जेते जतन करत ते डूबे भव सागर नहीं तारे ओरे कर्म तर्म करते बहु संजम अहम बुद्ध मन जारे ओरे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बिसारे ओरे हीरा लाल अमूल जन्म है कौडी बदले हारे ओरे रहाओ तृष्णा त्रिखा पूख प्रम लागी हृदय नहीं बिचारे ओरे उन्मत मान हिरेओ मन माही गुर का शब्द ना तारे ओरे स्वाद लुभत इंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत बेकारे ओरे कर्म भाग संतन संगाने कष्ट लो उधारे ओरे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारे ओरे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भक्त निस्तारे ओरे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरा रे चलत रचियो जगदीश काम सो आए गज बस परे मन बवा रे अंक सहयो शीस बिखे बाच हर राच समझ मन बौरा रे निरपय होए ना हर भये मन बौरा रे गयो ना राम जहाज रहाओ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरा रे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परया मन बौरा रे नाचियो कर कर बार जो नली सुवटा गयो मन बौरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंक सुंभ का मन बौरा रे त्यों पसरियो उपासार नामन कौ तीर्थ कने मन बौरा रे पूजन कौ बहुदेव कहो कबीर छूटन नहीं मन बौरा रे छूटन हर की सेव गौड़ी अग्न न दह पवन नहीं मगन तस्कर नेर न आवे राम नाम तन कर संचौनी सो तन कत ही ना जावे हमरा तन माधव गोबिंद तरणी तार एह सार तन कही है जो सुख प्रभ गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है रहाओ इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पए उदासी मन मकांजे बा नारायण परै न जमकी फासी निज तन ज्ञान भगत गुरदीनी तास सुमत मन लागा जलत अंब थंब मन तावत परम बंधन पौ भागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख बिचारी तुम कर लाख कोट अस्वहस्ती हम कर एक मुरारी गौड़ी ज्यों कप के कर मुष्ट चनन की लुप्त ना त्याग दयो जो जो कर्म किए लालच स्यों ते फिर ग्रह परयो भगत बिन बिरथे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही ना सच रहयो रहाओ ज्यों उद्यान कुसुम पर फुलत कने ना कराओ लयो तैसे प्रमता नेक जोन मैं फिर काल हयो या तन जोबने अरसुत दारा पेखन कहो जो दयो तिन्ही माहे अटक जो उर्जे इंद्री प्रेर लयो औद अनल तन तिन को मंदर चौदे ठाठ ठयो कह कबीर पै सागर तरन कहो मैं सदगुर ओट लयो गौड़ी पानी मैला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं नाही कश आहे ना मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी मैं पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किन्हू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कह कबीर एक नीम ओसारी खिर मैं बिनस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल परोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जात पावै ता हुक्म नावै इस बेड़े को पार लंगावै गुरप्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आमन जानी कहो कबीर पज सारंग पानी उरवार पार सब एको दानी गौड़ी नामी
ਜੋਨ ਛਾੜ ਜੋ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਓ, ਲਾਗਤ ਪਵਨ ਖਸਮ ਬਿਸਰਾਇਓ, ਜੀਅਰਾ ਹਰ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਗਾਓ। ਰਹਾਓ ਗਰਭ ਜੋਨ ਮੈਂ ਉਰਦ ਤਪ ਕਰਤਾ, ਤਉ ਜਠਰ ਅਗਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤਾ, ਲਖ ਚੌ ਰਾਸੀ ਜੋਨ ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ, ਅਬਕੇ ਛੁਟਕੇ ਠੌਰ ਨਾ ਠਾਇਓ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਜ ਸਾਰਿੰਗ ਪਾਨੀ, ਆਪਤ ਦੀਸੈ ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਨੀ, ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਸੁਰਗ ਬਾਸਨਾ ਬਾਂਛੀਐ, ਡਰੀਐ ਨਾ ਨਰਕ ਨਿਵਾਸ, ਹੋਨਾ ਹੈ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੈ ਨਾ ਕੀਜੈ ਆਸ। ਰਮਈਆ ਗੁਣ ਗਾਈਐ ਜਾਂ ਤੇ ਪਾਈਐ ਪਰਮ ਨਿਧਾਨ, ਰਹਾਓ ਕਿਆ ਜਪ ਕਿਆ ਤਪ ਸੰਜਮੋ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਕਿਆ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਜਬ ਲਗ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਨੀਐ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਭਗਵਾਨ। ਸੰਪੈ ਦੇਖਣਾ ਹਰਖੀਐ, ਬਿਪਤ ਦੇਖਣਾ ਰੋਏ, ਜਿਉਂ ਸੰਪੈ ਤਿਉਂ ਬਿਪਤ ਹੈ, ਬਿਧ ਨੇ ਰਚਿਆ ਸੋ ਹੋਏ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਅਬ ਜਾਨਿਆ, ਸੰਤਨ ਹਿਰਦੈ ਮਝਾਰ, ਸੇਵਕ ਸੋ ਸੇਵਾ ਭਲੇ, ਜਿਹ ਕਟ ਪਸੈ ਮੁਰਾਰ। ਗੌੜੀ ਰੇ ਮਨ ਤੇਰੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਿੰਚ ਲੇ ਜਿਨ ਭਾਰ, ਬਿਰਖ ਬਸੇਰੋ ਪੰਖ ਕੋ, ਤੈ ਸੋਇਓ ਸੰਸਾਰ। ਰਾਮ ਰਸ ਪੀਆ ਰੇ, ਜਿਹ ਰਸ ਬਿਸਰ ਗਏ ਰਸ ਔਰ ਰਹਾਓ, ਔਰ ਮੋਏ ਕਿਆ ਰੋਈਐ, ਜੋ ਆਪਾ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਏ, ਜੋ ਉਪਜੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਦੁਖ ਕਰ ਰੋਵੈ ਬਲਾਏ। ਜਹ ਕੀ ਉਪਜੀ ਤਹਿ ਰਚੀ, ਪੀਵਤ ਮਰਦਨ ਲਾਗ, ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਚਿਤ ਚੇਤਿਆ, ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਬੈਰਾਗ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕੰਮ ਨੀ, ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲਿਓ ਸਾਸਾ, ਉਰਨਾ ਪੀਜੈ ਭਗਨਾ ਖਿਸੈ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਆਸਾ। ਉਡੋ ਨਾ ਕਾਗਾ ਕਾਰੇ, ਬੇਗ ਮਿਲੀ ਜੈ ਆਪਣੇ ਰਾਮ ਪਿਆਰੇ, ਰਹਾਓ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜੀਵਨ ਪਦ ਕਾਰਨੋ, ਹਰ ਕੀ ਪਤ ਕਰੀ ਜੈ, ਏਕ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣੋ, ਰਸਨਾ ਰਾਮ ਰਵੀ ਜੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ, ਆਸ ਪਾਸ ਕੰਤ ਤੁਰਸੀ ਕਾ ਬਿਰਵਾ, ਮਾਜ ਬਨਾਰਸ ਗਾਉਂ ਰੇ, ਉਹ ਆਕਾ ਸਰੂਪ ਦੇਖ ਮੋਹੀ ਗੁਆਰਨੋ, ਮੋਕੋ ਛੋਟ ਨਾ ਆਓ ਨਾ ਜਾਊ ਰੇ, ਤੋਹੇ ਚਰਨ ਮਨ ਲਾਗੋ ਸਾਰੰਗ ਧਾਰ, ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੋ ਬਡ ਭਾਗੋ, ਰਹਾਓ। ਬਿੰਦਰਾ ਬਾਨ ਮਨ ਹਰਨ ਮਨੋਹਰ, ਕਿਸਨ ਚਰਾਵਤ ਗਾਊ ਰੇ, ਜਾਂ ਕਾ ਠਾਕਰ ਤੁਹੀ ਸਾਰਿੰਗ ਧਾਰ, ਮੋਹੇ ਕਬੀਰਾ ਨਾਊ ਰੇ। ਗੌੜੀ ਬਾਰਵੀਂ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਬਾਰਵੀਂ, ਬਿਪਲ ਬਸਤਰ ਕੇਤੇ ਹੈ ਪਹਿਰੇ, ਕਿਆ ਬਨ ਮੱਦੇ ਬਾਸਾ, ਕਹਾਂ ਭਇਆ ਨਰ ਦੇ।

साहेब रोस तरों के प्यार रहाओ, नाम तेरा आधार मेरा ज्यो फूल जई है नार। कह कबीर गुलाम कर का जी आए पावै मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन मैं परमत नंद बौथा कोरे, भगत हेत अवतार लियो है भाग बड़ो बपरा कोरे। तुम जो कहता हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे। तरन आकाश दसो दिस नाही, तब एहो नंद कहां थोरे रहाओ। संकट नहीं परे जोन नहीं आवे, नाम निरंजन जा कोरे। कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई ना बापोरे।

निंदक सो जो निंदा हो रै, हमरा जीवन निंदक लो रै। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करै उधार। जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपो, तरन तारन राम राया रहाओ। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। अब हम तुम एक भय है, कह देखत मन पति आही। जब बुद्ध होती तब बल कैसा, अब बुद्ध बल ना खटाई। कह कबीर बुद्ध हर ले मेरी, बुद्ध बदली सिद पाई। गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बंदी, बस्त अनूप बीच पाई। कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे, करते बार ना लाई। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो। चोर मुसे कर जाई रहाओ। पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। चेत सुचेत चित होए रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौ कर देख जो कामन भूली, बस्ता नूप ना पाई। कहत कबीर नवे कर मूसे, दसवें तत समाई। गौड़ी माई मोहे अवर ना जान्यो अनाना, शिव सनकाद जास गुन गावे, तास बसे मोरे प्राणा ना रहाओ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मत, गगन मंडल मैं ध्याना ना। बिखै रोग पै बंधन भागे, मन ही कर सुख जाना ना। एक सुमात्रत जान मान प्रभ, दूसर मने ना आना ना। चंदन बास भय मन बासन, त्या कट्यो अभमाना ना। जो जन गाए त्या जस ठाकर, तास प्रभु है थाना ना। तेह बड़ भाग बस्यो मन जाके, कर्म प्रधान मथाना ना। काट सकत शिव सहज प्रगासो, एक है एक समाना ना। कह कबीर गुर भेट महासुख, भ्रमत रहे मन माना ना। राग गौड़ी पूर्वी बाम नखरी, कबीर जियो की एक ओंकार। सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद।

तै मन ना रहावा, बोले बोल मद है सोई, जस ओ है तसलख है ना कोई। अल्लाह लहो तव तो क्या कहो, कहो ताको पुकार, बटक बीज में रव रहो जाको तीन लोक विस्तार। अल्लाह लहंता भेद शय, कश कश पायो भेद, उल्ट भेद मन भेदयो, पायो अपंगा छेद। तुरक तरीकत जानिए, हिंदू वेद पुराण, मन समझावन कारने कशवक पढ़िए ज्ञान। ओवंकार आद मैं जाना, लेखियर मेटै ताहे ना माना, ओवंकार लखै जो कोई, सोई लख मेटना ना होई। कक्का किरण कमल मैं पावा, सस बिघास संपट नहीं आवा, अर्जे तहां कुसम रस पावा, अकह कहा कह का समझावा। खखा है खोड़ मन आवा, खोड़े छाड़ ना दे जस्तावा, खसमै जान खिमा कर रह, ता होए निखियाओ अखै पदल है। गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरी काना, रह बिहंगम कतै ना जाई, अगै गह गै गगन रहाई। कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कवै ना होई, ता कट माहे काट जो पावा, सो कट छाड़ अव कट कत्तावा। गंगा निग्रह स्नेहो कर, निर्वारो संदेह, नाही देखना भाजी है परम सियानप एह। चचा रचित चित्र है भारी, ता चित्र है चेतो चितकारी, चित्र बचित्र एह अवचेरा, ता चित्र चित्राक्ष तेरा, छच्छा एह छत्रपत पासा, छक के ना रहो छाड़ के ना आसा। रे मानो मैं तो छिन छिन समझावा, ताहे छाड़ कत्या बधावा, जज्जा जाओ तन जीवत जरावै, जो

जिन ठग ठगया सगल जग खावा, सो ठग ठगया ठौर मन आवा। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मह डर या समाई। जाओ डर डरे ता फिर डर लागे, निडर हुआ डर और होए भागे। टड्डा टेग टूडे कत्याना, टूडत ही टह गए पराना। चढ़ सुमेर टूण जब आवा, जे गड़ गड़े हो सो गड़ में पावा।

पांचों इंद्री निग्रह करई पापुन दो निर्वरई फफा बिन फूले फल होई ता फल फंक लखे जाओ कोई दूर न परे फंक बिचार है ता फल फंक सबै तन फार है बब्बा बिंदे।

ससा सोनी का कर सो दो, कट परचा की बात न रो दो, कट परचा जो उपजय पाओ, पूर रया तैंत्र भवन राओ, खखा खोज पर जो कोई, जो खोजे सो बहुर ना होई, खोज बूझ जो करे बिचारा, तो पवजल तरत न लावे बारा, ससा सो सहसे सवार सोई सही संदेह निवार, अल्प सुख शाड परम सुख पावा, तब एह त्रियो कंत कहावा, हा हा होत।

तवे मनमाना, है तो सही लखे जो कोई, तब ओही ओहो एहो ना होई। ल्यो ल्यो करत फिरे सब लोग, ता कारण व्यापे बो सोग, लक्ष्मी बरस्यों जो ल्यो लावे, सोग मिटे सब ही सुख पावे। खखा खिरत खपत गए केते, खिरत खपत अजू न चेते, अब जग जान जो मना रह, जह का बिचरा तह थिर लह, बावन अखर जोरे आन, सकिया ना अखर एक पछान। सत का शब्द कबीरा कह, पंडित हुए सो अन पैर है, पंडित लोगे कौ व्यवहार, ज्ञानवंत कौ तत् विचार। जा कह जी जैसी बुद होई, कह कबीर जाने गा सोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गौड़ी थिती कबीर जी की, श्लोक पंद्रह थिती सात वार, कह कबीर उरवार ना पार। साधक सिद्ध लखे जो पे ओ, आपे करता आपे दे ओ। थिती अमावस में आस निवारो, अंतर जामी राम सुमारो, जीवत पावो मोख द्वार, अनपो शब्द तत निजसार। चरण कमल गोबिंद रंग लागा, संत प्रसाद भय मन निर्मलो, हर कीर्तन में अंदर जागा रहाओ। परवा प्रीतम करो विचारो, घट में खेले अकट अपारो, काल कल्पना कदे ना खाए, आद पुरख में रह समाए। द्वितीया दोहकर जाने अंग, माया ब्रह्म रमै सब संग, ना उबड़े न करता जाए, अकुल निरंजन एक पाए। तृतीया तीने सम कर लिया वै, आनंद मूल परम पद पावै, साध संगत उपजै विश्वास, बाहर पीतर सदा प्रगास।

पंच पंच तत् विस्थार कनक कामनी जोग व्यवहार प्रेम सुधा रस पीवै कोए जरा मरण दुख फेर ना होए छट खट चक्र शहू दिस्ताए बिन पर चै नहीं थिरा रहाए दुबदा मेट खे मांगे रहो कर्म धर्म की सूल ना सहो सात समकर बाचा जान सात सतकर बाचा जान आत्म राम लिहो प्रवान छूटे संसा मिट जाहे दुख सुन सरोवर पावो सुख अष्टमी अष्ट तात की काया ता मैं कुल महान निदराया गुरगम ज्ञान बतावे भेद उल्टा रह अपंग अशेद नौमी नवे द्वार कहो साध बहती मनसा राखो बांध लो मो सब बिसर जाहो जुग जुग जीवो अमर फल खाहो दसवीं दैदस होए आनंद छूटे परम मिलै गोबिंद ज्योत स्वरूपी तात्यानूप अमल ना मलन शाह नहीं धूप एकादशी एक दिस्तावै तो जोनी संकट बहुर ना आवै शीतल निर्मल पया शरीरा दूर बतावो पाया नीरा बारस बारह उगवै सूर अहनिस बाजे अनहद तूर देख्या तिहूं लोक का पियो अचरज पया जीव ते सीओ तेरस तेरा यगंब खान अर्ध उर्द बिच सम पहचान नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान चौदह से चौदह लोक मजार रोम रोम में बसे मुरार सासन तो कातरो त्यान कथनी कथिया ब्रह्म ज्ञान पुण्यो पूरा चंद आकाश पसरे कला सहज प्रगास आदि अंत मद होए रहे आथीर सुख सागर में रमै कबीर एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग गौड़ी वार कबीर जियो के सत बार बार हर के गुण गावो गुरगम पे सो हर का पावो रहाओ आदित करे भगत आरंभ काया मंदर मनसा थंब अहनस अखंड सो रही जाए तो अनहद वेण सहज महवाए सोमवार सस अमृत चरै चाखत बेह सगल बिखहरै बाणी रोकिया रह द्वार तो मन मत बारो पीवनहार मंगलवारे ले माहीत पंच जोर की जाने रीत घर छोड़े बाहर जिन जाए ना तर खरा रिसै है राए बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल में हर का बास गुरमिल दो एक समतरै उर्द पंक लै सुदा करै बृहस्पत बिखिया दे बिहाए तीन देव एक संग लाए तीन नदी तै त्रिवटी माहे एनस कसमल तो वै नाहे सुकृत सहारै सो एह व्रत चढ़ै अनदिन आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट न पैसै कबै थावर थिर कर राखे सोए जोत दी वट्टी कट मैं जोए बाहर पीतर पया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग कट मैं दूजी आन तौ लो महल न लाबे जान रमत राम स्यों लागो रंग कह कबीर तब निर्मल अंग

राम कहत जन का स्ना तरे रहाओ। तारी ले गन का बिन रूप कुबजा, ब्याद अजा मल तारी अले। चरण बदक जन ते मुक्त भये, हाँ बल बल जिन राम कहे। दासी सोत जन बिदर सुदामा।

मेरी हरो बिपत जन करो सुभाई, चरण ना छाड़ो शरीर कल जाई। कहो रविदास परो तेरी साबा, बेग मिलो जन कर ना बिलंबा। बेगमपुरा शहर को नाओ, दुखा दो नहीं ते ठाओ। ना तस्वीस खराज ना माल, खौफ ना खता ना तरस जवाल। अब मोए खूब

कवन कर्म ते छूटी है, जे साधे सब सिद्ध होए, कर्म अकर्म बिचारी है, शंका सुन वेद पुराण, संसा सद हृदय बसै, कौन हरै अभिमान, बाहर उदक पुखारी है, घट भीतर बिबद बेकार, शुद्ध कवन पर होए बो, सुच कुंचर बिद व्यवहार, राव प्रगास रजनी जथा गत, जानत सब संसार, पारस मानो ताबोश होए, कनक होत नहीं बार, परम परस गुर भेटी है, पूर्व लिखत ललाट, उन मन मन मन ही मिले, छुटकत बजर कपाट, भगत जुगत मत सत करी, प्रबंधन काट बेकार, सोई बस रस मन मिले, गुण निर्गुण एक विचार, अनक जतन निग्रह किए, टारी ना टरै प्रम फास, प्रेम

काल मुहूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद राग आसा महला पहला कर पहला सोदर सोदर तेरा केहा सो कर केहा जित पै सर्व समाले वाजे तेरे नादा ने का संखा केते तेरे वावण हारे केते तेरे राग परिशो कही है केते तेरे गावण हारे गावन तुदनो पौन पानी बैसंतर गावे राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानो लिख लिख धर्म विचारे गावन तुदनो ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सुवारे गावन तुदनो इंद्र इंद्रासन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो से समाधि अंदर गावन तुदनो साध विचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़े रखी सर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो रतने उपाए तेरे जेते अठसठ तीर्थ नाले गावन तुदनो जोत महाबल सूरा गावन तुदनो खानी चारे गावन तुदनो खंड मंडल ब्रह्मंडा कर कर रखे तेरे तारे सही तुदनो गावन जोत पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते तुदनो गावन से मैं चितना आवन नानक क्या बिचारे सोई सोई सदा साहेब।

सो क्यों विसरै मेरी माए, साचा साहब साचै नाए रहाओ। साचे नाम की तिल वड़ियाई, आग थके कीमत नहीं पाई। जैसा मिलकै आखण पाहे, वड्डा ना होवै काट ना जाए।

तू सर्वे पूर रहया लिव लाए रहाओ। जियो पाए जुगत हथ कीनी, काली नथ क्या वड़ा भया, किस तू पुरख जोरू कौन कही है, सर्ब निरंतर रव रहा। नाल कुटंब साथ वरदाता, ब्रह्मा पालन सृष्ट गया, आगे अंतरा पायो ताका, कंस छेद क्या वड़ा भया। रत्नो पाए तरे खीर मथिया, होर पखलाए जे असी किया, कह नानक छपै क्यों छपया, एकी एकी वंड दिया। आसा महला पहला, कर्म कर तूत बेल बिस्थारी, राम नाम फल हुआ, तिस रूप ना रेखा नाह दवाजै, शब्द निरंजन किया। करे वख्याण जाने जे कोई, अमृत पीवै सोई रहाओ, जिन पिया से मस्त पहे है, टूटे बंधन फाहे। ज्योति ज्योत समाणी पीतर, ता छोड़े माया के लाहे, सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया, सगल पवन तेरी माया, रारै रूप निरालम बैठा, नजर करे विच छाया। बीना शब्द वजावै जोगी, दर्शन रूप अपारा, शब्दा नहद सो सौ राता, नानक कह विचारा। आसा महला पहला, मैं गुण गल्ला के सिर पार, गली गल्ला सिरजनहार, खाना पीना हसना बाद, जब लग हृदय न आवै याद, तौ प्रवाह के ही क्या कीजै, जन्म जन्म किश ली जी लीजै रहाओ। मन की मत मता गल मता, जो किश बोली है सब खतो खता, क्या मोहले कीचे अरदास, पाप उन्दो साखी पास, जैसा तू करे तैसा को होए, तुझ बिन दूजा नाही कोए, जे ही तू मत देहे पे ही को पावे, तुझे आपे पावे तवे चलावे। राग रतन परिया परवार, तिस विच उपजै अमृत सार, नानक करते कहो धन माल, जे को आखे हो बिचार। आसा महला पहला, कर कृपा अपने घर आया, तामिल सखिया काज रचाया, खेल देख मन आनंद भया, शह भी आहने आया। गावो गावो कामणी बबेक बिचार, हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाओ। गुरु द्वारे हमरा भी आहो जे होवा, जा सह मिलिया ता जानिया, तेहो लोका मैं शब्द रविया है, आप गया मन मानिया। अपना कार्ज आप सवारे, होरन कार्ज ना होई, जित कार्ज सत संतोख दया धर्म है, गुरमुख बूझै कोई। पंत नानक सबना का परे को सोए, जिसनो नजर करे सासो हागण होए। आसा महला पहला, गृह बन समसर सह सुभाए, दुर्मत गत पै कीर्त ठाए, सच पौड़ी साचो मुख नाओ। सतगुर सेव पाए रही थाओ, मन चूरे खड़ दर्शन जान, सर्व ज्योत पूर्ण भगवान रहाओ। अधिक त्यास पेख बहु करै, दुख बिख्या सुख तन पर हरै, काम क्रोध अंतर तन हिरै, दुबदा छोड़ नाम निस्तरै। सिवत सलाहण सहज आनंद, सखा सैन प्रेम गोबिंद, आपे करे आपे बख्शिंद, तन मन हर पै आगै जिंद। झूठ विकार महा दुख देहे, पेख वर्ण दिसै सब खेहे, जो पजै सो आवै जाए, नानक असर नाम रजाए। आसा महला पहला, एको सरवर कमल अनूप, सदा बिगासै परमल रूप, उजल मोती चुगै हंस, सर्व कला जगदीसै अंस, जो दिसै सो उपजै बिनसै, बिन जल सरवर कमल ना दिसै रहाओ। बिरला बूझै पावै भेद, साखा तीन कह नित बेद, नाद बिंद की सुरत समाए, सतगुर सेव परम पद पाए।
ਮੁਕਤੋ ਰਾਤੋ ਰੰਗ ਰਵਾਤੋ ਰਾਜਨ ਰਾਜ ਸਦਾ ਬਿਕਸੰਤੋ ਜਿਸ ਤੂੰ ਰਾਖੈ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਬੂੜਤ ਪਾਹਨ ਤਾਰੈ ਤਾਰ ਤਿਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜੋਤ ਤਿਰ ਭਵਨ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਉਲਟ ਭਈ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਆਣਿਆ ਅਹਿਨਸ ਭਗਤ ਕਰੇ ਲਿਵਲਾਏ ਨਾਨਕ ਤਿਨਕੈ ਲਾਗੈ ਪਾਏ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ।

क्या देखा सूझ बूझ ना पावे, बिन नावे मंत्र पित ना आवे। जो जन्मे से रोग व्यापे, हमे माया दुख संतापे, से जन बांचे जो प्रभ राखे, सतगुर सेव अमृत रस चाखे। चल तो मन राखे अमृत चाखे, सतगुर सेव अमृत शब्द भाखे, साचे शब्द मुक्त गत पाए, नानक विचों आप गवाए, आसा महला पहला। जो तिन किया सो सच थिया, अमृत नाम सतगुर दिया। हृदय नाम नाही मन भंग, अंध नाल प्यारे संग। हर जियो राखो अपनी सरनाई, गुर प्रसादी हर रस पाया, नाम पदार्थ नवनिद पाई रहाओ। कर्म धर्म सच साचा नाओ, ता कै सतबल हारै जाओ। जो हर राते से जन प्रवाण, तिनकी संगत परम निधान। हर वार जिन पाया धन नारी, हर सो राती शब्द विचारी। आप तरै संगत कुल तारै, सतगुर सेव तत् विचारै। हमरी जात पत सच नाओ, कर्म धर्म संजम सत पाओ। नानक बख्श

एक हर राते रह समाई, एक धरन गगन में ठावर ना पावे, ऐसे कर्महीन हर नाम ना त्यावे। गुर पूरे ते गत मित पाई, एहो संसार बिखवत अत भौजल, गुर सबदी हर पार लंघाई रहाओ। जिन कौ आप लय प्रमेल, तिन कौ काल न साकै पेल, गुरमुख निर्मल रह प्यारे, ज्यो जल अंब उपर कमल निरारे। बुरा भला कहो किसनो कहिए, दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लहिए, अकथ कथो गुरमत विचार, मिल गुर संगत पावो पार। शास्त वेद सिमरत बहु भेद, अठ सठ मजन हर रस रेद, गुरमुख निर्मल मैल ना लागे, नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे। आसा महला पहला, निम्न उपाय

मन का अंधला माया का बंद, खीन खराब होवे नित कंद, खान जीवन की बहुती आस, लेख तेरा एहसास गिरास, अहन इस अंधले दीपक दे, पहो जल डूबत चिंत करे, कह सुने जो माने नाओ, हाँ बलिहारे ता कह जाओ, नानक करे अरदास, जियो पिंड सब तेरे पास, जा तू देह जपी तेरा नाओ, दरगे बैसन होवे थाओ, जा तुद पावे ता दो जाए, ज्ञान तन मन वसे आए, नदर करे ता सतगुर मिले, प्रणवत नानक पव जल तरै, आसा महला पहला पंच पदे, दुध बिन तेन पंख बिन पंखी, जल बिन उत्पुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नाही, की विसरै दुख बहुता लागै, दुख लागै तू विसर नाही, रहाओ अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन ना वाजै, चरनी चलै पजूता आगै, विण सेवा फल लागै, अखर बिरख बाग पोए चोखी, संचित पाओ करेही, सबना फल लागै नाम एको, बिन कर्मा कैसे लेही, जेते जीते ते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, दुख सुख पाना तेरा होवे, विण नावें जियो रह नाही, मत विच मरण जीवन

काया ब्रह्मा अमन है तोती, ज्ञान जनेऊ त्यान कुस्पाती, हर नामा जाजा चो नाओ, गुर प्रसादी ब्रह्म सुमाओ। पांडे ऐसा ब्रह्म विचार, नामे सोच नामे पढ़ाओ, नामे चज्याचार रहाओ। बाहर जनेऊ जिचर जोत है नाल, तोती टिक्का नाम समाल, एथे उथे निभी नाल, विणना वै होर कर्म ना पाल। पूजा प्रेम माया प्रजाल, एको वेखो अवरना पाल, चिन्ह तत् गगन दस द्वार, हर मुख पाठ पढ़े विचार। भोजन पाओ परम पाओ भागै, पाहरू राशब चोर ना लागै, तिलक लाट जाने प्रवेक, बुझे ब्रह्म अंतर बबेक, आचारी नहीं जीतिया जाए, पाठ पढ़े नहीं कीमत पाए। अष्ट दसी चहु भेद ना पाया, नानक सतगुर ब्रह्म दिखाया, आसा महला पहला। सेवक दास भगत जन सोई, ठाकर का दास गुरमुख होई, जिन सिर साजी तिन फनगोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, साच नाम गुर।

क्या हो आखा आख वखाणी, तू आपे जाने सर्व डाणी, नानक एको दर्दी बाण, गुरमुख साच तहां गुदराण, आसा महला पहला, काची गागर दे दोहेली, उपजे बिनसै दुख पाई, एहो जग सागर दुत्तर क्यों तरी है, बिन हर गुर पार ना पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे, तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सरबी रंगी रूपी तू है, तिस बख्से जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे, पिरस्यो मिल ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवा, हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया, तुम साम इतना यवर कोई, जो तू राखे तिवही रहना, दुख सुख देवे करै सोई, आसा मनसा दो बिनास्त, त्रिगुण आस निरास पई, तुरिया अवस्था गुरमुख पाई है, संसवा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप, जिस हर हिरदय अलाख्या भेवा, नानक राम नाम मन राता,

मोह कुटुंब मोह सवकार, मोह तुम तजो सगल वेकार, मोह अर भरम तजो तुम वीर, साच नाम हृदय रवै शरीर रहाओ। सच नाम जा नव निद पाई, रोवै पूत न कल्पै माई, एत मोहे डुबा संसार, गुरम कोई उतरै पार, एत मोहे फिर

नदर करे ता एहो मोह जाए, नानक हर सिउ रहै समाए, आसा महला पहला। आप करे सच अलाख्या पार, हम पापी तू बख्शनहार। तेरा पाणा सब किश होवै, मन अठ कीचै अंत विगोवै रहाओ। मन मुख की मत कूड व्यापी, बिन हर सिमरण पाप संतापी। दुर्मत त्याग लाह किश लेवो, जो पजै सो लाख्या पेवो। ऐसा हमरा सखा सहाई, गुर हर मिलिया भगत दृढ़ाई। सगली सौंदी तोटा आवै, नानक राम नाम मन पावै। आसा महला पहला, चौपदे विद्या विचारी, ता पर उपकारी। जा पंचरासी ता तीर्थवासी, घुंगरू वाजै जे मन लागै। तौ जम कहां करे, मोस्यो वागै रहाओ। आस निरासी तौ सन्यासी, जा जत जोगी ता कायां भोगी। दया दिगंबर।

एक ना परिया गुण कर तोवा मेरा सौ जागै हो निष्परसोवा इओ क्यों कंत प्यारी होवा सौ जागै हो निष्परसोवा रहाओ आस प्यासी से जयावा आगे से पावा के ना पावा क्या जाना क्या होए गारी माई हार दर्शन बिन रहन ना जाई रहाओ प्रेम ना चाखिया मेरी तिसना बुझानी गया सो जो बंतन पछतानी अजय सो जागो आस प्यासी पई ले उदासी रहो निरासी रहाओ हौ मैं खोए करे सिंगार तव कामन से जरवे पतार तव नानक कंते मन पावे छोड़ वडाई अपने खसम समावे रहाओ आसा महला पहला पेव कड़ैतन खरी।

को सोई। कहत नानक ऐसी मत आवै ताको सच्चे सच समावै आसा महला पहला दो पदे तित सरवरड़ पहिले निवासा पानी पावक तनह किया पंकज मोह पग नहीं चाल हम देखा तह डूबियाले मन एक ना चेत समूड मना हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहा ना हो जति सती नहीं पड़या मूर्ख मुगदा जन्म पाया प्रणवत नानक तिन की सरना जिंतु नाही विसरिया आसा महला पहला छे घर छे गुर छे उपदेश गुर गुर एको वेसानेक जय कर करते कीर्त होए सो कर राख वडाई तो हे रहाओ विसोए चसिया घड़िया पहरा थिती वारी माहो भया सूरज एको रोता नेक नानक करते के तेवेस एको वंकार सतगुर प्रसाद आसा घर तीजा महला पहला लख लश्कर लख वाजे नेजे लख उठ करे सलाम लखा उपर फरमायस तेरी लख उठ राख मान जा पत लेख ना पवै ता सब निरा फल काम हर के नाम बिना जगतंदा जे बहुता समझाइए भोला पीसो अंदो वंदा रहाओ लख खटिए लख संजिए खाजै लख आवै लख जाहे जा पत लेख ना पवै ता जी किथै फिर पाहे लख शास्त्र समझावनी लख पंडित पढ़े पुराण जा पत लेख ना पवै ता सबे को प्रमाण सच नाम पच उपजै कर्म नाम करतार अहनस हृदय जे वसै नानक नदरी पार आसा महला पहला दीवा मेरा एक नाम दुख विच

लख मड़िया कर एक ठे एक रत्ती ले पाहे रहाओ। पिंड पतल मेरी केसव किरिया सच नाम करतार, एथे उथे आगे पाछे एहो मेरा आधार। गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राओ, सच्चा नावन तां थी है जा एनस लागै पाओ। एक लोकी होर शमशरी ब्राह्मण वट पिंड खाए, नानक पिंड बख्शीस का कबू ने खूट सुना है। आसा कर चौथा महला पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद देवतियां दर्शन कहताई दुख पुख तीर्थ किए। जोगी जदी जुगत मैं रहते कर कर पगवे भेख पे, तौ कारण साहेबा रंग रते तेरे नामा नेका रूपानंता, कहन ना जाही तेरे गुण के ते रहाओ। दर कर मैला हस्ती घोड़े छोड़ वेलायत देश गए, पीर पे कांबर सालक साधक छोड़ी दुनिया थाए पे। सात सहज सुख रस कस तजियले, कापड़ छोड़े चमड़ लिए। दुखिए दर्द बंद दर तेरा, नाम रते दरवेश पे।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर शेवा महला पहला मन मोती जे गहना होवे पौन होवे सूत तारी खिमा सिंगार कामन तन पहरे रावे लाल प्यारी लाल बहुगुण कामन मोही तेरे गुण होहे नायवरी रहाओ हर हर हर कंठ ले पहरे दामोदर दंत ले कर कर करता कंगन पहरे इन बिद चित तेरे मद सूदन कर मुंदरी पहरे परमेश्वर पट ले तीरज तीरज तड़ी बंदावे कामन श्री रंग सुरमा दे मन मंदर जे दीपक जाले काया सेज करे ज्ञान राओ जब से जय आवे ता नानक भोग करे आसा महला पहला कीता होवे करे कराया तिस क्या कहिया भाई जो किश करना सो कर रहया कीते क्या चतराई तेरा हुकम भला तुद भावे नानक ता को मिले वडाई साचे नाम समावे रहाओ किरत पया परवाना लिखिया बाहुड़ हुक्म ना होई जैसा लिखिया तैसा पढ़िया मेट न सके कोई जे को दरगे बहुता बोले नौ पवे बाजारी सतरंज बाजी पक्के नाही कच्ची आवे सारी ना को पढ़िया पंडित बिना ना को मूर्ख मंदा बंदी अंदर सिफत कराए ता को कहिए बंदा आसा महला पहला गुर का शब्द मने मैं मुंदरा खिंथा खिमा हंडावो जो किश करे पला कर मानो।

अमृत नाम ने रंजन पाया, ज्ञान काया रस भोगं रहाओ, शिव नगरी में आसन बैसाओ, कल्पते आगी बादं, सिंगी शब्द सदा तुन सोहै, एनिस पूरे नादं, पत विचार ज्ञान मत डंडा, वर्तमान बेपूतं, हर कीर्त रह रास हमारी, गुरमुख पंथ अतीतं, सगली ज्योत हमारी समया, नाना वर्णा नेकं, कहो नानक सुन पार्थर योगी, पार ब्रह्म लिवेकं, आसा महला पहला, गुड़ कर ज्ञान त्यान कर तावै, कर करनी कस पाई है, पाठी पवन प्रेम का पोचा, इतरस अम्यों चुवाई है, बाबा मनमत वारो नाम रस पीवै, सहज रंग रच रहया, अहनस बनी प्रेम लवलागी, शब्दा नाहद गहया रहाओ, पूरा सच प्याला सहजे, तिसे पियाए जा को नदर करे, अमृत कावा पारी होवे, क्यामत छूछै पाओ तरे, गुर की साखी अमृत बाणी, पीवत ही परवान पया, दर दर्शन का प्रीतम होवे, मुक्त बैकुंठै करै किया, सिफती रता सद बैरागी, जुवे जन्म न हारै, कहो नानक सुन पार्थर योगी, खीवा अमृत धारै, आसा महला पहला, खुरासान खसमाना किया, हिंदुस्तान डराया, आपै दोष न देई करता, जमकर मुगल चढ़ाया, एती मार पई कर लाने, तै की दर्द न आया, करता तू सबना का सोई, जे सकता सकते कौ मारे, ता मन रोस न होई रहाओ, सकता सीहो मारे पैवग गै, खसमै साप पुरसाई, रतन विगाड़ वे गोए कुत्ती, मुया सार ना काई, आपे जोड़ वे छोड़े आपे, वेख तेरी वड़े आई, जे को ना उतराए वड़ा, साध करे मन पाने, खसमै नदरी कीड़ा आवै, जेते चुगै दाने, मर मर जीवै ताक्ष पाए, नानक नाम वखाने, राग आसा कर दूजा महला तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर दर्शन पावै वडभाग, गुर कै सब सच्चै बैराग, खड़ दर्शन वरतै वरतारा, गुर का दर्शन अगमे अपारा, गुर कै दर्शन मुक्तगत होए, साचा आवसै मन सोए रहाओ, गुर दर्शन उदरै संसारा, जे को लाए पाओ प्यारा लाए विरला कोए, गुर कै दर्शन सदा सुख होए, गुर कै दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार सधार, निगुरे कौ गतकाई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही, गुर कै शब्द सुख सां शरीर, गुरमुख ता कौ लगै ना पीर, जम काल तिस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साज समावै, आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गवाए, सतगुर सेवे तिलना तुमाए, निरपव दाता सदा मन होए, सच्ची बाणी पाए भाग कोए, गुण संग्रह

उत्तम जाति उत्तम सोए, गुर पौड़ी शब्द उच्चा होए, नानक नाम वडाई होए, आसा महला तीजा। मनमुख झूठो झूठ कमावे, खसमै का महल कदे ना पावे, दूजे लगी परम भुलावे, ममता बांदा आवे जावे। दोहागणी कामन देख सिंगार, पुत्र कलत धन माया चित लाए, झूठ मोह पाखंड विकार रहाओ। सदा सुहागण जो प्रभावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, से सुखाली अंदन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे। सा सुहागण साची जे सच प्यार, अपना पिर राखे सदा उरतार, नेड़े वेखे सदा हदूर, मेरा प्रभ सर्ब रहा भरपूर। आगे जा

भगत रता जन सह सुभाए, गुर कै पैसा चै साज समाए, बिन गुर पूरे भगत ना होए, मन मुखरुने अपनी पत खोए, मेरे मानो हर जप सदा त्याए, सदा आनंद होवै दिन राती, जो इच्छा सोई फल पाए रहाओ, गुर पूरे ते पूरा पाए, हृदय शब्द सच नाम वसाए, अंतर निर्मल अमृत सरन आए, सदा सूचे साज समाए, हर प्रभ वेखै सदा हजूर, गुर प्रसाद रहा भरपूर, जहां जाओ तह वेखा सोए, गुर बिन दाता अवर ना कोए, गुर सागर पूरा भंडार, ऊतम रतन जवाहरिया पार, गुर प्रसादी देवनहार, नानक बख्शे बख्शनहार, आसा महला तीजा, गुर सायर सद

आए, ज्ञान रतन सब सोजी होए, गुर प्रसाद ज्ञान बिनासै, अंधन जागै वेखै सच सोए रहाओ। मोह गुमान गुर शब्द जलाए, पूरे गुर ते सोजी पाए, अंतर महल गुर शब्द पछाणै, आवन जान रहै थिर नाम समाणै। जमन मरना है संसार, मन मुखा चेत।

जन नानक गुरमुख प्रगट होए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर दूजा महला चौथा। किस ही तड़ा किया मित्र सुत नाल पाई, किस ही तड़ा किया कुड़म सके नाल जवाई, किस ही तड़ा किया सिकदार चौधरी नाल अपने सवाई। हमारा तड़ा हर आसमाई, हम हर सो तड़ा किया मेरी हर टेक, मैं हर बिन पख तड़ा अवर ना कोई, हौ हर गुण गावा असंख अनेक रहाओ। जिन स्यो तड़े करे से जाहे, झूठ तड़े कर पछोताहे, थिर ना रहे मन खोट कमाहे। हम हर स्यो तड़ा किया जिसका कोई समर्थ ना है, एह सब तड़े माया मोह पसारी, माया कौलू जय गावारी, जन्म मरे जुए बाजी हारी, हमरे हर तड़ा जे हलत पलत सब सवारी। कलयुग में तड़े पंच चोर चगड़ाए, काम क्रोध लोभ मोह अभिमान वधाए, जिसनो कृपा करे तिस सत्संग मिलाए। हमरा हर तड़ा जिन एह तड़े सब गवाए, मिथ्या दूजा भाव तड़े बह पावै, प्राया शिद्र अटकलै अपना अहंकार वधावै। जैसा बीजै तैसा खावै, जन नानका हर तड़ा धर्म सब श्रेष्ठ जिणियावै। आसा महला चौथा, हिरदय सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर लख लखाया, गुरमुख नाम सुनो मेरी पहना, एको रव रहया कट अंतर, मुख बोलो गुरे अमृत बैना रहाओ। मैं मंतन प्रेम महा बैराग, सतगुर पुरख पाया वड भाग, दूजे पाए पवै बिख माया, पागहीन नहीं सतगुर पाया। अमृत हर रस हर आप पी आया, गुरपुरे नानक हर पाया। आसा महला चौथा, मेरा मन तन प्रेम नाम आधार, नाम जपी नामो सुखसार, नाम जपो मेरे साजन सैना।

नामहीन कालख मुख माया, नाम बिना त्रिक त्रिक जीवाया, वड्डा वड्डा हर भाग कर पाया, नानक गुरमुख नाम देवाया, आसा महला चौथा, गुण गावा गुण बोली बाणी, गुरमुख हर गुण आख वखाणी, जप जप नाम मन पया आनंदा, सत सत सतगुर नाम दिड़ाया, रस गाए गुण परमानंदा, रहाओ हर गुण गावे हर जन लोगा, वड्डे भाग पाए हर निरजोगा, गुण में हून माया मलतारी, विण गुण जन्म मोए हंकारी, शरीर सरोवर गुण प्रगट किए, नानक गुरमुख मस्त तत् कढ़िए, आसा महला चौथा, नाम सुनी नामो मन पावे, वड्डे भाग गुरमुख हर पावे, नाम जपो गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास गिरासा, रहाओ नामै सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावै सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मोए बिख देख पतंगा, आपे थापे थापो थापे, नानक नाम देवै हरे आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अंत तरंगा, जप जप नाम।

मैं प्रेम रस पाया, दुर्जन मारे वैरी संघारे, सतगुर मोको हर नाम देवाया रहाओ। प्रथमे त्यागी हम मैं प्रीत, द्वितीया त्यागी लोगारीत, त्रै गुण त्याग दुर्जन मीत समाने, तुरिया गुण मिल साध पिछाने, सहज गुफा मैं

दुख रोग भय गतंते मन निर्मल हर हर गुण गाए भय आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुरसब दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर सीतर मिलियो सह सुभाए रहाओ तावत रहे एक एक बुझिया आए बसे अब निचल थाए जगतो दारण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दोख परे मेरे पछ अब पकड़े निश्चित

हर हर राए। नाम तेरा जब जीवै नानक ओत पोत मेरे संग सहाए। आसा महला पंजवा अरड़ावै बिललावै निंदक पार ब्रह्म परमेश्वर बिसरिया अपना कीता पावै निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवै नाले लय सधावै अणहोंदा अजगर भार उठाए। निंदक अग्नि माहे जलावै परमेश्वर कै द्वारै जे होए बतीतै सो नानक आख सुनावै। भगत जना कौसदा आनंद है।

बिगड़ रूप मन में अभमान, सोहनी स्वरूप सुजान विचखन, अत गर्भ मोहे फाकी तू रहाओ, अत सूची तेरी पाक साल, कर इशनान पूजा तिलक लाल, गली गर्भ मुख गोवै ज्ञान, सब बिद खोई लोभ सुवान, कापर पहरे पुगै भोग, आचार करे शोभा मैं लोग, चोवा चंदन सुगंध विस्तार, संगी खोटा क्रोध चंडाल, अवर जोन

वे मो ताजा वे प्रवाहो, नानक दास कहो गुरवाहो, आसा महला पंजवा, हर छोड़ होशै रस माता, घर में वस्त बाहर उठ जाता, सुनी ना जाई सच अमृत काथा, रार करत झूठी लग गाथा, रहाओ वजो साहेब का से बिरानी, ऐसे गुनैशा देव प्राणी, तेस्यों लूक जो सद ही संगी, कामना आवे सो फिर मंगी, कहो नानक प्रभ दीन दयाला, ज्यों पावे त्यों कर प्रतपाला, आसा महला पंजवा, जी प्राण तन हर को नाम, इहां उहां उन संग काम, बिन हर नाम अवर सब थोरा, तृप्तिया गावे हर दर्शन मन मोरा, रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल, गावत सुनत कमावत निहाल, चरण कमल स्यों लागो मान, सतगुर तूठे कीनो दान, नानक को गुर दीख्या दीन, प्रभ अबनासी घट घट चीन, आसा महला पंजवा, आनंद बिनोद परे पुर धारिया, अपना कार्य आप सवारिया, पूर समग्री पूरे ठाकर की, भरपुर धार रही सोभ जा की, रहाओ नाम निधान।

एको एक आप एक एक एक है सगला पासारे जप जप होए सगल साध जानो एक नाम ते आए बहुते उधारे गहर गंभीर ब्यंत गुसाई अंत नहीं किश पारा वारे तुमरी कृपा ते गुण गावे नानक त्याए त्याए प्रभ को नमस्कारे आसा महला पंजवा तू बेअंत अवगत या गोचर एहो सब तेरा आकार क्या हम जंत करै चतराई जा सबके तुझे मजार मेरे सतगुर अपने बालक राखो लीला तार देह सुमत सदा गुण गावा मेरे ठाकर अगमे अपार रहाओ जैसे जनन जठर मैं प्राणी ओरेता नाम आधार आनंद करे सास सास सुमार ना पोहै अगनार पर तन पर दारा पर निंदा इनस्यो प्रीत निवार चरण कमल सेवी दे अंतर गुरपूरे कै आधार गृह मंदिर महला जो दिसै ना कोई संगार।

हर आज मिलक जोबन ग्रह शोभा, रूपवंत जोवानी बहुत दर्ब हस्ती अर घोड़े लाल लाख बयानी। आगे दरगह कामना आवै छोड़ चला अभिमानी, काहे एक बिना चित लाई है, उठत बैठत सोवत जागत सदा सदा हर तिहाई है रहाओ। महाबचित्र सुंदर

छोड़ चलिया एक दिहाड़े, कर्म धर्म जुगत बहु करता, करने हार ना जाने, उपदेश करे आप ना कमावे, तत् शब्द ना पछाने। नांगा आयो नांगो जासी, जो हस्ती खा किशाने, संत सज्जन सुनो सामीता, झूठा हो पासारा। मेरी मेरी का कर डूबे, खप खप मोए गवारा, गुरमिल नानक नाम ते आया, साच नाम निस्तारा। राग आसा कर पंजवा महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। ब्रह्म सोई सगल जगत तंद अंध, को जागे हर जन, महामोहनी मगन प्रे प्रीत प्राण, को त्यागे विरला। चरण कमलया नूप हर संत मंत, को लागे साधु, नानक साधु संग, जागे ज्ञान रंग, वडभागे कृपा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राग आसा कर छेवा महला पंजवा, जो तुद भावे सो परवाना, सुख सहज मन सोई, करण कारण समरथ अपारा, अवर नाही रे कोई। तेरे जन रसक रसक गुण गावे, मसलत मता स्याण पजन की, जो तू करै करावे रहाओ। अमृत नाम तुम्हारा प्यारे, साध संग रस पाया, तृप्त या गाए सही जन पूरे, सुख निदान हर गाया। जा कौ टेक तुम्हारी स्वामी, ता कौ नाही चिंता, जा कौ दया तुम्हारी होई, से सह पले भगवंता। परम मोह त्रोह सब निकसे, जब का दर्शन पाया, वर्तन नाम नानक सच कीना, हर नामे रंग समाया। आसा महला पंजवा, जन्म जन्म की मल तोवे पराई, अपना कीता पावे, इहां सुख नहीं दरगै ढोई, जमपुर जाए पचावे। निंदक अहला जन्म गवाया, पहुंचना साके काहू बात, आगे ठौर ना पाया रहाओ। किरत पया निंदक बपरे का, क्या ओ करे बिचारा, तहा बिकूता जय कोई ना रखे, ओ किस पै करे पुकारा। निंदक की गत कतहु नाही, खसमे एवे भाणा, जो जो निंद करे संतन की, त्यों संतन सुख माना। संता टेक तुम्हारी स्वामी, तू संतन का सहाई, कहो नानक संत हर राखे, निंदक दिए रोड़ाई। आसा महला पंजवा, बाहर तोए अंतर मन मैला, दोए ठौरे अपने खोए, इहां काम क्रोध मोहे व्यापिया, आगे मुसमुस रोए। गोविंद भजन की मत है होरा, वर्मी मारी साफ न मरे, नाम न सुनई डोरा रहाओ। माया की किरत छोड़ गवाई, भक्ति सार ना जाने, वेद शास्त्र को तरकन लागा, तत् योग ना पिछाने। उगर गया जैसा खोटा टबुआ, नदर सराफा आया, अंतर जामी सब किस जाने, उसते कहां छिपाया। कूड़ कपट बंच ने मुनियादा, बिनस गया तत्काले, सत सत सत नानक कहया, अपना हृदय देख समाले। आसा महला पंजवा, उद्यम करत हो वै मन निर्मल, नाचै आप निवारे, पंच जनाले वसगत रख, मन में एक अंकारे। तेरा जन निरत करे गुण गावै, रबाब पखावज ताल घुंगरू, अनहद शब्द बजावै रहाओ। प्रथमे मन परबोधै अपना, पाछै अवर रिझावै, राम नाम जप हृदय जापै, मुखते सगल सुनावै। कर संग साधु चरण पखारै, संत तूर तन लावै, मंतन अर्प तरे गुरिया गै, सत पदार्थ पावै। जो जो सुने पेखे लाए सरदा, ताका जन्म मरण दुख भागै, ऐसी निरत नरक निवार।

मैं सब जग बौराया ना मिले सुख पाइया क्या कहिए किस आख सुनाइए जे कहना सो प्रभ जी पास सब कुछ कीता तेरा वरत है सदा सदा तेरी आस जे देह वड़ियाई ता तेरी वड़ियाई ए त्यो तुझे ते आओ नानके प्रभ सदा सुखदाते मैं तान तेरा एक नाओ आसा महला पंजवा अमृत नाम थुमारा ठाकर एहो महाराज जने पियो जन्म जन्म चूके पह पारे दुर्त बनास्यो परम बियो दर्शन पेखत मैं जियो सुनकर बचन तुम्हारे सतगुर मन तन मेरा ठार थियो रहाओ तुमरी कृपा ते पयो साध संग एहो काज तुम आप कियो दिड़ कर चरण गहे प्रभ तुमरे सहजे बिखिया पही खियो सुख निदान नाम प्रभ तुमरा एहो बनासी मंत्र लियो कर कृपा मोहे सतगुर दीना ताप संताप मेरा बैर गियो धन सो मानस देही पाई जित प्रभ अपने मिल लियो धन सो कलयुग साध संकीर्तन गाई है नानक नाम आधार हीओ आसा महला पंजवा आगे ही ते सब किश हुआ अवर के जाने ज्ञाना भूल चूके अपना बारक बख्शिया पार ब्रह्म भगवाना सतगुर मेरा सदा दयाला मोहे दीन कौ राख लिया काटिया रोग महा सुख पाया हरे अमृत मुख नाम दिया रहाओ अनक पाप मेरे पर हरिया बंधन काटे मुक्त पहे अंधकूप महाकोरते बहा पकर गुर काढ़ लिए निरपौ पय सगल पौ मिटिया राखे राखण हारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार्य सगल सवारे गुण निदान साहिब मन मेला शरण पया नानक सोहेला आसा महला पंजवा तू विसरै ता सब को लागू चीत आवै ता सेवा अवरना को दूजा सूजै साचे अलख्या पेवा चीत आवै ता सदा दयाला लोगन क्या विचारे बुरा भला को किसनो कहिए सगले जीत तुम्हारे रहाओ तेरी टेक तेरा आधारा हाथ दे तू रखै जिस जानी ऊपर तेरी कृपा तिस को बेपना को भख है ओहो सुख ओहा वड़ियाई जो प्रभ जी मन भाणी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंगमाणी।

तुदया गए अरदास हमारी, जियो पिंड सब तेरा, कहो नानक सब तेरी वड्याई, कोई ना हो ना जाने मेरा। आसा महला पंजवा, कर कृपा प्रभ अंतर जामी, साह संग हर पाई है, खोल के वार दिखा ले दर्शन, पुनरप जन्म न आई है। मिलो प्रीतम स्वामी अपने, सगले दुख हराओ रे, पार ब्रह्म जिन हृदय अराध्या, ता कै संग तरओ रे रहाओ। महा उद्यान पावक सागर पहे, हरक सोग मैं बसना, सतगुर पेट भया मन निर्मल, जप अमृत हर रसना, तन तन थाप की ओ सब अपना, कोमल बंधन बांधिया, गुर प्रसाद पहे जन्म उते, हर हर नाम आराध्या। राख लिए प्रभ राख नहारे, जो प्रभ अपने पाने, जियो पिंड सब तुमरा दाते, नानक सद गुरबाणे।

हरी रहाओ काम क्रोध अहंकार गाखरो संयम कौन छुट्यो री। सुर नर देव असुर त्रै गुनिया सगलो पवन लुट्यो री। दावा यगन बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्ण ना साका ताकि उपमा जात ना कहे ओरी। काजर कोठ में पई नकारी निर्मल वर्ण बनेओरी। महामंत्र गुरु हृदय बसेओ अचरज नाम सुनेओरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भक्त नानक सुख पाया साधु संग समाई। एको ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा कर सतवा महला पंजवा। लाल चोलना तैं तन सोहया सुरजन पानी ता मन मोहया। कमन बनीरी तेरी लाली कमन रंग तू पई गुलाली। रहाओ तुम ही सुंदर तुम्हें सुहाग तुम कर लालन तुम कर भाग। तू सतवंती तू प्रधान तू प्रीतम पानी तू ही सुर ज्ञान। प्रीतम पानी ता रंग गुलाल कहो नानक शुभ दृष्ट निहाल। सुन री सखी ए हमरी काल प्रभ आप सिंगार सवारण हार। रहाओ दूजा आसा महला पंजवा। दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोय मिली हदूर। चुका निहोरा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी। रहाओ निकट यान प्रे से तरी कान कड़न ते छूट परी। मंदिर मेरा सब दो जारा आनंद बिनोदी खसम हमारा। मस्तक भाग मैं पिर घर आया थिर सुहाग नानक जन पाया। आसा महला पंजवा। साच नाम मेरा मन लागा लोगन स्यो मेरा ठाठा बागा। बाहर सूत सगल स्यो मौला अलिप्त रहो जैसे जल मैं कौला। रहाओ मुख की बात सगल स्यो करता जी संग प्रभ अपना धरता। दीस आवत है बहुत पीहाला सगल चरण की हो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया अंतर बाहर एक दिखाया। आसा महला पंजवा। पावत रलिया जोबन बलिया नाम बिना माटी संगरलिया। कान कुंडलिया बस्त्र उडलिया से सुखलिया मन गर्बलिया। रहाओ तले कुंचरिया सिर कनक छतरिया हर भगत बनाले तरन गडलिया। रूप सुंदरिया अनक स्त्रिया हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया। माया शलिया बिकार बिखलिया सरन नानक प्रपुरख दयालिया। आसा महला पंजवा। एक बगीचा पेड़ घन करिया अमृत नाम तहां मैं फलिया। ऐसा करो विचार ज्ञानी जाते पाइय पद निर्बानी। आस पास बिखुआ के कुंटा बीच अमृत है पाई रे। रहाओ सिंचन हारे एक माली खबर करत है पात पत डाली। सगल बनस्पत यान जड़ाई सगली फूली निफल नाकाई। अमृत फल नाम जिन गुर ते पाया नानक दास धरी तिन माया।

हुकम बूझ रंग रस माने सतगुर सेवा महा निर्वाणे जिन तू जाता सो ग्रस्त उदासी प्रवान नामृता सोई निर्वाण जा को मिलियो नाम निधाना पंडित नानक ताका पुरख जाना आसा।

शास्त्र वेद पाप पुण्य विचार नरक स्वर्ग फिर अवतार ग्रस्त में चिंत उदास अहंकार कर्म करत जी को जंजार प्रभ कृपा ते मन वस आया नानक गुरमुख तरी तिन माया साध संग हर कीर्तन गाई है एहो अस्थान गुरु ते पाई है रहाओ दूजा आसा महला पंजवा घर में सुख बहर फन सुखा हर सिमरत सगल बिना से दुखा सगल सुख जा तू चित आवै सो नाम जपै जो जन तुद पावै रहाओ तन मन शीतल जप नाम तेरा हर हर जपत तह दुख डेरा हुक्म बूझै सोई परवान सास सब जा का निशान गुरपूरै हर नाम दृढ़ाया पणत नानक मेरा मन सुख पाया आसा महला पंजवा जहां पठावो तै तै जाई जो तुम देहो सोई सुख पाई सदा चेरे गोविंद गुसाई तुमरी कृपा ते तृप्त अगाई रहाओ तुमरा दिया पैनो खाई तो प्रसाद प्रभ सुखी बलाई मन तन अंतर तुझे ते आई।

मूर्ख मुगध अज्ञान अविचारी, नाम तेरे की आसमन धारी। जप तप संजम कर्म ना साधा, नाम प्रभु का मन अरादा। किशु ना जाना मत मेरी थोरी, बिनमत नानक ओट प्रभ तोरी। आसा महला पंजवां, हर हर अखर।

हर माला वर्यंतर धारै, जन्म मरण का दुख निवारै, हृदय संभालै मुख हर हर बोलै, सो जन इत उत कतै न डोलै, कहो नानक जो राचै नाए, हर माला तां कै संग जाए, आसा महला पंजवा, जिसका सब किश तिसका होए, तिस जन लेपना व्यापै कोए, हर का सेवक सद ही मुक्ता, जोगश करै सोई पल जन कै, अत निर्मल दास की जुगता रहाओ, सगल त्याग हर सरणी आया, तिस जन कहां व्यापै माया, नाम निदान जाके मन माहे, तिसको चिंता सुपने नाहें,

प्रभ की प्रीत सदशोभावंत, प्रभ की प्रीत सब मिटी है चिंत, प्रभ की प्रीत एहो भव जल तरै, प्रभ की प्रीत जमते नहीं डरै, प्रभ की प्रीत सगलो उधार है, प्रभ की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस साध संग कूले, कहो नानक तेरे कुर्बान, संत ओट प्रभ तेरा तान, आसा महला पंजवा, पूपत होए कै राजक माया, कर कर अनर्थ बिहाजी माया, संचत संचत थैली कीनी, प्रभ उसते डार अवर कौदीनी, काच दगरिया

संगा लश्कर जोड़े किया संबाहा निक्षा फूकता हुए गयो सुहा ऊंचे मंदिर महल अर रानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी वड परवार पूत यार तिया मोहे पचे पच अंधा मुआ जिने उपाहा तिने बिनाहा रंग रसा जैसे सुपनाहा सोई मुक्ता तिस राजमाल नानक दास जिस खसम दयाल आसा महला पंजवा इनस्यो प्रीत करी कनेरी जो मिली है तो वदै वधेरी गल चमड़ी जो छोड़ै नाही लाग छटो सतगुर की पाई जग मोहनी हम त्याग गवाई निर्गुण मिलियो जी वधाई रहाओ ऐसी सुंदर मन कौ मोह बाट काट करे बन बन जो है मन तन लागे हुए कै मीठी गुरप्रसाद मैं खोटी डीठी अगर उसके वड्डे ठगाऊ छोड़ै नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन पया आनंद पहु चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने प्रभ का किया मीठा माने एक नाम संतन आधार होए रहे सब की पगशार।

वर्तन जाकै केवल नाम, अनद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाकै एक समान, प्रभ अपने बिने अवर ना जानै। कोट कोट अग काटन हारा, दुख दूर करन जी के दातारा। सूर बीर बचन के बली, कौला बपरी संती शली। ताका संग बांछै सुरदेव, अमोग दर्स सफल जां की सेव। कर जोड़ नानक करे अरदास, मोहे संत है टहल दीजै गुणतास। आसा महला पंजवां, सगल सुख जप एकै नाम, सगल धर्म हर के गुणगाम। महापवित्र साधका संग, जिस पेड़त लागे प्रभ रंग। गुर प्रसाद ओय आनंद पावे, जिस सिमरत मन होए परगासा। ताकि गत में तो कहन ना जावे, रहाओ वर्त नेम मज्जन तिस पूजा। वेद पुराण तिन सिमरत सुनीजा। महापुनीत जाका निर्मल थान, साध संगत जाकै हर हर नाम। प्रगट्यो सो जन सगले भवन, पतत पुनीत ताकि पगरेन। जाको पेट्यो हर हर राय, ताकि गत में तो कथन ना जाए। आठ पहर कर जोड़ते आवाओ, उन साधा का दर्शन पावाओ। मोहे गरीब को लेहोर लाए, नानक आए पै सरनाए। आसा महला पंजवां, आठ पहर उदके सुनानी। सद ही भोग लगाए सुगयानी, बिरथा काहू छोड़ै नाही। बहर बहर तिस लागै पाई, साल ग्राम हम।

का सदा बैकुंठ, जहां का चवर सब ऊपर झूलै, तां का धूप सदा प्रफुलै। काट काट संपट है रे जाका, अपग सभा संग है साधा। आरती कीर्तन सदा आनंद, महिमा सुंदर सदा बेअंत। जिसे प्राप्त तिस ही लहना, संत चरण ओ आयो सरना। हाथ चढ़ो हर साल गिराम, कहो नानक गुर की नोदान। आसा महला पंजवा पंचपदा, जे पेंड लूटी पनिहारी, सो मार्ग संतन दूरारी। सतगुर पूरे साच कहया, नाम तेरे की मुक्ते बिथी। जम का मार्ग दूर रहया रहाओ, जह लालच जागाती काट। दूर रही ओ जनते बाट, जह आवटे बहुत घन साथ। पार ब्रह्म के संगी साध, चित्र गुप्त सब लिखते लिखा। भगत जना कौ दृष्ट ना पेखा, कौ नानक जे सतगुर पूरा। वाजे ता कै अरहद तूरा, आसा महला पंजवा दो पदा। साधु संग सिखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम। बुझ गई तृष्णा हर जसे अगाने, जब जब जीवा सारंग पाने। करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया। मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवेहर भरे भंडार। तोट ना आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जन कोए। नानक ताकी परम गत होए, आसा कर सतवा महला पंजवा। हर का नाम हृदय नित ध्याई, संगी साथी सगल तराई। गुर मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा समाले रहाओ। तेरा किया मीठा लागै, हर नाम पदार्थ नानक मांगै। आसा महला पंजवा, साधु संगत तरिया संसार। हर का नाम मन आधार, चरण कमल गुरदेव प्यारे। पूजै संत हर प्रीत प्यारे रहाओ, जा कै मस्तक लिखिया भाग। कहो नानक ता का थिर सोहाग, आसा महला पंजवा। मीठी आग्या पिर की लागी, सौकन कर की कंत त्यागी। प्रे सोहागन सिंगार करी, मन मेरे की तपत हरी। पलो पयो प्रे कहया मानिया, सुख सहज इस घर का जानिया रहाओ। हौ बंदी प्रे खिजमतदार, ओह अविनाशी अगमे अपार। ले पखा प्रे चलो पाए, पा गए पंच दूत लावे। ना मैं कुल ना सोभावंत, क्या जाना क्यों पानी कंत। मोहे अनाथ गरीब ने मानी, कंत पकर हम कीनी रानी। जब मुख प्रीतम साजन लागा, सुख सहज मेरा तन सोहागा। कहो नानक मोरी पूर्ण आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा।

उन सब जग खाया हम गुर राखे मेरे भाई रहाओ। पाए ठगौली सब जग जोहया ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया गुरमुख नाम लगे से सोहया। वर्त नेम कर थाके पुनः चरना तट तीर्थ पवे सब तरना से उबरे जे सतगुर की सरना। माया मोहे सबो जग बादा हमें पचाए मनमुख मुँह राखा गुरु नानक बहां पक।

संत त्रिपतासे हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रिजाए रहाओ। संग होवत कौ जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किश दिया तिस चितवत नाहे महा बिख्या मैं दिन रहन जाहे। कहो नानक प्रभ सिमरो एक गत पाईए गुरपूरे टेक आसा महला पंजवा नाम जपत मन तन सब हरिया कल मल दोख सगल पर हरिया सोई दिवस भला मेरे पाई हर गुण गाए परम गत पाई रहाओ। सा जन के पूजे पैर मिटे उपद्रय मन ते बैर गुर पूरे मिल झगर चुकाया पंच दूत सब वसगत आया जिस मन वसया हर का नाम नानक ते सुपर कुर्बान आसा महला पंजवा गाव लेहे तू गावन हारे जी पिंड के प्राण आधारे जा की सेवा सर्व सुख पावे अवर काहू पह भौ ना जावे सदा आनंद आनंदी साहेब गुण निधान नित नित जापिए बलिहारी ते संत प्यारे जिस प्रसाद ब्रह्मन वासिय रहाओ। जा का दान निखूटे नाही भली भांत सब सहे समाही जा की बख्शना मेटे कोई मनवा साई है साचा सोई सगल समग्री ग्रह जा के पूर्ण प्रभ के सेवक दुख ना चूर्ण ओट गही निरपौ पद पाई है सास सास सो गुंडित गई है दूर ना होई कतहू जाई है नजर करे ता हर हर पाई है अरदास करी पूरे गुरपास नानक मंगे हर तन रास आसा महला पंजवा प्रथमे मिटिया तन का दुख मन सल का होवा सुख कर कृपा गुर दीनो नाओ बल बल ते सतगुर को जाओ। गुर पूरा पायो मेरे भाई रोग सोग सब दुख बिनासे सतगुर की शरणाई रहाओ। गुर के चरण हृदय वसाए मन चिंतत सगले फल पाए अग्न बुझी।

मान बंधन काटो सेवक कर, बंधन काटो सेवक कर राखे, अमृत बानी रसना चाखे। वडे भाग पूज गुर चरना, सगल त्याग पाई प्रभ सरना। गुर नानक जा को भया दयाला, सोजन हो वासदा निहाला। आसा महला पंजवा, सतगुर साचे दिया भेज, चिर जीवन उपजया संजोग। उदरै माहे आए किया निवास, माता कै मन बहुत बिगास। जम्या पूत भगत गोविंद का, प्रगटिया सब मैं लिखिया तुर का रहाओ। दसी मासी हुकुम बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया। गुरबाणी सखी आनंद गावै, साचे साहेब कै मन भावै। वदी वेल बहु पीढ़ी चाली, धर्म कला हर बंद बहाली। मन चिंदिया सतगुरु देवाया, पय अचिंत एक लिव लाया। ज्यों बालक पिता ऊपर करे बहुमान, बुलाया बोलै गुर कै पाण। गुज्जी छन्नी नाही बात, गुरु नानक तुठा कीनी दात। आसा महला पंजवा, गुर पूरे राख्या दे हाथ, प्रगट भया जन का प्रताप। गुर गुर जपी गुरु गुर त्याई, जी की अरदास गुरु पह पाई रहाओ। शरण परे साचे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक सेव। जियो पिंड जोबन राखे प्राण, कहो नानक गुर कौ कुरबान। आसा घर अठवां।

चतराई सियाण पाक तै कामना आई है, तुठा साहेब जो देवै सोई सुख पाई है। जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा, जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंदा। आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया, हर जेवड़ ना कोई गुर तुठे ते पाई है सा साहब सोई। बलिहारी गुरे अपने सा सतकुरबाना, नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो की जैदाना। रहाओ पागठ सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर, सो छूटे महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर। गुर की महिमा क्या कहा, गुर विवेक सतसार ओह आद जुगादी जुगह जुग पूरा परमेसर। नाम ते आवो सद सदा, हर हर मन रंगे जियो प्राण धन गुरु है नानक कै संगे। आसा महला पंजवा साई अलख्या पार पोरी मन वसै, दुख दर्द रोग माए मैंडा हब नसै। हाउ वन्या कुर्बान साई अपने, होवे अंधकणा मन तन जापने। रहाओ बिंदक गाल सुनी सच्चे तिस धनी, सुखी हूं सुख पाए माए ना कीम गणी। नैन पसंदो सोए पेख मुस्ताक पई, मैं निर्गुण मेरी माए आप लड़ लाए लई। बेदक तेव संसार

तेरी टेक गोविंद गोपाल दयाल प्रभ, तू सबना के नाथ तेरी सृष्ट सब रहाओ। सदा सहाई संत पेख सदा हजूर, नाम बिहुनड़िया सिमरन में सूर विसूर। दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण, विसरिया जिन्ना नाम तिनाड़ा हाल कौन। जैसे पास

जित जित लाए तित तित लागे क्या को करे परानी बख्श लै हो पार ब्रह्म सुमामी नानक सद कुरबानी आसा महला पंजवां अपने सेवक की आपे राखै आपे नाम जपावै जह जह काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावै सेवक कहो निकटी होए दिखावै जो जो कहे ठाकर पह सेवक तत्काल होए आवै रहाओ ते सेवक कह हो बलिहारी जो अपने प्रभु पावै तिसकी सोए सुनी मन हरिया तिस नानक परसने आवै आसा कर ग्यारवां महला पंजवां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद नटुआ पेख दिखावै बहुबिद जैसा है ओह तै सारे अनक जोन प्रम्यो परम पीतर सुखै नाही परवे सारे साजन संत हमारे मीता बिन हर हरिया नी तारे साध संग मिल हर गुण गाए ओह जन्म पदार्थ जीता रे रहाओ

राम रंग गुण गोविंद गावो, आन दिनो प्रभ त्यावो, परम पीत जीत मिटावो, निज नाम नानक मोरै आसा महला पंजवां। काम क्रोध लोभ त्याग, मन सिमर गोविंद नाम, हर भजन सफल काम, रहाओ तज मान मोह विकार मिथिया, जप राम राम राम, मन संतना कै चरण लाग, प्रभ गोपाल दीन दयाल, पतत पावन पार ब्रह्म, हर चरण सिमर जाग, कर भगत नानक पूर्ण भाग, आसा महला पंजवां। हरख सोग बैराग आनंदी, खेल दी दिखायो रहाओ, खिनहू पै निरपै खिनहू, खिनहू उठतायो, खिनहू रस भोगन खिनहू, खिनहू तजायो, खिनहू जोग ता बौ पूजा, खिनहू परमायो, खिनहू कृपा साधु संग, नानक हर रंग लायो। राग आसा महला पंजवां, कर सतारवां, आसावरी एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गोबिंद गोबिंद कर हां, हर हर मन प्यार हां, गुर कया सोचित धर हां, अनस्यो तोर फेर हां, ऐसे लालन पायो री सखी रहाओ, पंकज मोसर हां, पग नहीं चले हर हां, गहड्यो मूड़ नर हां, अन ना उपाव कर हां, तव निकसै सरन पैरी सखी, थिर थिर चित थिर हां, बन ग्रिव समसर हां, अंतर एक पिर हां, बाहर अनेक तर हां, राजन योग कर हां, कहो नानक लोग या लोगीरी सखी, आसावरी महला पंजवां। मनसा एक मान हां, गुरस्यो नेत ध्यान हां, दृढ़ संत मंत ज्ञान हां, सेवा गुरचरान हां, तो मिलिया गुर कृपान मेरे।

तौ चूकी सगल कान लैनो जस मथान हा पै पावक पार प्राण हा निज कर तसै थान हा हर रस रसै मान हा लाथी तिस पुखान हा नानक सह समायो रे मना आसावरी महला पंजवा हर हर हर गुनी हा जपिया सह तुनी हा साधु रसन पनी हा शूटन बिद सुनी हा पाइये वड पुनी मेरे मना रहाओ खोज जनमुनि हा सर्व का प्रभ धनी हा दुलभ कल दुनी हा दुख बिनासनी हा प्रपूर्ण आसनी मेरे मना मन सो सेविय हा अलख अपेविय हा ता स्यो प्रीत कर हा बिनस ना जाए मर हा गुरते जाने हा नानक मन मान्या मेरे मना आसावरी महला पंजवा एका ओट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आग्या सत सहो हां मने निदान लहो हां सुख समाइये मेरे मना रहाओ जीवत जो मरे हां दुत्तर सो तरे हां सब की रेन होए हां निरपो कहो सोए हां मिटे अंदेसिया हां संत उपदेसिया मेरे मना जिस जन नाम सुख हां तिस निकट ना कदे दुख हां जो हर हर जस सुने हां सबको तिस मन्ने हां सफल सो आया हां नानक प्रपाया मेरे मना आसावरी महला पंजवा मिल हर जस गाइये हां परम पद पाइये हां वह रस जो बिदे हां ताको सगर सिद्धे हां अन दिन जागया हां नानक वट भागया मेरे मना रहाओ संत भगत होइए हां दुरमत खोइए हां दस रेन होए हां व्यापै दुख ना कोए हां भगतां शरण पर हां जन्म ना कदे मर हां अस्त्र से भय हां हर हर जिन जप लय मेरे मना साजन मीत तू हां नाम दृढ़ाए मुंह हां तिस बिन नाहे कोए हां मने अराध सोए हां निमख ना विसरे हां तिस बिन क्यों सर हां गुर को कुर्बान जाओ हां नानक जपे नाओ मेरे मना आसावरी महला पंजवा कारण करन तू हां अवर न सुजे मुंह हां करे सो होइए हां सह सुख सोइए हां धीरज मन पए हां प्रभ कै दर पए मेरे मना रहाओ साधु संग में हां पूर्ण संज में हां जब ते छुटे आप हां तब ते मिटे ताप हां कृपा धारिया हां पत रख बनवारिया मेरे मना एहो सुख जानिए हां हर करे सो मानिया हां मंदा नाहे कोए हां संत की रेन होए हां आपे जिस रखे हां हर अमृत सो चखे मेरे मना जिसका नाहे कोए हां तिसका प्रभु सोए हां अंतर्गत बुझे हां सबके सब के तिस सुझे हां पतत उधार ले हो हां नानक अरदास एहो मेरे मना आसावरी महला पंजवा एक तुका ओए परदेसिया हां।

गुरमुख राम नाम तृप्ता से खोइत पावो से हरे रहाओ। काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा। अंतर नावन साज पछाण अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाण। निरंकार मैं आकार समावे अगल कला सा साई टकावे सो नर गर्भ जो न आवे। जहां नाम मिले ते जाओ गुर प्रसादी कर्म कमाओ नामे राता हर गुण गाओ। गुर सेवा ते आप शाता अमृत नाम वस्या सुखदाता अंदर बाणी नामे राता। मेरा प्रभ लाए ता को लागे हो मैं मारे सब दे जागे एथे उथे सदा सुख आगे। मन चंचल बिद नाही जाने मनमुख महला शब्द ना पछाण। गुरमुख निर्मल नाम वखाणे हर जियो आगे करी अरदास साधु जन संगत होए निवास। किल विख दो काटे हर नाम परगास कर विचार आचार पराता सतगुर बचनी एको जाता नानक राम नाम अनुराता। आसा महला पहला मन मैंगल सक देवाना बन खंड माया मुहे हैराना। ए त्युत जाहे काल के चापे गुरमुख उजल है घर आपे बिन गुर शब्द मन नहीं ठौरा। सिमराओ राम नाम यत निर्मल अवर त्यागो हम मैं कौरा रहाओ। एहो मन मुग्द कहो क्यों रहसी बिन समझे जमका दुख सहसी आपे बक्से सतगुर मिले काल कंटक मारे सच पेले। एहो मन कर्मा एहो मन धर्मा एहो मन पैता ते जन्मा साक्त लोभी एहो मन मूड़ा गुरमुख नाम जपै मन रूड़ा। गुरमुख मन अस्थाने सोई गुरमुख त्रिभवन सोजी होई एहो मन जोगी भोगी तपता पै गुरमुख चीन्या हर प्रव्या पै। मन बैरागी हो मैं त्यागी कटकट मनसा दुबदा लागी राम रसायन गुरमुख चाख है दर कर महली हर पत रख है। एहो मन राजा सूर संग्राम एहो मन निरपो गुरमुख नाम मारे पंच अपने वस किए हो मैं ग्रास एक तथाए किए। गुरमुख राग स्वाद्यन त्यागे गुरमुख एहो मन भक्ति जागे अनहद सुन मान्या शब्द विचारी आत्म चीन पै निरंकारी। एहो मन निर्मल दर कर सोई गुरमुख भगत पाओ तन होई अहनिस हरजस गुर प्रसाद घड़ घड़ सो प्रभ आज जुगाद। राम रसायन एहो मन माता सर्व रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के दासन दासा। आसा महला पहला तन बिनसै तन का को कहियै बिन गुर राम नाम कतल हैयै। राम नाम तन संग सखाई अहनस निर्मल हर लिवलाई। राम नाम बिन कवन हमारा सुख दुख समकर नाम ना छोड़ो आपे बख्श मिलावन हारा रहाओ। कनक कामनी हेत गवारा दुबदा लागे नाम विसारा जिस तू बख्शे नाम जपाए दूत ना लाग सके गुण गाए। हर गुरदाता राम गोपाला जो पावे त्यों रख दयाला गुरमुख राम मेरा मन पाया रोग मिटे दुख साग रहाया। अवर ना औखद तंत ना मंता हर हर सिमरन किल विख हंता तू आप लावे नाम विसार तू आपे राखे कृपा तार। रोग परम भेद मन दूजा गुर बिन परम जपै जप दूजा आद पुरख गुर दर्शना देखै विण गुर शब्द जन्म के लिखै देख अचरज रहे बिस्माद घट घट सुर नर सहि समाद। भरपुर तार रहे मन माही तुम संसार अवर को नाही जाकी भक्त हित मुख नाम संत भगत की संगत राम। बंधन तोरे सहि त्यान छूटै गुरमुखार गुर ज्ञान ना जम दूत दुख तिस लागे जो जन राम नाम लिव जागे। भगत वचल भगता हर संग नानक मुक्त पय हर रंग आसा महला पहला एक तुगी। गुर सेवे सो ठाकर जाने दुख मिटे सच शब्द पछाने। राम जपो मेरी सखी सखैनी सतगुर सेव देखो प्रभ नैनी रहाओ। बंधन मात पिता संसार बंधन सुत कन्या अरनार
बंधन कर्म धर्म हो किया। बंधन पोत कलत मन बिया, बंधन किरखी करे किरसान, हो मैं डन सह राजा मंगे दान। बंधन सौदा अण विचारी, तिप्त नाही माया मोह पसारी, बंधन शासन चैतन जाए, बिन हर भगत न पवी थाए। बंधन भेद बाद अहंकार, बंधन बिन सह मोह विकार, नानक राम नाम शरण आई, सतगुरु राखे बंध ना पाई। राग आसा महला पहला, अष्टपदियां करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। जिन सिर सोहन पट्टियां, मांगी पाए संदूर, से सरकाती मुनियां, गल विच आवै धूड़, महला अंदर होंदियां, हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश, आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर देखै वेस रहाओ। जदों सियां वी आहियां, लाड़े सोहन पास, ही डोली चढ़ आईयां, दंद खंड कीते रास, उपरो पानी वारी है, चले चिमकन पास। एक लख लहन बैठिया, लख लहन खड़िया, गरी शुहारे खांदियां, मन से जड़िया, तिन गल सिलका पाईया, टुटन मोसरिया, तन जो बंदो वैरी होए, जिनी रखे रंग लाए। दूता नो फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस पावे दे वड्याई, जे पावे दे सजाए, अगों दे जे चेती है, तां कायत मिलै सजाए, साहा सुरत सवाई गवाईया, रंग तमाशा चाहे। बाप रवाणी फिर गई, कोयर ना रोटी खाए, इक ना वक्त खुवाई है, इक ना पूजा जाए, चौके बिन हिंदवाणिया, क्यों टिके कड़े नाए। राम न कबहू चेते ओ, हुण कहण ना मिले खुदाए, एक घर आवै अपने, एक मिल मिल पुछै सुख, एक ना एहो लिखिया बैबै रोवै दुख। जो तिस पावै सोथिया, नानक क्या मानुख, आसा महला पहला, कहां सो खेल तबेला कोड़े, कहां पेरी सैनाई, कहां सो तेग बंद गा ढेरड़, कहां सो लाल कवाई, कहां सो आरसिया मो बंके, एथे दिसै नाही। एहो जग तेरा तू गोसाई, ए कड़ी मैं थापो थापे, जर वंड देवे पाई रहाओ। कहां सो घरदार मंड मैला, कहां सो बंक सराई, कहां सो सेज सुखाली कामण, जिस वेख नींद ना पाई, कहां सो पान तंबोली हरमा, होइया शाही माई। इस जर कारण कणी विगुती, इन जर कणी खुवाई, पापा बाजो होवे नाही, मुया साथ ना जाई। जिसनो आप खुवाए करता, खुसले चंग्याई, कोटी हूं पीर वर्ज रहाए, जा मीर सुनिया ताया, थान मुकाम जले बिज मंदर, मुछ मुछ कोयर रुलाया। कोई मुगल ना होवा अंधा, किन ना परचा लाया, मुगल पठाना पई लड़ाई, रण में तेग बगाई। ओनी तुपकतान चलाई, ओनी हस चढ़ाई, जिनकी चीरी दरगह फाटी, तिना मरना पाई। एक हिंदवाणी अवर तुरकाणी, पटियाणी ठकराणी, एक ना पेरन सिर खुर पाटे, एक ना वस मसाणी। जिनके बंके करी ना आया, तिन क्यों रैण विहानी, आपे करे कराए करता, किसनों आख सुनाई है, दुख सुख तेरे पाना होवे, किसते जाय रुवाई है। हुक्मी हुक्म चलाए विकसै, नानक लिखिया पाईए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आसा काफी महला पहला, कर अठवां अष्टपदिया, जैसे गोयल गोयली तैसे संसारा, कूड़ कमावे आदमी बंद है कर बारा। जागो जागो सूते हो, चले अवन जारा रहाओ, नीत नीत कर बांधी है, जे रहना होई, पिंड पवै जियो चल सी, जे जाने कोई। ओही ओही क्या करो, है होसी सोई, तुम रोवोगे ओसनो, तुम कहो कौन रोई। धंधा पिटो पाई हो, तुम कूड़ कमावो, ओहो ना सुनई कत ही, तुम लोग सुनावो। जिसते सुता नानका जागाए सोई, जे कर बुझे अपना, तानी दना होई,
जे चलदा लै चलिया के संपै नाले ता तन संचो देख कै बूझो विचारे। वणज करो मकसूद लै हो मत पछो तावो औगुण छोड़ो गुण करहो ऐसे तत् परावो। धर्म भूम सत बीज कर वैसी किरस कमावो तावा पारी जानियो लाह लै जावो। कर्म होवै सतगुर मिलै बूझै बिचारा नाम वखाणे सुने नाम नामे ब्योहारा। ज्यो लाहा तोटा तिवै वाट चलदी आई ज्योत पावै नानका साई वड़ियाई। आसा महला पहला। चारे कुंडा टूंडिया को निमी मेंडा जे तुद पावै साहेबा तू मैं हूं तेंडा। दर बीबा मैं नीम को कह करी सलाम हिको मेंडा तू तनी साचा मुख नाम रहाओ। सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मांगे रिद सिद्ध मैं एक नाम न विसरै साचे गुरबुद्ध। जोगी पोगी कपड़ी क्या पवै दसंतर गुर का शब्द नाची नहीं तत्सार निरंतर। पंडित पांदे जो इसी नित पड़े पुराना यंत्र वसना जाननी कड़ ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन में तप करै नित तीर्थ वासा आप न चीन तामसी कहे पय उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जति कहावै बिन गुर शब्द ना छूट ही परम आवै जावै। एक गिरही सेवक साधका गुरमती लागे नामदान इसनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर कर जानिए सो जाए सजाणे नानक नाम न विसरै साचे मन मानै। आसा महला पहला। मनसा मने समाए ले पहो जल सज तरना या जुगा दयाल तू ठाकर तेरी सरना। तू दा तो हम जाचका हर दर्शन दी जाए गुरमुख नाम ते आई है मन मंदिर पीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़ी है तो साच पछाणे गुर कै शब्द समाई है परमार्थ जाने। एहो मन राजा लोभिया लुभतो लोभाई गुरमुख लोभ निवारी हर सिंह बने आई। कलर खेती बीजिया क्यों लाहा पावै मन मुख सच ना पीजई कूड़ कूड़ गड़ावै। लालच छोड़ो अंधे हो लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हो मैं बिखमारी। दुबदा छोड़ कुवाटड़ी मूसोगे भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई। मन मुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जल मैं केता राखिए अब अंतर सूका। हर का नाम निदान है पूरे गुरदिया नानक नाम न विसरै मथे अमृत पिया। आसा महला पहला। चले चरण हार वाट फटाया तंद पिटे संसार सच ना पाया। क्या पवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जे अपने कर आया रहाओ। सच मिलै सचियार कूड़ ना पाई है सचे सोच तलाए बहुन ना आई है। मोया कहो क्या रोवो रोए ना जान हूं रोवो सच सलाए हुक्म पछाण हूं। हुक्मी वजो लिखाए आया जानिए लाहा पल्लै पाए हुक्म सियाणिए। हुक्मी पैंदा जाए दरगह पाणिए हुक्मे ही सरवार बांदर बाणिए। लाहा सच न्याओ मन वसाइए लिखिया पल्लै पाए गर्व न्याइए। मन मुखिया सिर मार वाद खपाई है ठग मुठी कूड़ियार बन चलाई है। साहेब हृदय वसाय न पछोता वही गुनहा बख्शन हार शब्द कमा वही। नानक मंगे सच गुरमुख कहली है मैं तुझ बिन अवरना कोए नजर निहाली है। आसा महला पहला। क्या जंगल ढूंढी जाए मैं कर बन हरी आवला सच टिके कर आए शब्दो तावला। जै देखा तै सोए अवर ना जानिए गुर की कार कमाए महल पछाणी है। रहाओ आप मिलावै सच ता मन भावई चलै सदर जाए अंक समावई। सच्चा साहिब मन वसै वसिया मन सोई आपे दे वड़ियाईया दे तोट ना होई। अबे तबे की चाकरी क्यों दरगह पावै पत्थर की बेड़ी जे चढ़ाए परनाल बुढ़ावै।
ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੇਚੀ ਐ ਸਿਰ ਦੀ ਜੈ ਨਾਲੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਵਸਤ ਪਛਾਣੀਐ ਆਪਣਾ ਘਰ ਭਾਲੇ, ਜਮਣ ਮਰਨ ਆਖੀ ਐ ਤਿਨ ਕਰਤੈ ਕੀਆ, ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਮਰ ਰਹੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਨਾ ਥੀਆ, ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਤੁਰਕੀ ਫੁਰਮਾਈ, ਜੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਮਿਲੈ ਕਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਰਤਨਾ ਪਾਰਖ ਸੋ ਧਣੀ ਤਿਨ ਕੀਮਤ ਪਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਨ ਵਸੈ ਸੱਚੀ ਵਡਿਆਈ, ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਜਿਨੀ ਨਾ ਵਿਸਾਰਿਆ ਦੂਜੇ ਪਰਮ ਭੁਲਾਈ, ਮੂਲ ਛੋੜ ਡਾਲੀ ਲੱਗੇ ਕਿਆ ਪਾਵੈ ਸ਼ਾਈ।

आपे दान करे किसे आखिया, आपे दे बुझाई, नानक नाम ते आए तू दर सच्चा सोभा पाई। आसा महला तीजा, आपे आप पछाणिया साध मीठा पाई। हर रस चाखिया मुक्त पहे जिन्ना साचो पाई। हर जियो निर्मल निर्मला निर्मल मनवासा, गुरमति सालाही है बिख्या माहे उदासा। रहाओ बिन शब्द आप ना जापई, सब आंधी पाई। गुरमति कर चानना नाम सिखाई, नामे ही नाम वरदे नामे वरतारा। अंतर नाम मुख नाम है नामे शब्द विचारा। नाम सुनिए नाम मनिए नामे वड़ियाई, नाम सलाहे सदा सदा नामे महल पाई। नामे ही कट चानना नामे सोभा पाई, नामे ही सुखी उपजै नामे सरनाई। बिन नामे कोई ना मनिए, मनमुख पत गवाई। जंपर बाधे मारी है बिरथा जन्म गवाई। नामे की सब सेवा करे, गुरमुख नाम बुझाई। नामो ही नाम मनिए नामे वड़ियाई, जिसनो देवे तिस मिले गुरमती नाम बुझाई। नानक सब किश नाम है कै वस है, पूरे पाको पाई। आसा महला तीजा, दोहागणी महल ना पाई नी। ना जान प्रकाश आओ, फिका बोले नानवै दूजे आपाओ सुवाओ। एहो मनुआ क्यों कर वासे आवै, गुरप्रसादी ठाकी है ज्ञान मती करया वै। रहाओ सुहागणी आप सवारियों, लाए प्रेम प्यार। सतगुर कै पाणे चल दिया नामे सह सिंगार। सदा रावै प्रियापना सची से सुभाए, पिर कै प्रेम मोही है मिल प्रीतम सुख पाए। ज्ञान अपार सिंगार है शोभावंती नार, सास बराई सुंदरी पिर कै हित प्यार। सुहागणी विच रंग रखे उन सच्चा लख अपार। सतगुर सेवन अपना सच्चे पाए प्यार, सुहागणी सिंगार बनाया गुणका गलिहार। प्रेम परमल तन लावना अंतर रतन विचार, भगत रते से उत्मा जत पत सब दे होए। बिन नावे सब नी जात है बिष्टा का कीड़ा होए। हाँ हाँ कर दी सब फिर बिन शब्द।

कहो नानको सब दुख मिटे प्रभेटे परमानंद। आसा महला पंजवां बिरहड़े कर चौथा संता की जत एको अंकार सतगुर प्रसाद। पार ब्रह्म प्रभ सिमरिए प्यारे दर्शन को बल जाओ, जिस सिमरत सुख जिस सिमरत दुख भी सरै प्यारे, सो क्यों तजना जाए। एहो तन वेची संत पै प्यारे, प्रीतम दे मिलाए सुख सिंगार। बिख्या के फीके ता छोड़े मेरी माए, काम क्रोध लोभ तज गए प्यारे, सतगुर चरणी पाए। जो जन राते राम सिंह प्यारे, अंत ना काहू जाए। हर जिन्नी चाख्या प्यारे, तृप्त रहया गाए। अंचल गहया साधका नानक, पैव सागर पार पराए। जन्म मरण दुख कटिया प्यारे, जा पेटे हर राय। सुंदर सुगड़ सुजान प्र मेरा, जीवन दर्श दिखाए। जो जी तुझते बिछरे प्यारे, जन्म मरै बिख खाए। जिस तू मिलै सो मिलै प्यारे, तिसके लागौ पाए। जो सुख दर्शन पेखते प्यारे, मुक्ते कहन न जाए। साची प्रीत ना टुटई प्यारे, जो जुग रही समाए। जो तुत पावे सो पला प्यारे, तेरी अमर रजाए। नानक रंग रते नारायण प्यारे, माते सहि सुभाए। साबे तुम ही जानते प्यारे, किस पे कहो सुनाए।

मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा तारी मेरे ठाकुर, बिख गुरमत हर नाम लै जाए जियो। तेता जुग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परम आया, हर गोपी काने उपाय जियो। तप तापन तापै जग पुन आरंभै, अत क्रिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टके टकाए जियो। महायुद्ध जोध बहु कीने, विच हम मैं पचै पचाए जियो। दीन दयाल गुरसाध मिलाया, मिल सतगुर मल लै जाए जियो। जुग द्वापर आया परम परम आया, हर गोपी कानो पाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टकै टकाए जियो। गुरशब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीर्त हर सांत पाए जियो। हर कीर्त रुत आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नामे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लिखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टकै टकाए जियो। आसा महला चौथा, हर कीर्त मन पाई परम गत पाई। हर मंत्र मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुरमस्तक भाग पुराण जियो, तुरमस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नाम मैं हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नाम मैं हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रपाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीर्त मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरे वै, खिन खिन भगत होवै जिन हर मीठ लगान जियो। हर मीठा लाया परम सुख पाया, मुख पागा रत्ती चारे। गुरमत हर गाया हर हर उर पाया, हर नामा कंठ तारे। सब एक दृष्ट समत कर देखै, सब आत्म राम पिछान जियो। हर हर जस गाया परम पद पाया, ते उत्तम जन प्रधान जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर हर आराध्या गुर शब्द विगासिया, बीजा अवर ना कोए जियो। अवर ना कोए हर अमृत सोए, जिन पिया सुबिद जाने। तन तन गुरु पूरा प्रपाया, लग संगत नाम पिछाने। नामो सेव नामो आराध्य, बिन नामे अवर ना कोए जियो। सत संगत मन पाई हर रसन रसाई, विच संगत हर रस होए जियो। हर दया प्रवतारो, पाखण हम तारो। कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। मोह चीकड़ फाथे निगरत हम जाते, हर बहा प्रभु पकराए जियो। प्रभा पकराई उत्तमत पाई, गुर चरणी जन लागा। हर हर नाम जपया आराध्या, मुख मस्तक पाग सपागा। जन नानक हर कृपा तारी, मन हर हर मीठा लाए जियो। हर दया प्रभ तारो, पाखण हम तारो। कढ लेवो शब्द सुभाए जियो। आसा महला चौथा, मन नाम जपाना। हर हर मन पाना, हर भक्त जना मन चाओ जियो। जो जन मर जीवे तिन अमृत पीवे, मन लागा गुरमत पाओ जियो। मन हर हर पाओ गुर करे पसाओ, जीवन मुक्त सुख होई। जीवन मरनो हर नाम सुहेले, मन हर हर हृदय सोई। मन हर हर वसिया गुरमत हर रसिया, हर हर रस गटाग पियाओ जियो। मन नाम जपाना हर हर मन पाना, हर भगत जना मन चाओ जियो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़ लै जाए जियो। हर अंतर बाहर हर प्रभ एको, एहो जियाड़ा रखिया ना जाए जियो। क्यों जियो रखी जय हर वस्त लोड़ी जय, जिसकी वस्त सो लै जाए जियो। मन मुख करण पलाव कर भरमे, सब औखद दारू लाए जियो। जिसकी वस्त प्रभ लय सुमामी, जन उपरे शब्द कमाए जियो। जग मरण ना पाया नित आप लुकाया, मत जम पकड़ लै जाए जियो। तुर मरण लिखाया गुरमुख सोहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। हर शोभा पाई हर नाम वडियाई, हर दरगह पैंदे जान जियो। हर दरगह पै

आवै तवै चलावै, सब तेरा शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जा तुद भावै, तेरा शब्द वडियाई। गुरमुख बुद्ध पाई है आप गवाई है, शब्द रहया समाई।

कतहु ना तावो शरण पावो करना मैं प्रभ करमया। सम्राथ अगाथ अपार निर्मल सुनो स्वामी बिनो एहो, कर जोड़ नानक दान मांगे जन्म मरण निवार लेहो। अपराधी मतहीन निर्गुणा नाथ नीच, साठ कठोर कुलहीन व्याप्त मोह कीच, मल भरम कर्म अहं ममता मरण चीत ना आवे, बंता विनोद आनंद माया ज्ञानता लपटावे। खिसै जोबन बदै जरुआ दिन हारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी शरण साधु राख नीच। परमे जन्म अनेक संकट महाजोन, लपट रहयो तहे संग मीठे भोग सोन। भ्रमत पार अगांत आयो बहु परदेसैत आयो, आवे ओढ़ धारी प्रमरारी सर्व सुख हरनायो। राखन हारे प्रभु प्यारे मुइते कछु ना होवा हो ना, सुख सहजानंद नानक कृपा तेरी तरह पौन। नाम तारी को धारे भगतै संसा कौन, जेन केन प्रकारे हर हर जस सुनो श्रवण। सुन श्रवण बाणी पुरख ज्ञानी मन निधाना पावहे, हर रंग राते प्रभ दाते राम के गुण गावहे। बसद गागद बन राज कलमा लिखण कौ जे होए पवन, बेअंत अंत न जाए पाया गही नानक चरण सरण। आसा महला पंजवा पुरख पते भगवान, ताकी शरण गही निरपो पे प्राण चिंता सगल लही। मात पिता सुत मीत सुरजन इष्टबंध पजाणिया, गह कंठ लाया गुर मिलाया जस बिमल संत बखाणिया। बेअंत गुणिया नेक महिमा कीमत कछु ना जाए कही, प्रभ एक अनक अलख ठाकर ओट नानक तिस गही। अमृत बन संसार सहाय या पय राम नाम उरहार, बिहके दिवस गए। गत परम मोह बेकार बिनसे जोने आवन सब रहे, अग्न सागर पय शीतल साध अंचल गए रहे। गोविंद गोपाल दयाल सम्राथ बोल साधु हर जय जय। नानक नाम ते आए पूर्ण साध संग पाई परम गते, जय देखो ते संग एको रव रहया, घट घट वासी आप गर लैकने लहया। जल थल महियल पूर पूर्ण कीट हस्त समानिया, आद अंते मद सोई गुर प्रसादी जानिया। ब्रह्म पसरिया ब्रह्म लीला गोविंद गुणनिध जन कहया, सिमर स्वामी अंतर जामी हर एक नानक रव रहया। दिन रैन सुहावड़ी आई सिमरत नाम हरे, चरण कमल संग प्रीत करमल पाप टरे। दुख भूख दर दर नाठे प्रगट मग दिखाया, मिल साध संगे नाम रंगे मन लोड़ींदा पाया। हर देख दर्शन इच पुन्नी कुल संभूहा सब तरे, दिन सरैण आनंद अंदन सिमरंत नानक हर हरे। आसा महला पंजवा शंत कर सतवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक। शुभ चिंतन गोबिंद रमन निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक कड़ी कर कृपा भगवंत शंत। पिनी रैनड़िए चमकन तारे जागे संत जना, मेरे राम प्यारे राम प्यारे सदा जागे, नाम सिमरै अंदेनो चरण कमल ध्यान हिरदय प्रभ बिसर नाही एक खेनो। तज मान मोह बिकार मन का कलमला दुख जारे, बिनवंत नानक सदा जागे हरदास संत प्यारे। मेरी से जिड़िए आडंबर बनिया मन आनंद भया प्रभ आवत सुनिया। प्रभ मिले स्वामी सुखै गामी चाव मंगल रस परे, अंग संग लागे दुख भागे प्राण मंत्र सब हरे। मन इच्छ पाई प्रभ ते आई संजोग साहा शुभ गणिया, बिनवंत नानक मिले श्री धर सगल आनंद रस बनिया। मिल सखिया पुछे कौ कंतनी साणी, रस प्रेम भरी कछ बोल ना जानी।
ਗੁਣ ਗੂੜ ਗੁਪਤ ਅਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਿਗਮ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਵਹੇ ਭਗਤ ਪਾਏ ਧਿਆਏ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵਹੇ ਸਗਲ ਗੁਣ ਸੁਗਿਆਨ ਪੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਣੀ ਬਿਰਵੰਤ ਨਾਨਕ ਰੰਗ ਰਾਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿ ਸੁਮਾਣੀ ਸੁਖ ਸੋਹਿਲੜੇ ਹਰ ਗਾਵਣ ਲਾਗੇ ਸਾਜਨ ਸਰਸਿਆੜੇ ਦੁਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਰਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਰਹਿਸੇ ਪ੍ਰਵਿਆਪ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀਆ ਹਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਸਦਾ ਜਾਗੇ ਮਿਲੇ ਪ੍ਰਭ ਨਵਾਰੀਆ ਸੁਭ ਦਿਵਸ ਆਏ ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਸਗਲ ਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਪਾਗੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ ਸਦਾ ਹਰ ਜਨ ਤਾਗੇ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਉੱਠ ਮੰਜ ਵਟਾ ਉੜਿਆ ਤੈਂ ਕਿਆ ਚਿਰ ਲਾਇਆ ਮੁਹਲਤ ਪੁੰਨੜੀਆ।

माल जोबन छोड़ वैसी रहो पैनन खाया, नानक कमाणा संग जुलिया। नह जाए किरत मिटाया, फाथो मिर्ग जिवै पेख रहन चंद्रायण। सुखो दुख पए नित पाप कमायण, पापा कमाने छड़े नाही लै चले कत गलाविया। हर चंदौरी देख मूठा कूड़ से जा रावया, लभ लोभ अहंकार माता गर भया समायण। नानक मिर्ग अग्ञान बिनसे न मिटै अवन जायण, के मिठै मख मवा क्यों लय उडारी। हस्ती गर्त पया क्यों तरिया तारी, तरन दुहेला पया खिन मैं खसम चेतना आयो। दुखा सजाई गणत नाही किया अपना पायो, गुजा कमाना प्रगट होवा ईत उतै खुआरी। नानक सतगुर बाज मूठा मन मुखो अहंकारी, हर के दास जीवे लग प्रभ की चरणी। कंठ लगाए लिए ते ठाकर सरणी, बल बुद्ध ज्ञान ध्यान अपना आप नाम जपाया। साह संगत आप होवा आप जग तराया, राख लिए रखण हारे सदा निर्मल करणी। नानक नरक ना जाहे कबहू हर संत हर की सरणी। आसा महला पंजवा, वंज मेरे आलसा हर पास बेनंती। रावो सवा परणा प्रभ संग सुहंती, संगे सोहंती कंत स्वामी। दिन सरैणी रावी है सा सा चितार जीवा, प्रापे खार गुण गावी है। बिरहल जाया दर्स पाया आम्यो दृष्ट सिंचंती, बिनवंत नानक मेरी इच पुन्नी मिले जिस खोजंती।

नानक जिन करतै कारण किया सो जाणै करतार। पौड़ी बिन सतगुर कहना ना पायो, बिन सतगुर कहना ना पाया। सतगुर विच आप रखियो नूं कर प्रगटिया सुनाया, सतगुर मिलिया सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया। उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया। सलोक महला पहला, हों विच आया हों विच गया, हों विच जमया हों विच मुआ, हों विच दिता हों विच लया, हों विच खटिया हों विच गया। हों विच सत्यार कूड़ियार, हों विच पापुन विचार, हों विच नरक सुरग अवतार। हों विच हसै हों विच रोवै, हों विच भरीऐ हों विच धोवै, हों विच जाति जन सीख होवै। हों विच मूर्ख हों विच सियाणा, मूख मूत की सार ना जाना। हों विच माया हों विच छाया, हों मैं कर कर जन तो पाया। हों मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में हूणा कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिया लेख, जेहा वेखै तेहा वेख। महला दूजा, हों मैं हा जात है, हों मैं कर्म कमाहे। हों मैं एही बंदना फिर फिर जोनी पाहे। हों मैं किथों उपजै कित संजम एह जाए। हों मैं एहो हुक्म है पया किरत फिर आहे। हों मैं दीर्घ रोग है दारू पिय समाहे, कृपा करे जे अपनी तां गुर का शब्द कमाहे। नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाहे। पौड़ी सेव कीती संतोखी, जिनी सचो साहित्य आया। उन्नी मंदे पैर न रखियो कर सुकिरत धर्म कमाया। ओनी दुनिया तोड़े बंदना, अन पानी थोड़ा खाया। तू बख्शी सी अगला नित देवै चढ़ै सवाया, वड्याई वड्डा पाया। सलोक महला पहला, पुरखा बिरखा तीर्था तटा मेघा खेता हां। दीपा लोवा मंडला खंडा वरपंडा हां। अंडज जेरज उत्पजा खानी सेत जाहा, सुमत जाने नानका सरा मेरा जनता हां। नानक जन तो पाए कै संभाले सब नाहा, जिन कर तय करना किया चिंता पे करनी ताहा। सो करता चिंता करे जिन पाया जग, तिस जो हारी स्वस्थ तिस तिस दी बाणिया पग। नानक सच्चे नाम बिनु क्या टिका क्या तग। महला पहला, लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना प्रवान, लख तप उपर तीर्थां सहयोग बेबाण। लख सुरतन संग्राम रण में छुटै प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण। जिन करता करना किया लिखिया आवन जान, नानक मती मिथ्या कर्म सच्चा निशान। पौड़ी सच्चा साहब एक तू, जिन सचो सच वरताया। जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिनकै हृदय सच वसाया। मूर्ख सच ना जाननी मनमुखी जन्म गवाया। विच दुनिया काहे आया, सलोक महला पहला। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है पढ़ पढ़ गड्डी है खात। पढ़िया जेते बरस बरस, पढ़िया जेते मास, पढ़िया जेती आरजा पढ़िया जेते सास। नानक लेखै एक गल होर हों मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया, बहु तीर्थ पव्या ते तो लव्या। बहु पेह किया देही दुख दिया, सोहवे जिया अपना किया। अन्न ना खाया साध गवाया, बहु दुख पाया दूजा पाया। बस्तर ना पहरै एनस कहरै, मोन विगूता क्यों जागै गुरबिन सूता। पग उपे ताणा अपना किया कमाणा, अलमल खाई सिर शाही पाई। मूर्ख अंधे पत गवाई, विण ना वै किश थाए ना पाई। रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध ना जाणै फिर पछताणी। सतगुर भेटे सो सुख पाए, हर का नाम मन वसाए। नानक नजर करे सो पाए, आसां देसे ते नह केवल। हों मैं शब्द जलाए। पौड़ी भगत तेरे मन भावदे, दर सोहन कीर्त गावदे। नानक करमा बाहरे
ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲੈਨੀ ਧਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਤ ਜੈ ਧਿਆਏ ਦੇ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਵੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੁਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ

मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करै प्यार, धर्मी धर्म करै गावावै मंगै मुख द्वार, जति सदावै जुगत न जाणै छड बह करवार, सबको पूरा आपे होवै घटना कोई आखै, पथ परवाणा पिछै पाईऐ ता नानक तोलिया जापै, महला पहला वदी स्वजग नानका सच्चा वेखै सोए, सबनी छाला मारियां करता करे सो होए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखै पथ पवै चंगे से ही के पौड़ी, तुर कर्म जिना को तुद पाया ता तिन्नी खसम ते आया, एना जनता कै वस किश नाही तुद वेकी जग तो पाया, एक नानो तू मेल लै एक आपो तुद खवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदया बुझाया, सहजे ही सच समाया। सलोक महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया, जा सुख ताम ना होई तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया, रहाओ जात मह जोत जोत मह जाता, अकल कला भरपूर रहया, तू सच्चा साहेब सिफत सवालियो, जिन कीती सो पार पया, कहो नानक करते किया बाता, जो किश करना सो कर रहया, महला दूजा जोग सबदंग ज्ञान सबदंग वेद सबदंग ब्राह्मण, खत्री सबदंग सूर सबदंग सूद्र सबदंग प्राकृत, सर्व सबदंग एक सबदंग जे को जाने पे, ओ नानक ताका दास है सुई निरंजन दे, ओ महला दूजा एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस, जे को जाने पे, ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन दे, ओ महला पहला। कुंभे बद्दा जल रह जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रह गुर बिन ज्ञान ना होए, पौड़ी पढ़िया होवे गुनहगार तां ओमी साधना मारी है, जिहा कहले कहलना ते वे हो ना उपचारी है, ऐसी कला ना खेडी है जित दरगे गया हारी है, पढ़िया अतै ओमिया विचार अगै विचारी है, मोहे चले सो अगै मारी है। सलोक महला पहला, नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रथवा हो, जो जुग फिर वटाई है ज्ञानी बुझै ताहे, सत युग रथ संतोख का धर्म अगै रथवा हो, तेरे तै रथ जतै का जोर अगै रथवा हो, द्वापर रथ तपै का सत अगै रथवा हो, कलयुग रथ अगन का कूड़ अगै रथवा हो, महला पहला। साम कह ऐसे तंबर स्वामी सच

सबको सच समावै, रिग कह रहया भरपूर, राम नाम देवा मैसूर। नाय लय प्राहित जाहे, नानक तौमो खंतर पाहे, जुज मैं जोर शली चंद्रावल, कान कृष्ण जादुम भया, पार जात गोपी लै आया, बिंद्रावन मैं रंग किया। काल मैं बेदा थरबण हुआ, नाव खुदाई अलहो पया, नील बसर ले कपड़े पहरे, तुर्क पठानी अमल किया। चारे वेद होए सचियार, पढ़े गुणे तिन चार विचार, पाओ भगत करनी सदाए, तौ नानक मुख अंतर पाए। पौड़ी सतगुर विटों वारिया, जित मिलिया खसम समालिया, जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया, इन्हीं नेत्री जगत निहालिया। खसम छोड़ दूजे लगे, डुबे सेवन जा रहा, सतगुरु है बोए था, विरलै किने विचारिया, कर कृपा पार उतारिया। सलोक महला पहला, सिमल रुख सरायरा, अत दीर्घ अत मुच, ओए जे आवे आस कर, जाहे निरासे कित। फल फिके फुल बक बके, कम न आवह पत, मिठत निवी नानका, गुण चंगियाईया तत। सब को निवै आप कहो, पर कहो निवै ना कोए, तर तराजू तोलिए, निवै सो गौरा होए। अपराधी दूना निवै, जो हंता मिर्गाहे, शीस निवाया क्या थी है, जा हृदय सुदे जाहे। महला पहला, पढ़ पुस्तक संध्या बादं, सिल पूजस बगल समादं, मुख झूठ विपुखण सारं, त्रैपाल तिहाल विचारं, गल माला तिलक लिलाटं, दोय धोती बस्त्र कपाटं, जे जानस ब्रह्मं कर्मं, सब फोक निश्चो कर्मं। कहो नानक नह चौ त्यावै, विण सतगुर वाट ना पावै। पौड़ी कपड़ रूप सुहावना, छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना, आपे ही कीता पावना। हुक्म किए मन भाम दे, राहे पीड़ै अगे जावना, नंगा दोजक चालिया, ता दिसै खरा डरावना, करे औगण पछोतावना। सलोक महला पहला, दया कृपा संतोख सूत, जत गंडी सत वट, एहो जनेऊ जी का है ता पांडे कत। ना एहो टुटै ना मल लगै, ना एहो जलै ना जाए, तन सो मानस नानका, जो गल चले पाए। चौकड़ मुल अनाया, बह चौकै पाया, सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओ गुआ ओ चढ़ पया, वे तगा गया महला पहला। लख चोरियां लख जारियां, लख कूड़ियां लख गाल, लख ठगियां पहनामियां, रात दिन सजी नाल। तग कपाहो कती है, बामन वटे आए, कोहे बकरा रिन खाया, सबको आखे पाए। होए पुराना सुटिए, पी फिर पाइए होर, नानक तग न टुटई जे तग होवै जोर। महला पहला, नाए मने पातू पजै, साला ही सच सूत, दरगै अंदर पाइए तग ना टूट सपूत। महला पहला, तग ना इंद्री तग ना नारी, पलके थुक पवै नित दाड़ी। तग ना पैरी तग ना हथी, तग ना जेवा तग ना अखी, वे तगा आपे वत्तै, वड़ तागे अवरा कत्तै। लै पाड़ करे वी आहो, कड़ कागल दसे राहो, सुन वेखो लोका एहो विडाण, मन अंधा नाओ सुजान। पौड़ी साहेब होए दयाल, कृपा करे ता साई कार कराए सी, सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी, हुक्म मन्या होवे परवान, ता खसमै का महल पाए सी, खसमै पावै सो करे, मनहु चिंदिया सो फल पाए सी, ता दरगै पैंदा जाए सी। सलोक महला पहला,
गौ ब्राह्मण कौ कर लावो, गोबर तरन ना जाई, धोती टिका तै जप माली, धन मलेशा खाई, अंतर पूजा पड़े कतेबा, संयम तुरका पाई, छोड़ी ले पाखंडा, नाम लै जाए तरंदा, महला पहला, मानस खाने करे निवाज, छुरी वगाए नो तिन गल ताग, तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद, उना पे आवे ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा वापार, कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर, नानक कूड़ रहा भरपूर, मथे टिका तेड़ तोती का खाई, हथ छुरी जगत कसाई, नील वस्त्र पहर होवे परवान, मलेश तान ले पूजे पुराण, अपाखिया का कुठा बकरा खाना, चौके उपर किसे ना जाना, देके चौका कड्डी कार, उपर आए बैठे कूड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे, एहो आना साडा फिटे, तन फिटे फेड़ करेन, मन जूठे चुली भरेन, कहो नानक सच त्याई है, सुच होवे ता सच पाई है, पौड़ी चित्ते अंदर सब को, वेख नदरी हेठ चलाएंदा, आपे दे वड़ियाईया, आपे ही कर्म कराएंदा, वड़ हो वड़ा वड़ मेदनी, सिरे सिर तंदे लाएंदा, नदरों पठी जे करे, सुल्ताना कहो कराएंदा, दर मंगन पेख ना पाएंदा, सलोक महला पहला, जे मोहा का कर्म है, कर मोहे पितरी दे, अगे वत सियाणी है, पितरी चोर करे, वड़ी है हाथ दलाल के, मुस्पी एह करे, नान के अगे सो मिले, जे खट्टे का ले दे, महला पहला, ज्यों जोरू सिर नावनी, आवै वारो वार, जूठे जूठा मुख वसै, नित नित होए खुवार, सूचे एह ना आखी है, बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका, जिन मन वस्या सोए पौड़ी, तुरे पलाने पौन वेग, हर रंगी हरम सवारिया, कोठे मंडप माड़िया, लाए बैठे करपा सारिया, चीज करन मन भावदे, हर बुजन नाही हारिया, कर फुरमाए सिखाया, वेख महलत मरन विसारिया, जरे आई जो बनहारिया, सलोक महला पहला, जेकर सूतक मनिए, सब तै सूतक होए, गोहे अतै लकड़ी, अंदर कीड़ा होए, जेते दाने अन्न के, जिया बाज ना कोए, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए, सूतक क्यों कर रखी है, सूतक पवै रसोए, नानक सूतके अपना उतरै, ज्ञानो तारे तोए, महला पहला, मन का सूतक लोभ है, जेहवा सूतक कूड़, अखी सूतक वेखना, परतरिया परतन रूप, कन्नी सूत कन पै, लाए तबारी खाहे, नानक हंसा आदमी, बदे जमपुर जाहे, महला पहला, सबो सूतक परम है, दूजे लगे जाए, जम्मण मरना हुक्म है, भाणे आवे जाए, खाना पीना पवित्र है, दितो न रिजक संबाहे, नानक जिनी गुरमुख बुझिया, तिन्ना सूतक नाहे पौड़ी, सतगुर वड्डा कर सा लाही है, जिस विच वड़ियां वड़ियाईया, सह मेले ता नदरी आईया, जांत स्पाणा ता मन वसाईया, कर हुक्म मस्तक हथ धर, विचो मार कड़ियां बुरियाईया, सह तुठै नौ निद पाईया, सलोक महला पहला,

सगल माहे नगटी का वासा, सगल मार अवहेरी, सगलिया की हो बहन भाणजी, जिन्हें बरी तिश्चेरी। हमरो परता बड़ो बबेकी, आपे संत कहावे, ओह हमारे माथे कायम और हमरे निकट ना आवे। नाको काटी कानो काटी, काट कूट कै डारी, कहो कबीर संतन की बैरनो, तीन लोग की प्यारी। आसा जोगी जति तपी सन्यासी, बहुत तीर्थ भ्रमना, लुंजत मुंजत मोन जटा तार, अंत तउ मरना, ताते सेवी अले रामना। रसना राम नाम हित जाके, कहां करे जमना रहाओ। आगम निर्गम ज्योतक जाने, बह बहो ब्याह करना, तंत मंत्र सब औखद जाने, अंत तउ मरना। राज भोग अरशदर सिंहासन, बहु सुंदर रमना, पान कपूर सुबासक चंदन, अंत तउ मरना। वेद पुराण सिमरत सब खोजे, कहू ना उबरना, कहो कबीर एओ रामै जम पओ, मेट जन्म मरना। आसा फीलर बाबी बल्द पखावज, कौआ ताल बजावै, पहर चोलना गधा नाचै, पैसा भगत करावै। राजा राम ककरिया बरे पकाए, किने बुजन हार खाए रहाओ। बैठ सिंह कर पान लगावै, कीस गलौरे लियावै, कर कर मुसरी मंगल गावै, कछुआ संख बजावै। बंस को पूत बियाहन चलिया, सोयने मंडप छाए, रूप कन्या सुंदर बेदी, ससै सिंह गुण गाए। कहत कबीर सुनोरे संतो, कीटी पर्वत खाया, कछुआ कह अंगार पे लोरो, लूकी शब्द सुनाया। आसा बटुआ एक बहत्तरिया धारी, एको जिसे द्वारा, नवे खंड की प्रथमी मांगे, सो जोगी जग सारा। ऐसा जोगी नौ निद पावे, तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाओ। खिंथा ज्ञान ध्यान कर सुई, शब्द तागा मथ काल, पंच तत् की कर मृगाणी, गुर कै मार्ग चाल। दया फाहुरी काया कर तुई, दृष्ट की अग्न जलावै, तिसका पाओ ले हृदय अंतर, चौह जुग ताड़ी लावै। सब जो गतन राम नाम है, जिसका पिंड पुराना, कहो कबीर जे कृपा धारै, दे सच्चा निशाना। आसा हिंदू तुर्क कहां ते आए, किन ए राह चलाई, दिल में सोच विचार गवा दे, पिस्त दोज को किन पाई। काजी तै कवन कते बखानी, पड़त गुण त्यासे सब मारे, किन्हू खबर ना जानी रहाओ। सगत स्नेहो कर सुनत करिए, मैं ना बदोगा पाई, जौरे खुदाए मोह तुर्क करेगा, अपन ही कट जाई। सुन्नत किए तुर्क जे होएगा, औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार ना छोड़ै, ताते हिंदू ही रहिए। शाड़क तेव राम भज बौरे, जुलम करत है भारी, कबीर है पगड़ी टेक राम की, तुर्क रह पछहारी। आसा जब लग तेल दीवे मुख बाती, तब सूजै सब कोई, तेल जले बाती ठहरानी, सुना मंदर होई। रे बौरे तुह करी ना राखे कोई, तू राम नाम जप सोई रहाओ। कां की मात पिता कहो का को, कवन पुरख की जोई, घट फूटे को बात ना पूछे, काडो काडो होई। देहोरी बैठी माता रोवे, खटिया ले गए भाई, लटछट काए त्रिया रोवै, हंस अकेला जाई। कहत कबीर सुनो रे संतो, पैसा गर कहताई, इस बंदे सिर जुल्म होत है, जम नहीं हटे गुसाई।
ਦੋ ਤੁਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਸ੍ਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਕੇ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਤੁਕੇ ਸਨਕ ਸਨੰਦ।

आओ तन कर मटकी मन माहे बिलोई, इस मटकी में शब्द संजोई। हर का बिलोवना मन का बिचारा, गुर प्रसाद पावे अमृत धारा। कहो कबीर नजर करे जे मीरा, राम नाम लग उतरे तीरा। आसा बाती सूकी तेल निखूटा, मंदल ना बाजै नट पै सूता। बुझ गई अगन नानक सो धुआं, रव रहया एक अवर नहीं दुआ। रहाओ टूटी तंत ना बजै रबाब, भूल बिगाड़ो अपना काज। कथनी बदनी कहन कहावन, समझ परी तो बिसरियो गावन। कहत कबीर पंच जो चूरे, तिनते नाही परम पद दूरे। आसा सुत अपराध करत है जेते, जननी चीत ना राख स्थेते। रा मैया हो बारक तेरा, काहे ना खंड से अवगन मेरा। रहाओ जे अत क्रोप करे करत आया, ता पी चीत ना राख समाया। चिंत पवन मन परयो हमारा, नाम बिना कैसे उत्तर सपारा। देहे बिमल मत सदा शरीरा, सहज सहज गुण रवै कबीरा। आसा हज हमारी गोमती तीर, जहां बसे पीतंबर पीर। वाहो वाहो क्या खूब गावता है, हर का नाम मेरे मन पावता है। रहाओ नारद सारद करै खवासी, पास बैठी बीबी कबला दासी। कंठे माला जेवा राम, सहंस नाम लै लै करो सलाम। कहत कबीर राम गुण गावो, हिंदू तुर्क दो समझावो। आसा श्री कबीर जियो के पंच पदे नौ, दो तुके पंज एक ओंकार। सतगुर प्रसाद पाती तोरै मालनी, पाती पाती जियो। जिस पाहन को पाती तोरै, सो पाहन निर्जियो। भूली मालिनी है ओ, सतगुर जागता है दे ओ। रहाओ ब्रह्म पाती बिसंडारी, फूल शंकर दे ओ। तीन देव प्रतख तोरै, करे किसकी से ओ। पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी, दे कै छाती पाओ। जे एह मूर्त साची है, तो गण नहारे खाओ। पात पहत यार लापसी, कर करा का सार। भोग नहारे भोगया इस मूर्त के मुखशार। मालन पुली जग पुलाना, हम पुलाने नाहे। कहो कबीर हम राम राखे, कृपा कर हर राय। आसा बारह बरस बालपन बीते, बीस बरस कछ तप ना कियो। तीस बरस कछ देवन पूजा, फिर पछताना बिरद पयो। मेरी मेरी करते जन्म गयो, सायर सोख भुजंग बलियो। रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथ वार करे। आयो चोर तुरंत ले गयो, मेरी राखत मुक्त फिरे। चरण शीस कर कंपन लागे, नैनी नीर आसार बह। जेहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे। हर जियो कृपा करे लिव लावे, लाहा हर हर नाम लियो। गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चलद्या नाल चलियो। कहत कबीर सुनो रे संतो, अंतन कछुए लै ना गयो। आई तरब गोपाल राय की, माया मंदिर छोड़ चलियो। आसा काहू दीने पाठ पटंबर, काहू पलंग निवारा। काहू गरी गोदरी नाही, काहू खान परारा। अहे रखवाद ना कीजै रे मन, सो किरत कर।

आओ बजाम नहारो कहां गयो जने हो मंदर कीना साखी शब्द सुरत नहीं उपजै खिंच तेज सब लीना श्रवणन बिगल पाए संग तेरे इंद्री का बल थाका चरण रहे कर टर्क परे है मुखो नानक सहबाता थाके पंच दूत सब तस्कर आप अपने भ्रमते थाका मन कुंचर और थाका तेज सूत तर रमते मृतक पय दसै बंद छूटे मित्र भाई सब छोरे कहत कबीरा जो हर त्यावै जीवत बंधन तोरे आसा एक तुके चार सरपनी ते ऊपर नहीं बलिया जिन ब्रह्मा विष्णु महादेव शलिया मार मार सरपनी निर्मल जल पैठी जिन त्रिभुवन डसियले गुरप्रसाद डीठी रहाओ सरपनी सरपनी क्या कहो पाई जिन साच पछानिया तिन सरपनी खाई सरपनी ते आन शूश नहीं अवरा सरपनी जीती कहां करे जमरा एह सरपनी ताकी कीती होई बल अबल क्या इस्ते होई एह बस्ती ता बस्त शरीरा गुरप्रसाद सही तरे कबीरा आसा कहां स्वान कौ सिमरत सुनाए कहां सागत पै हर गुण गाए

नाभ कमल में बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलो पायो अस बड़ भाग हमारा। सोर नार मुन जन कौत के आए कोट ते तीस हो जाना कह कबीर मोए ब्याय चले है पुरख एक भगवाना। आसा सास की दुखी ससुर की प्यारी जेठ के नाम डराओ रे सखी सहेली ननद गहेली देवर कै ब्रह जराओ रे मेरी मत बौरी मैं राम बिसारे ओ किन बिद रहन रहो रे सेजा रम तो नैन नहीं पेखो एहो दुख कासो कहो रे रहाओ। बाप साहब का करै लराई माया सदमतवारी बड़े भाई कै जब संग होती तबो ना प्यारी। कहत कबीर पंच को झगरा जगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांधया मैं राम रमत सुख पाया।

मेरी जेहबा बिसरना नारायण हृदय बसै गोविंदा, जम द्वार जब पूस बवरे तब क्या कैस मुकंदा रहाओ। हम गोरु तुम ग्वार गोसाई, जन्म जन्म रखवारे, कबहू ना पारो तार चरायो, कैसे खसम हमारे। तू बामन मैं का सीत जुल्हा, बूजो मोर ज्ञाना, तुम तो जाचे पूपत राजे, हर सौ मोर त्याना। आसा जग जीवन ऐसा, सुपने जैसा, जीवन सुपन समान, साच कर हम गांठ दीनी, छोड़ परम निधान। बाबा माया मोह हित कीन, जिन ज्ञान रतन हरलीन, रहाओ नैन देख पतंग उर जै, पास ना देखै आग, काल फासना मुग्द चेतै, कनक कामन लाग। कर विचार बिकार पर हर, तरन तारन सोए, कह कबीर जग जीवन ऐसा, दुती नाही कोए। आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे, अब फुन रूप ना होई, तागा तंत साज सब थाका, राम नाम बस होई।

तृष्णा गागर फूटी, काम चोलना पया है पुराना, गया परम सब छूटी। सर्वभूत एक कर जानिया, चूके बाद बिबादा, कह कबीर मैं पूरा पाया, पय राम प्रसादा। आसा रोजा तरह मनावे अल्लाओ, स्वादत जी संघार है, आपा देख अवर नहीं देख, काहे कौ चख मार है। काजी साहेब एक तो ही मैं तेरा, सोच विचार ना देख, खबर ना करे दीन के बौरे, ताते जन्म्या लेख रहाओ। साज कते बखाने अल्लाह, नार पुरख नहीं कोई, पड़े गुने नाही किश बौरे, जो दिल में खबर ना होई, अल्लाह गैब सगल घट पीतर, हृदय लिहो बिचारी। हिंदू तुर्क दुहू मह एक, कह कबीर पुकारी, आसा ते पदा एक तुगा,

आराम बड़े मैं तनक लहोरिया रहाओ। तन पर एक संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। तन सुहागन जो पी पावै, कह कबीर फिर जन्म न आवै। आसा श्री कबीर जियो के दो पदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरा हीरा बेद पवन मानो, सहजे रहा समाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पशानी। रहाओ कह कबीर हीरा अस देखियो, जग में रहा समाई। गुप्ता हीरा प्रगट पायो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात को लखनी, साहुरे पे ये बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर तरी। पली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवाओ मेरी अब की तरी। रहाओ कहो कबीर जब लहुरी आई, बड़ी का सुहाग टर्यो। लहुरी संग पैया मेरा, जेठी और तर्यो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राख्यो राम जनिया नाओ। इन मुंडियां मेरा घर तुंदरावा, बिटवे राम रमंगुआ लावा। रहाओ कहत कबीर सुनो मेरी माई, इन मुंडियां मेरी जात गवाई। आसा रहो रहो री बहुरिया, कुंगट जिन काड अंत की बार लहेगी ना याड। रहाओ कुंगट कांड गई तेरी आगे, उनकी गैल तुहे जन लागे। कुंगट काडे की यह बड़ाई, दिन दस पांच बहु पले आई। कुंगट तेरो तो पर साचे, हर गुण गाए कूद अर नाचे। कहत कबीर बहु तब जीते, हर गुण गावत जन्म बतीते। आसा

जो तन चीरा अंग न मोरो, पिंड परे तो प्रीत न तोरो, हम तुम बीच भयो नहीं कोई, तुम्हें सो कंत नार हम सोई। कहत कबीर सुनो रे लोई, अब तुमरी प्रतीत न हुई आसा। कोरी को कहूं मर्म न जाना, सब जग आनत ना होता ना रहाओ। जब तुम सुन ले वेद पुराना, तब हम इतनक पसरे ताना। तरने आकाश की कर गए बनाई, चंद सूरज दो साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी, तै तांती मन माना, जो लाहे कर अपना चीना, कट ही राम पिछाना। कहत कबीर कार गह तोरी, सुते सुत मिलाए कोरी आसा। अंतर मैल जे तीर्थ नावे, तिस बैकुंठ ना जाना। लोकपतीने कछु ना होवे, ना ही राम एना। पूजो राम एक ही देवा, साचा नावन गुर की सेवा रहाओ। जल कै मज्जन जे गत होवे, नित नित मेंढक नावे। जैसे मेंढक तैसे ओए नर, फिर जो नी आवे। मनो कठोर मरै बानारस, नरक ना बांचिया जाई। हर का संत मरै हाड़म्बै, ता सगली सैन तराई। दिन सनारैन, वेद नहीं शास्त्र।

कि एक अनेक व्यापक पूरक जत देखो तत सोई माया चित्र विचित्र विमोहत बिरला बूझै कोई। सब गोबिंद है, सब गोबिंद है, गोबिंद बिन नहीं कोई। सूत एक मान सत सहंस जैसे ओत पोत प्रभ सोई रहाओ। जल तरंग अरफेन बुदबुदा जल ते भिन्न ना होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन ना होई। मिथ्या भरम अर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकृत मनसा गुरु उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देव हर की रचना देखो हृदय विचारी घट घट अंतर सर्व निरंतर केवल एक मुरारी। आसा आनी ले कुंभ भराई ले उदक ठाकर कौ स्नान करो। बयालीस लख जी जल मैं होते बीठर पहला काय करो। जतर जाओ तत बीठल पहला महा

आनीले दूध रिदाईले खीरंग। ठाकर को नैवेद करो, पहले दूध बिटा रहे हो बछरा है, बीठल पहला काय कराओ। इबे बीठल उबे बीठल, बीठल बिन संसार नहीं, थांथन अंतर नामा प्रणवै, पूर रहो तू सर्व मही। आसा मन मेरो गज, जेहबा मेरी काती, मप मप काटो जम की फासी। कहां करो जाती, कह करो पाती, राम को नाम जपो दिन राती रहाओ। हर रंग नरंगो सीमन सीवो, राम नाम बिन करी ना जीवो, भगत करो हर के गुण गावो, आठ पहर अपना खसम ते आवो। सोने की सोई रुपए का तागा, नामे का चित हर सो लागा। आसा साप कुंच छोड़ बिख नहीं छाड, उदक माहे जैसे बग ध्यान मांड। काहे कौ की जय ध्यान जपन्ना, जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ। सिंह च भोजन जो नर जाने, ऐसे ही ठग दियो बखाने। नामे के स्वामी लाहे ले झगरा, राम रसायन पियो रे दगरा। आसा पार ब्रह्म जे चीन सी, आसा ते ना भावसी, रामा भगत चेती अले अचिंत मन राखसी। कैसे मन तरेगा रे, संसार सागर बिखे को बना, झूठी माया देख के भूला रे मना रहाओ। छिपे के घर जन्म दैला, गुरु उपदेश पहला, संता के प्रसाद नामा हर पेटला। आसा बाणी श्री रविदास जियो की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मृग मीन प्रेंग पतंग कुंचर, एक दोख बिनास, पंच दोखया साध जा मैं ताकि केत कयास। माधो अविद्या हित कीन, विवेक दीप मलीन रहाओ। त्रिगत जोन अचेत संभव, पुन पाप्या सोच, मानुखा अवतार दुर्लभ, तिही संगत पोच। जी जंत जहां जहां लग, कर्म के बस जाए, काल फासा बद लागे, कशना चलायो पाए। रविदास दास उदास तज ब्रह्म, तपन तप गुर ज्ञान, भगत जन पै हरन, परमानंद करो निदान। आसा संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने, संत देवा देव, संत ची संगत, संत कथा रस, संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ। संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलग ओलगनी, और एक मांगो भगत चिंता मन, जनी लिखावो असंत पापी सन। रविदास भणे जो जाने सो जान, संता नंता यंत्र नाही। आसा तुम चंदन हम एरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा। नीच रूख ते उच पय है, गंध सुगंध निवासा। माधव सतसंगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मुखतूल सुपेद सुपियल, हम बपरे जस कीरा। सतसंगत मिल रही है माधव, जैसे मदप मखीरा। जाति ओछा पाती ओछा, ओछा जन्म हमारा, राजा राम की सेवना कीनी, कह रविदास चमारा। आसा कहां पयो जो तन पयो छिन छन, प्रेम जाए तो डर पै तेरो जन। तुझे चरण अरबिंद पवन मन, पान करत पायो पायो रामैया तानो रहाओ। संपत विपत पटल माया तान, ता मैं मगन होत ना तेरो जन। प्रेम की जेवरी बांध्यो तेरो जन, कह रविदास छूट बो कमन गुण। आसा हर हर हर हर हर हर हरे, हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ। हर के नाम कबीरो जागर, जन्म जन्म के काटे कागर।
ਨਿਮਤ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦੁੱਧ ਪੀ ਆਇਆ, ਤਉ ਜਗ ਜਨਮ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਨ ਰਵਿਦਾਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਰਾਤ।

देखे देखे सुने बोले दौड़े फिरत है रहाओ। जब कश पावे तब गर्व करत है, माया गई तब रोबन लगता है। मान बच करामो रस कसै लुभाना, बिरस गया जाय कहूं समाना। कह रविदास बाजी जग भाई, बाजी गर स्यो मोहे प्रीत बने आई। आसा बाणी भगत धन्ने जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रमत फिरत बहु जन्म बिलाने, तन मन धन नहीं धीरे। लालच बिख काम लुब्ध राता, मन बिसरे प्रभीरे रहाओ। बिख फल मीठ लगे मन बौरे, चार विचार ना जानिया। गुण ते प्रीत बड़ी अनपाती, जन्म मरण फिर तानिया। जुगत जान नहीं हृदय निवासी, जलत जल जम फंद परे। बिख फल संच भरे मन ऐसे, परम पुरख ब्रह्मन बिसरे। ज्ञान प्रवेश गुरै धन दिया, ध्यान मान मन एक मये। प्रेम भगत मानी सुख जानिया, तृप्ता गाने मुक्त पए। जोत समाए समानी जाके अछली प्रपै जानिया। धनै तर पाया तरणी तर, मिल जा संत समानिया। महला पंजवां गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग, नाम देव मन लीणा। आड़ दाम कोशी परो, होयो लाखीणा रहाओ। बुनना तनना त्याग कै, प्रीत चरण कबीरा। नीच कुला जोला हरा, पयो गुनी गहीरा। रविदास ढोवंता टोर नीत, तिन त्यागी माया। प्रगट होवा साध संग, हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया, ओहो कर कर सुनिया। हिरदे वसिया पार ब्रह्म, भगता मैं गणिया। एह बिद सुन कै जट रो, उठ भगती लागा। मिले प्रतख गुसाइया, तन्ना वड भागा। रे चित चेतस की, ना दयाल दमोदर। बिबै ना जानस कोई, जे तावै ब्रह्मंड खंड कहो। करता करे सो होई रहाओ। जननी केरे उदर उदुक मह, पिंड किया दस द्वार।

कर कृपा लोच मेरे मन लाई, मैं मन तन लोच लगी हर सेती, प्रभ लोच पूरी सदगुर शरणाई, मानस जन्म पुन कर पाया, बिर नावे त्रिग त्रिग बिरथा जाई, नाम बिना रस कस दुख खावे, मुख फीका थुक थूक मुख पाई, जो जन हर प्रभ हर हर सरना, तिंदर गय हर हर दे वड्याई, धन धन सा बास कह प्रभ जन कहो, जन नानक मेल लय गलाई, गुजरी महला चौथा, गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देवो दान हर प्राण जीवाया, हम होवे लाले गोले गुरसिखां के, जिना अंदन हर प्रभ पुरख ते आया, मेरे मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख भाई, मोको करो उपदेश हर मिले मिलाया, रहाओ जा हर प्रभ भावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया, वड भागी गुर के सिख प्यारे, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया, सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया, जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भारहीन पापी जम खाया, आप किरपाल किरपा प्रभ धारे, हर आपे गुरमुख मिले मिलाया, जन नानक बोले गुरबाणी, गुरबाणी हर नाम समाया, गुजरी महला चौथा, जिन सतगुर पुरख जिन हर प्रभ पाया, मोको कर उपदेश हर मीठ लगावै, मन तन शीतल सब हरिया होवा, वडभागी हर नाम ते आवै, भाई रे मोको कोई आए मिले हर नाम दृढ़ावै, मेरे प्रीतम प्राण मन तन सब देवा, मेरे हर प्रभ की हर कथा सुनावै, रहाओ तीर्ज धर्म गुरमत हर पाया, नित हर नामे हर स्यों चित लावै, अमृत बचन सदगुर की बाणी, जो बोले सो मुखे अमृत पावै, निर्मल नाम जित मैल ना लागे, गुरमत नाम जपै लिव लावै, नाम पदार्थ जिन नर नहीं पाया, से भागहीन मोहे मर जावै, आनंद मूल जग जीवन दाता, सब जन को अंध करो हर त्यावै, तू दाता जी सब तेरे, जन नानक गुरमुख बख्श मिलावै। एको अंकार सतगुर प्रसाद, गुजरी महला चौथा, कर तीजा, माई बाप पुत्र

हर का तन मनो सब हर कै वस है शरीर रहाओ। भगत जना को सरदा आप हर लाई, विचे ग्रस्त उदास रहाई। जब अंतर प्रीत हर स्यों बन आई, तब जो किश करे सो मेरे हर पर पाई। जित कारै काम हम हर लाए, सो हम करै जो आप कराए। जिनकी भगत मेरे प्रभ भाई, ते जन नानक राम नाम लिवलाई। गुजरी महला पंजवा, चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। काहे रे मन चितवै उद्दम, जा अहर हर जियो परया। सैल पत्थर मैं जनते उपाए, ता का रिजका गह कर तरिया। मेरे माधव जी सत संगत मिले से तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया। सूके कष्ट हरिया रहाओ, जनन पिता लोग सुत बनता। कोई न किसकी तरिया, सिर सिर रिजक सवाहे ठाकरो। काहे मन पौ करिया, उड़ै उड़िया वैसै कोसा। तिस पाछै बचरे शरिया, उन कमन खलावै कमन चुगावै। मन मैं सिमरन करिया, सब निधान दस अठ सिधान। ठाकुर कर तल धरिया, जन नानक बल बल सदबल जाइयै। तेरा अंत ना पारा वरिया। गुजरी महला पंजवा, चौप दे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। किरिया चार करै खटकर्मा, इतरा ते संसारी। अंतर मैल न उतरै हो मैं, बिन गुर बाजी हारी। मेरे ठाकर रख ले वो कृपा धारी, कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी। रहाओ शास्त वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी। बिन गुर मुक्त ना को उपावै, मन वेखो कर बिचारी। अठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी। अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। धावत धावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी। दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया। निमख ना बिसरो मन ते हर हर।

सास सास तेरा नाम सुमारा तुम ही कौ प्रभयाही, नानक टेक पही करते की होर आस बेडानी लाही। गुजरी महला पंजवां, कर कृपा अपना दर्श दीजै, जस गावो निस्यार पोर, केस संग दास पगचारो, एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर, चित चित वो हरस न्यारा दो, निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकुर, बिनो करो कर जोर, नाम जपै नानक दास तुमरो, उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवां, ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक, आई इंद्र लोक ते ताए, साध संगत को जोहे ना सकै, मल मल धोवे पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए, गुहज पाव को बहुत पर जा रहे, मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर, रही कंठ उर जाए, जन नानक अंग किया प्रभ करतै, जां कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवां, आप जस मिटै होवै जग कीर्त, उंदर गै बैसन पाईऐ, जम की त्रास नास होए खिन मैं, सुख अंत सेती कर जाइऐ। जां ते काल न बिरथी जाइऐ, आठ पहर सिमरो प्रभ अपना, मंत्र सदा ध्याइऐ रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन, तू देह सोई प्रभ पाई है, चरण कमल नानक रंग राते, हर दास है पैज रखाई है। गुजरी महला पंजवां, विश्वंपर जीवन को दाता, भगत परे पंडार, जाकी सेवा निफल ना होवत, खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज, सगल जी जा को वारा दे, ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते, तू प्रभ प्राण आधार, हुए सहाय जिस तू रख, तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवां, जन की पैर सवारी आप, हर हर नाम दियो गुरे अवखद, उतर गयो सब ताप रहाओ। हर गोबिंद रखियो परमेश्वर, अपनी कृपा धार, मिटी ब्याद सर्व सुख होए, हर गुण सदा विचार। अंगीकार कियो मेरे करतै।

आपन चाहे सो भगत कहिए, अपना प्यार आप लाए, आपे गावे आप सुनावे। इस मन अंधे को मार्ग पाए, अंधन नाचे सकत निवारे, सेवकर नींद ना होई। सकती कर जगत सूता, नाचे टापे अवरो गावे, मनमुख भगत ना होई। सुर नर विरत पख करमी नाचे, मुनजन ज्ञान बिचारी। सिद्ध साधक लिव लागी नाचे, जिन गुरमुख बुद्ध विचारी। खंड ब्रह्मांड त्रै गुण नाचे, जिन लागी हर लिव तुम्हारी। जी जंत सबे ही नाचे, नाचे खानी चारी। जो तुद भावै से ही नाचे, जिन गुरमुख शब्द लिव लाए। से भगत से तत् ज्ञानी, जिसको हुक्म मनाए। एहा भगत सच्चे स्यों लिव लागे, बिन सेवा भगत ना होई। जीवत मरे ता शब्द विचारे, ता सच पावे कोई। माया कै अर्थ बहुत लोक नाचे, को विरला तत् विचारी। गुर प्रसादी सोई जन पाए, जिनको कृपा तुम्हारी। एकदम साचा विसरै, सावेला बिरथा जाए। साहे साहे सदा संभालिए, आपे बक्से करे रजाए। सही नाचे जो तुद पावे, जे गुरमुख शब्द विचारी। कहो नानक से सहज सुख पावे, जिन को नजर तुम्हारी। गुजरी महला चौथा कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर बिन जियरा रह ना सके, जो बालक खीरे धारी। आगम्या गोचर प्रभ गुरमुख पाई है, अपने सतगुर कह बलिहारी। मन रे हर कीर्त तरतारी, गुरमुख नाम अमृत जल पाई है। जिन कहो कृपा तुम्हारी, रहाओ सनक सनंदन। नारद मन सेवै, अंदर जपत रह बनवारी। शरणागत प्रहला जन आए, तिनकी पै सवारी। अलख निरंजन एको वर्त है, एका ज्योत मुरारी। सब जाचक तू एको दाता, मांगे हाथ पसारी। भगत जना की उत्तम बाणी, गावे कथ कथा नित न्यारी। सफल जन्म भया तिनकेरा, आप तरे कुलतारी। मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी। संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी। निंदक निंदा कर मल धोवे, ओह मल पख माया तारी। संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी। एहो परपंच खेल किया, सब करता है हर करता है सब गल तारी। हर एको सूत वरतै जुग अंतर, सूद खिंचै एक अंकारी। रस निरसन रस गावै हर गुण, रसना हर रस तारी। नानक हर बिन अवर ना मांगो, हर रस प्रीत प्यारी। गुजरी महला पंजवां कर दूजा, एको ओंकार सतगुर प्रसाद। राजन मैं तू राजा कहिया, भूमन मैं भूमा। ठाकर मैं ठकराई तेरी, कोमर सिर कोमा। पिता मेरो बड़ो तनी अगमा, उसत कमन करी जय करते। पेख रहे बिस्मा रहाओ, सुखियन मैं सुखिया तू कहिया। दातन सिर दाता, तेजन मैं तेजवंशी कहिया। रसियन मैं राता, सूरन मैं सूरा तू कहिया। भोगन मैं भोगी, ग्रस्तर मैं तू बड़ो ग्रस्ती। जोगन मैं जोगी, करतन मैं तू करता कही है। आचारन मैं आचारी, साहन मैं तू साचा साहा। वापारन मैं वापारी, दरबारन मैं तेरो दरबारा। शरण पालन टीका, लक्ष्मी केतक गनी ना जाइए। गाना सको सिक्का, नामन मैं तेरो प्रभ नामा। ज्ञानन मैं ज्ञानी, जुगतन मैं तेरी प्रभ जुगता। इशनानन मैं इशनानी, सिद्धन मैं तेरी प्रभ सिद्धा। कर्मन सिर कर्मा, आज्ञा मैं तेरी प्रभ आज्ञा। हुक्मन सिर हुक्मा, ज्यो बुलावे त्यों बोले स्वामी। कुदरत कमन हमारी, साह संग नानक जस गायो। जो प्रभ की अत प्यारी, गुजरी महला पंजवां कर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद।
ਨਾਥ ਨਰ ਹਰ ਦੀਨ ਬੰਧਵ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਦੇਵ ਪੈ ਤਰਾਸ ਨਾਸ ਕਿਰਪਾਲ ਗੁਣਨਿਧ ਸਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੇਵ ਹਰ ਗੋਪਾਲ ਗੁਰ ਗੋਬਿੰਦ ਚਰਨ ਸਰਨ ਦਇਆਲ ਕੇਸਵ ਤਾਰ ਜਗ ਪਵ ਸਿੰਧ ਰਹਾਉ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹਰਨ ਮਦ ਮੋਹ ਦਹਿਨ ਮੁਰਾਰ ਮਨ ਮਕਰੰਦ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਿਵਾਰ ਧਰਨੀ ਧਾਰ ਪਤ ਰਾਖ ਪਰਮਾਨੰਦ ਜਲਤ ਅਨਕ ਤਰੰਗ ਮਾਇਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਰਿਧ ਮੰਤ ਛੇਦ ਅਹੰ ਬੁੱਧ ਕਰਣਾ ਮੈਂ ਚਿੰਤ ਮੇਟ ਪੁਰਖਿਆਨੰਤ ਸਿਮਰ ਸਮਰੱਥ ਪਲ ਮਹੂਰਤ ਪ੍ਰਭ ਧਿਆਨ ਸਹਿ ਸਮਾਧ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪੂਰਨ ਜਾਚੀਐ ਰਜ ਸਾਧ ਮੋਹ ਮਿਥਨ ਦੁਰੰਤ ਆਸਾ ਬਸ ਨਾ ਬੇਕਾਰ ਰਖ ਧਰਮ ਪਰਮ ਬਿਦਾਰ ਮੰਤੇ ਉਦਰ ਹਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਧਨਾਡ ਆਡ ਭੰਡਾਰ ਹਰ ਨਿਧ ਹੋਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੀਰ ਖਲ ਮੂੜ ਖਲ ਮੁਗਧ ਮੂੜ ਕਟਾਕ ਸ੍ਰੀ ਧਰ ਭਏ ਗੁਣਮਤੀਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਪ ਮਨ ਧਾਰ ਰਿਧ ਪ੍ਰਤੀਤ ਜੀ ਦਇਆ ਮਾਇਆ ਸਰਬੱਤਰ ਰਮਣ ਪਰਮਹੰਸੈ ਰੀਤ ਦੇਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਰਵਣ ਹਰ ਜਸ ਰਸਨ ਨਾਮ ਉਚਾਰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਗਵਾਨ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਭ ਨਾਨਕ ਪਤ ਤੇ ਉਦਾਰ ਗੁਜਰੀ ਕੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਿਕੰਦਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਵਾਰ ਕੀ ਤੁਨੀ ਗਾਉਣੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਹੋ ਜਗਤ ਮਮਤਾ ਮੋਵਾ ਜੀਵਨ ਕੀ ਬਿਧ ਨਾਹੇ ਗੁਰ ਕਹਿ ਪਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੈ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਪਦਵੀ ਪਾਹੇ ਓਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਜਨ ਜੀਵਤੇ ਜੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ ਮਨ ਵਸੈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਹਿ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅੰਦਰ ਸਹਿਸਾ ਦੁਖ ਹੈ ਆਪੇ ਸਿਰ ਤੰਦੈ ਮਾਰ ਦੂਜੇ ਪਾਏ ਸੁੱਤੇ ਕਵੇ ਨਾ ਜਾਗੈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਿਚਾਰੈ ਇਹੋ ਮਨਮੁਕਾਇਆ ਚਾਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਗਵਾਇਆ ਨਾਨਕ ਜਮ ਮਾਰ ਕਰੇ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਉਪਾਇਓਨ ਤਦੋ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਾ ਮਸੂਰਤ ਆਪ ਕਰੇ ਜੋ ਕਰੇ ਸੋ ਹੋਈ ਤਦੋ ਆਕਾਸ਼ ਨਾ ਪਾਤਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤਰੈ ਲੋਈ ਤਦੋ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਉਪਤ ਹੋਈ ਜੋਤਿਸ਼ ਭਾਵੈ

काया मिट्टी अंध है पौने पुछो जाए, हौ ता माया मोहया फिर फिर आवा जाए। नानक हुक्म न जातो खसम का, जे रहा सच समाए महला तीजा। एको निश्चल नाम तन होर तन आवै जाए, इस तन का ओ तस्कर जो है ना सकई ना ओ चका ले जाए। एहो हर तन जीए सेती रव रहे आ, जीए ना ले जाए पूरे गुरते पाईए। मनमुख पल्ले ना पाए तन वापारी नानका, जिन्ना नाम तन खट्या आए पौड़ी। मेरा साहेब अत वड्डा सच गैर गंभीरा, सब जग तिसकै वस है सब तिसका चीरा। गुरप्रसादी पाईए निश्चल तन तीरा, कृपा ते हर मन वसै भेटै गुरसूरा। गुणवंती सा लाहया सदा थिर निचल हर पूरा, सलोक महला तीजा। त्रिगत ना दा जीविया जो हर सुख पर हर त्याग दे, दुख होमै पाप कमाए। मनमुख अज्ञानी माया मोहे व्यापे, तिन बूझ ना काई पाए। हलत पलत ओए सुख ना पावै, अंत गए पछताए। गुरप्रसादी को नाम ते आए, तिस होमै विचों जाए। नानक जिस पूर्व होवै लिखिया, सो गुर चरणी आए पाए महला तीजा। मनमुख ऊंदा कौल है ना तिस भगत ना नाओ, शक्ति अंदर वरतदा कूड़ तिसका है उपाओ। तिसका अंदर चेतना भिजई मुख फीकाया लाओ। ओए तरमरलाए नारलन ओना अंदर कूड़ सवाओ, नान करता बणत बनाई। मनमुख कूड़ बोल बोल डुबे, गुरमुख तरे जप हर नाओ पौड़ी। बिन बूजे वड्डा फेर पया फिर आवै जाई, सतगुर की सेवा ना कीतिया अंत गया पछताई। अपनी कृपा करे गुर पाईऐ विचों आप गवाई, तृष्णा भुख विचों उतरै सुख वसै मन आई। सदा सदा सा लाही है हिरदय लिवलाई, श्लोक महला तीजा। जे सतगुर सेवे अपना तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाओ है हर नाम प्राप्त होए। अंतर शीतल सांत वसै जप हिरदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना नानक नाम वडाई होए महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन हर पावै गुणी निदान, हर सुखदाता मन वसै होमै जाए गुमान। नानक नदरी पाईऐ ता आंदन लागै ध्यान पौड़ी। सत संतोख सब सच है गुरमुख पविता, अंदरों कपट विकार गया मन से जे जिता। तह जोत प्रगास आनंद रस अज्ञान गविता, अंदन हर के गुण रवै गुण प्रगट किता। सबना दाता एक है एको हर मिता, श्लोक महला तीजा। ब्रह्म बिंदै सो ब्राह्मण कहियै, जे अंदन हर लिवलाए सतगुर पुछै सच संयम कुमावै। हम मैं रोग तिस जाए हर गुण गावै गुण संग्रह, ज्योति ज्योत मिलाए। इस जोग में को विरला ब्रह्म ज्ञानी, जे हो मैं मेट समाए। नानक तिसनो मिलया सदा सुख पाईऐ, जे अंदन हर नाम ते आए महला तीजा। अंतर कपट मनमुख अज्ञानी, रसना झूठ बोलाए। कपट कीतै हर पुरख ना पीजै, नित वेखै सुनै सुभाए। दूजै पाए जाए जग पर बोधै, बिख माया मोह सवाए। इतक माणै सदा दुख पावै, जमै मरै फिर आवै जाए। सहिसा मूल न चुकई विच विष्टा पचै पचाए, जिसनों कृपा करे मेरा स्वामी तिस गुर की सिख सुनाए। हर नाम ते आवै हर नामो गावै, हर नामो अंत छिड़ाए पौड़ी। जिन्ना हुक्म नायो न ते पूरे संसार, साहेब सेव ने अपना पूरा शब्द विचार। हर की सेवा चकरी
ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕਾ ਮਹਿਲ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਮਿਲ ਰਹਿ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮਾ ਉਰਤਾਰ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਧਿਆਨ ਸਹਿਜ ਤੁਨ ਉਪਜੈ ਸਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਦਨ ਰਹਿ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਪਾਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸੇਵੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਵੇਖੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਬੋਲੈ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਹਿਜ ਰੰਗ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੈ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨਾ ਦੇਰ ਚੁਕਾਇਆ ਜਿਸਨੋ ਕਰਮ ਹੋਵੈ ਤੁਰਪੂਰਾ ਤਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੇਵਿਓ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਲੱਗੋ ਪਿਆਰ ਸਹਿਜੇ ਨਾਮ ਨਾ ਧਿਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਫਿਰ ਜੂਨੀ ਪਾਈ ਐ ਵਿਸ਼ਟਾਸ ਦਾ ਖੁਆਰ ਕੂੜੇ ਲਾਲਚ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਭਰੇ ਜੇ ਆ ਮੇਲੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਸੱਚੇ ਦਰ ਸੋਹੰਦੇ ਸੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਰਹਾਏ ਹਰ ਕੀ ਪ੍ਰੀਤ ਤੈਨੀ ਉਪਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਸਾਏ ਹਰ ਰੰਗ ਰਹੇ ਸਦਾ ਰੰਗ ਰਾਤੇ ਰਸਨਾ ਹਰ ਰਸ ਪਿਆਏ ਸਫਲ ਜਨਮ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਤਾ

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन ब्रह्मपुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेख है, दिखा के नै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाइए, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाए दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, महला तीजा, एहो मन केतड़िया, जुग भरमिया, थिर रहे ना आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रहे समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरे ना जाए, पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी, श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाह होए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए, महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रमिलया आई, वडभागिया वाह वाह मोह हो कढाई, वाह वाह करे सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई, पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, भरम भूले नदर नायावनी, मनमुख अंध अज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी, श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों लिवलाए, वाह वाह करमी बोले बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए, महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है,

कड़ी मोहतन है विसरा नानक रवि है नित पौड़ी सूर बीर वरियाम किन ना होड़ी है फौ सतानी हाठ पंचा जोड़ी है दस नारी अवधूत देन चमोड़ी है जिन जन लैन रलाए एहो इना लोड़ी है त्रै गुण इनकै वस किन ना मोड़ी है परम कोट माया खाई कहो कित बिद तोड़ी है गुरपूरा आराध बिखम दल फोड़ी है हौ तिस अगै दिन रात रहा कर जोड़ी है श्लोक महला पंजवां किल विख सबे उतरन नीत नीत गुण गाओ कोट कले साई उपजै नानक बिसरै नाओ महला पंजवां नानक सतगुर भेटे है।

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यो जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू, कमावदिया सुख पुंच, ते आए दिया तू प्रभु मिल, नानक उतरी चिंत। महला पंजवा, शुभ चिंतन गोबिंद रमन, निर्मल साधु संग, नानक नाम ना विसरो एक घड़ी, कर कृपा भगवंत पौड़ी। तेरा कीता होए ता काहे डरपिए, जिस मिल जपिए नाओ तिस जियो अरपिए। आया चित निहाल साहेब बेसुमार, तिसनो पोहे कवन जिस वल निरंकार। सब किश तिसकै वस ना कोई बाहरा, सो भगता मन उठा सच सुमहरा। तेरे दास ध्यान तुद तू रखण वालिया, सिर सबना समरथ नदर निहालिया। सलोक महला पंजवा, काम क्रोध मद लोभ मोह दुष्ट बासना निवार। राख ले हो प्रभ अपने नानक सद बलिहार। महला पंजवा, खांदिया खांदिया मोह कठा, पहनंदिया सब अंग, नानक त्रिग तिना दा जीविया, जिन सच ना लगो रंग। पौड़ी ज्यों ज्यों तेरा

प्रभदास का दुख ना खप सके फट जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुते दुख लगे बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां। राम जपो वड भागी हो जलथल पूर्ण सोए नानक नाम ते आया बिघन लागे कोए। महला पंजवां। कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुनै कर काओ। पौड़ी। सिमर सिमर दातार मनोरथ पूरिया इच पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निदान जिसनो पालदा। जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तितकार आवन जान रहे जन्म ना तहां मर। साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुरप्रसाद नानक सच समाया। सुध राग गुजरी भगतां की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्री कबीर जी ओका चौपदा कर दूजा दूजा चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुन गई है उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है। हर बिन बैल बिराने हुई है फट फाटे नकन टूटे कंधन कोदव को पुसखई है रहाओ। सारो दिन डोलत बन महिया अजहो ना पेट अगई है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बिहाई है कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रगराई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जौ भीख मंगावै ता क्या घट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै सह बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हों पूजो दूजा नजर न आई। एक है पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओह देओ ता ओह पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछ पार मलो, परम लियो बैठोरी आई। आवत किने ना पेखेओ, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुलरी बाई। रहाओ ज्यों आकाश है पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यों जल माज है मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यों आकाश है कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछर थनो बिटारियो, फूल पावर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है पयंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काय जपोरे काय तपोरे काय बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़िया रे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर।

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंतकाल नारायण सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बदत त्रिलोचन ते नर मुक्ता पीतंबर वां केरदै बसै। गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। परमाद पुरख मनोपमं सत आद भाव रतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं। रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं पाव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तर शरणं। हर भगत निज नेह केवला रिद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा। गोविंद गोविंद देत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहभं गुरप्रसाद। राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सभागे। रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे। जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सारे अवर ना लागे। देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली। रहाओ प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेयो सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू लै राती हर प्रेम पीनी चोली है। रहाओ हाँ फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगोली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

नाम जपत महासुख पायो, चिंता रोग बिदारयो, काम क्रोध लोभ झूठ निंदा, साधु संग बिसारयो, माया बंद काटे कृपा निध, नानक आप उधारयो, देव गंधारी मन सगल सियान परही, करन करावन हर स्वामी, नानक ओट गही रहाओ, आप मेट पए सरनाई, एह मत साधु कही, प्रभ की आज्ञा मान सुख पाया, परमा देरा लही, जान परबीन स्वामी प्रभ मेरे, शरण तुम्हारी यही, खिन मैं थापो थप नहारे, कुदरत की मना पही, देव गंधारी महला पंजवा, हर प्राण प्रभु सुखदाते, गुरप्रसाद काहूं जाते रहाओ, संत तुम्हारे तुमरे प्रीतम, तिनको काल ना खाते, रंग तुम्हारे लाल पए है, राम नाम रस माते, महा किरबख कोट दोख रोगा, प्रभ दृष्ट तुहारी हाते, सोवत जाग हर हर हर गाया, नानक गुर चरण पराते, देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ जत कत पेख्यो नैनी, सुखदाई जियन को दाता, अमृत जा की बैनी रहाओ, अज्ञाना देरा संति काटिया, जीदान गुर दैनी, कर कृपा कर लीनो अपना, जलते शीतल होनी, कर्म धर्म किश उपजना आयो, नहीं उपजी निर्मल करनी, छाड़ सियान पसंजम नानक, लागो गुर की चरणी, देव गंधारी पंजवा, हर राम नाम जप लाहा, गत पावे सुख सहज आनंदा, काटे जम के फाहा रहाओ, खोजत खोजत खोज बिचारियो, हर संत जना पाया, तिना प्राप्त हो निदाना, जिनके कर्म लिखा, सेवड़ पागी से पतवंते, से ही पूरे साहा, सुंदर सुगड़ स्वरूप ते नानक, जिन हर हर नाम विसाहा, देव गंधारी पंजवा, मन कह अंकार अफारा, दुर्गंध अपवित्र अपावन पीतर, जोधि सह सो शारा रहाओ, जिन किया ते सिमर प्राणी, जियो प्राण जन तारा, तिसह त्याग अवर लपटावै, मरजन मैं मुद गवारा, अंध कोंग गोंग पिंगल मतहीना, प्रभ राखो राखन हारा, करन करावन हार समरथा, क्या नानक जंत बिचारा, देव गंधारी पंजवा, सो प्रभ नेरै हूं ते नेरै, सिमरत आए गाए गुण गोबिंद, दिन रैन सांझ सवेरै रहाओ, उधर देह दुलभ साधु संग, हर हर नाम जपेरै, करी ना मोहत ना चसा बिलंबो, काल नितै नित हेरै, अंध बिलाते काडो करते, क्या नाही करते रह, नाम आधार दीजै नानक कहो, आनंद सुख घनेरै, शके दो देव गंधारी पंजवा, मन गुरमिल नाम आराध्यो, सुख सहज आनंद मंगल रस, जीवन का मूल बाध्यो रहाओ, कर कृपा अपना दास कीनो, काटे माया फाद्यो, पाओ भगत गाए गुण गोविंद, जम का मार्ग साध्यो, पयो अनुग्रहो मिट्यो मोर्चा, अमोल पदार्थ ला देओ, बलिहारे नानक लख बेरा, मेरे ठाकर अगम्यागा देओ, देव गंधारी पंजवा, माई जो प्रभ के गुण गावे, सफल आया जीवन फल तां को, पार ब्रह्म लिबलावे, रहाओ सुंदर सुगड़ सूर सो बेता, जो साधु संग पावे, नाम उचार करे हर रसना, बहुन न जो नीत आवे, पूर्ण ब्रह्म रव्या मंतन मह, आना दृष्टि आवे, नरक रोग नहीं होवत जन संग, नानक जिस लड़ ला।

मैं कबहू चलना बिगल पयो संग मायो रहाओ। कुसम रंग संग रस रचिया बिखिया एक उपायो, लोभ सुने मनसो कर माने बेग तहां उठतायो। फिरत फिरत बहुत श्रम पायो संत द्वारे आयो, करी कृपा पार ब्रह्म स्वामी नानक लियो समायो। देव गंधारी पंजवा सर्व सुखा गुरचरना, कालमल डारन मन सुधारन ए आसर मोय तरना रहाओ। पूजा अर्चा सेवा बंदन एह टहल मोहे करना, बिकसै मन होवे परगासा बहुर ना गर्भ परना। सफल मूर्त परसव संतन की एह त्याना तरना, पयो कृपाल ठाकर नानक परयो साध की सरना। देव गंधारी महला पंजवा अपने हर पै बिनती कही है, चार पदार्थ अनंत मंगल निद सुख सहज सिद्ध लहिए रहाओ। मान त्याग हर चरणी लागो तिस प्रभ अंचल गही है, आंच ना लागे अग्न सागर ते शरण स्वामी की अही है। कोट प्रात महा अकिरत कान बहुर बहुर प्रभ सही है, करना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक ते शरण ही है। देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा, रोग सोग सब दुख विनाशे उतरे सगल कलेसा रहाओ। जन्म जन्म के किल बिखनास कोट मजन इशनाना, नाम निधान गावत गुण गोविंद लागो सहित आना। कर कृपा अपना दास कीनो बंधन तोर निरारे, जप जप नाम जीवा तेरी बाणी नानक दास बलिहारे। शके तेनो देव गंधारी महला पंजवा, माई प्रभ के चरण निहारो करो अनुग्रहो, स्वामी मेरे मन ते कहो न डारो रहाओ। साधु तूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो, सब ते नीच आत्म कर्मानो मन में ओ सुख धारो। गुण गावे ठाकर अबनासी कलमल सगले चारो, नाम निधान नानक दान पावो कंठ लाए और तारो। देव गंधारी महला पंजवा, प्रभ जीओ पेखो दर्श तुम्हारा, सुंदर ध्यान धार दर रैनी जी प्राण ते प्यारा रहाओ। शास्त्र वेद पुराण अवलोके सिमरत तत् विचारा, दीनानाथ प्राण पथ पूर्ण पावजल उदर नहारा। आद जुगाद भगत जन सेवक ताकी बिखया धारा, तिन जन की तूर बांछ नित नानक।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहू जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावै बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करै अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन पीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महला पंजवा ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। दोए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्मन त्याया हाथ दे राखे परमेसर सगला दुर्त मिटाया। वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन कहो बल जाइए जो सबना करे उधार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद देव गंधारी महला पंजवा अपने सतगुर पै बिनो कहया पै कृपाल दयाल दुख भंजन। मेरा सगल अंधेसरा गया रहाओ हम पापी पाखंडी लोभी हमरा ओ गुण अवगुण सब सहया कर मस्तक तार साज निवाजे मोए दुष्ट जो खया। पार उपकारी सर्व सुधारी सफल दर्शन सहजया कहो नानक निर्गुण कहो दाता चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा अनाथ नाथ प्रभ हमारे सरण आयो रख नहारे रहाओ। सर्व पाप राख मुरारे आगे पाछै अंती वारे जब चितवाओ तब तुहारे उन समार मेरा मन साधारे सुन गावो गुर बचनारे बल बल जाओ साध दरसारे मन में राखो एक या सारे नानक प्रभ मेरे करण हारे। देव गंधारी महला पंजवा प्रभ एह

लागो जन चरणी निस्बासर दर्श पावां। तन मन अर्प करो जन सेवा रसना हर गुण गावां। सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए। एक आधार नाम तन मोरा अनद नानक एहो लईए। राग देव गंधारी महला पंजवा घर तीजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मीता ऐसे हर जियो पाए छोड़ ना जाई सधी संगे अंदन गुर मिल गाए। रहाओ मिलियो मनोहर सर्व सुखैना त्याग न कत हूं जाए। अनक अनक भांत बहु पेखे प्रेरोम ना समसर लाए। मंदर भाग शोभ द्वार अनहद रोण चुन लाए। कहो नानक सदा रंग माणे गृह प्रे थीते सद थाए। देव गंधारी पंजवा दर्शन नाम कौ मन आचे। प्रम आयो है सगल थान रे आहे परयो संत पाछे। रहाओ किस हम सेवी किस आराधी जो दिष्ट सो गच्छ। साध संगत की सरणी परिय चरण रेन मन बांछ। जुगत ना जाना गुण नहीं कोई महादुत्र माया छ। आए पयो नानक गुर चरणी तो उतरी सगल दुराछ। देव गंधारी पंजवा अमृता प्रे बचन तुहारे अत सुंदर मन मोहन प्यारे। सबहू मद निरारे रहाओ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारे। ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा मोहे ठाकर ही दरसारे। दीन द्वारे आयो ठाकर शरण परयो संत हारे। कहो नानक प्रभ मिले मनोहर मन सीतर बिगसारे। देव गंधारी महला पंजवा हर जप सेवक पार्यो तार्यो। दीन दयाल पए प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मार्यो। रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रत्न जन्म नहीं हार्यो। प्रभ गुण गाय बिखै बंतरिया कुलै समूह उदार्यो। चरण कमल बस्यारिद पीतर सास ग्रास उचार्यो। नानक उठ गही जगदीशर पुनः पुनः बलिहार्यो। राग देव गंधारी महला पंजवा घर चौथा एको अंकार सतगुर प्रसाद। करत फिरे बन पेख मोहन रहत निरार। रहाओ कथन सुनावन गीत नीके गावन मन में तरते गार। अत सुंदर बहुचतर सियाने विद्या रसनाचार मान मोह मेर तेर बिबरजत। एहो मार्ग खंडे तार कहो नानक तिन भव जल तरियले। प्रभ कृपा संत संगार राग देव गंधारी महला पंजवा घर पंजवा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मैं पेख्योरी ऊंचा मोहन सबते ऊंचा आना सम

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत न कतै बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगै, जप जीवा हर हर चरना अमै सरोवर पियो, अमै सरोवरो पियो हर हर नाम राम। संतै संग मिलै जप पूर्ण काम राम, सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरै, आनंद अंदन सदा साचा, सर्वगुण जगदीसरै। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकी महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सद मना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवा शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम, कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे, गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदों से दे आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते, जाम्बा गौने अकेली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी, अनक जोन परमाया महामोहनी संग राता, रतन जन्म गवाया इक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया। पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया, गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तब तो थम गल लातिया। काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया, बिनवंत नानक संजोग भूला, हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला। अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रतपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोविंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम। सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम, सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय, भज साध संगे मिले रंगे बहुत जोन ना ताइय। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुत कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कलेसै भंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समर्थ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिप्त बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत कना पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध्या पार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक सरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जा ते विछड़िया तिन आप मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण में प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुत दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कट कट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताने राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हाँ हाँ करतना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के केतिया पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम। पूजा गह काड लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले। महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण पर बीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुरसेवा ते सुख पाई है होर थे सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू सब सदा सब तो दियो पाया। सब नामे तू वरतदा तू सबनी त्याया। तिस दी तू भगत थाए पाए जो तुद मन पाया। जो हर प्रभावै सो थीऐ सब करन तेरा कराया। सा लाहे हो हर सबना ते वड्डा
ਜੋ ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਪਹਿਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨੀ ਜਗ ਜੀਤਾ, ਜਗ ਜੀਤਾ ਸਭ ਕੋਏ, ਨਾਮੇ ਕਾਰਜ ਸਿੱਧ ਹੈ, ਸਹਿਜੇ ਹੋਏ ਸੋ ਹੋਏ। ਗੁਰਮਤ ਮਤ ਅਚਲ ਹੈ।

तुद अगे मंगनो हाथ जोड़ खली सब होई, तुद जेवड दा तार मैं कोई नजर ना आवई, तुद सबसे नो दान दिता खंडी वर पंडी पाताली पुरी सब लोई। सलोक महला तीजा। मन पर जीत न आईया सहज न लगो पाओ, शब्द साध नाम पायो मन अठ क्या गुण गाए, नान क्या या सो प्रवान है जे गुरमुख सच समाए। महला तीजा। अपना अपना पछाण है मूड़ा अवरा।

आपे सब कट भोग वै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेक आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जै, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे। बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए। नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार। नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाट साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने। आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने। एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी मोह।

गुर का शब्द कमाए। हुक्म मन ता हर मिले ता विचों हमें जाए रहाओ। हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है। हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही। हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए। नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए। सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए। वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सेज एक एको प्रभ ठाकर। गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा। गुर पूरा मिलावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ। मैं अवगण भरपूर शरीरे, हाँ क्यों कर मिला अपने प्रीतम पूरे। जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया, से मैं गुण नाही, हाँ क्यों मिला मेरी माया। हाँ कर कर थाका उपाप बहु तेरे, नानक गरीब राखो हर मेरे। वढ़ंस महला चौथा, मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी। हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभानी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो एयानी। जो पिर भावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही, हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा।

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभु दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, शरण परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवां, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संतां धूरे। चरण कमल हृदय उरधारे, तेरे दर्शन कहो जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवां, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर माणक लाला, सिमर सिमर प्रपय निहाला। जात कत पेख साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभ तू।

है, तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारण आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना, नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी वढ़ा।

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कही है सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ बिगाड़ काहे नाई है।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसै ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना सब

नदर करै ता सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बजावे दुख भूख संसार किए सा सह चुकावे। बिनवंत नानक जाय सहसा, बुझे गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सों रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाणै कामण वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये नहीं कर वासा पाए नहीं कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जुबन बाला अंदन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चे शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चलै सतगुर पाए वढांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिय लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रा विजय अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझे गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सुवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वडभागो राम गुरमती मन नि कर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी सच्चे शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वढ्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचे शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुती।

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे वापारा सतगुर सेव ने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हौ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नि चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक काम हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजी है सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुण मैं गुणी समाई राम गुण मैं गुणी समाए जिस आ बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वणजी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल वेखावणी बो वदै विकारा राम बहु वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा यो वापारा खोटे खरे सब परखिया नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियन उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुख हटे संसारा खोटे खरे परखियन ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावै तित लाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अतमोल अफारा सच वापारा सच वापार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वापारा हौ मैं माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमती मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पी जय अंतर पी जय साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पी है पनिहारी जिस नजर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजय नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करे पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै।

सरनाई राम अरदास करी गुर पूरे आगे। रख ले वो देहो बढ़ाई राम रख ले वो सरनाई हर नाम बढ़ाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावे बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे देह बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर चाखिया। दर सचै सदा है साचा सचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवया सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हो जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हों मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई। सुख सतगुर देव मन परसे हो जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा राम। हाँ मन तन देवा तिस काट श्री राम। हाँ मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग पाया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते देहो सतगुर चरण हम धूरा। कोई आन मिलावे मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवे हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ भागा। सेवक पाए मिले वडभागी जिन हर जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा हाँ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हाँ टूंडेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हाँ गुरबिन खरी निमाणी। जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सिरे वै हम लागै तिन कै पाए राम। हर हर चरण सिरे वै तिन के जिन सतगुर पुरख प्रभ ते आया। तू वडदाता अंतर जामी मेरी सरदा पू हर राया। गुरसिख मेल मेरी

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला।